केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 30 मई 2026। इस समय सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसका अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।

गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच

0: स्टेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज का चिंतन।
1: जीवन चलने का नाम है, यानी हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही दिशा में प्रयास करते रहना चाहिए। अवरोधों से निपटने के लिए भी शांत मन से समाधान ढूंढने चाहिए। रुकावटों को गति में बाधा मानकर बैठना जीवन की निरंतरता को तोड़ देता है। चमत्कार की अपेक्षा में विश्राम करना आलस्य और लापरवाही जैसे दुर्गुणों को जन्म देता है। शास्त्रों में भी कहा गया है, चरैवेति चरैवेति, यानी चलते चलो। रुका हुआ जल प्रवाह भी दुर्गंध देता है जो किसी काम का भी नहीं होता। जीवन की निरंतरता बाधित होने का अर्थ है शंकाओं से घिर जाना। दिनचर्या में शंका उत्पन्न होने से मानसिक असंतुलन भी होने लगता है। खाली दिमाग शैतान का घर जैसी स्थिति अनिर्णय की निशानी है। अस्थिर मन को शांत कर ज्ञान का उपयोग कर सफलता की दिशा में उचित प्रयास शुरू कर देने चाहिए। जिस तरह भीड़ भरी सड़क में वाहन की गति कम हो जाती है, ठीक उसी तरह उद्विग्न मन में भी समाधान ढूंढने की शक्ति कम हो जाती है। जीवन संघर्ष और बाधाओं का संगम है, यही हमें प्रेरणा और शक्ति भी देते हैं। अनिर्णय की स्थिति में मन कोल्हू के बैल की तरह कार्य तो करता है, लेकिन दिशा और दूरी तय नहीं कर पाता। विषम स्थितियों में भी आशा की किरण अवश्य होती है। कुछ दरवाजों के बंद हो जाने पर भी एक खिड़की अवश्य खुली होती है। इसे शांत मन ही देख सकता है, यही धैर्य की परीक्षा कहलाती है। हमारे सकारात्मक प्रयासों के लिए ईश्वर हमें दूसरा रास्ता अवश्य दिखाते हैं। हमें केवल शांत मन से उसे देखना सीखना चाहिए। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, न सुख और न ही दुख। यदि समय अनुकूल न हो तो धीरज रखकर प्रतीक्षा करना ही सार्थक होता है। मन में उपजे हर समाधान पर विश्वास कर प्रयास किया जाना चाहिए। सक्रियता का अर्थ दूसरों पर आक्रामकता नहीं होता, हम प्रतिस्पर्धा में होते हैं, प्रतिद्वंद्विता में नहीं। हमारी प्रतिस्पर्धा स्वयं से होती है, न कि औरों से। स्वयं के क्रियाकलापों का आकलन और उनकी उपयोगिता पर नजर बनी रहनी चाहिए। जीवन की गति में बाहरी क्रियाओं और भीतरी शांति का तालमेल आवश्यक है। आंतरिक उथल पुथल प्रगति को कम करता है। भौतिक उपलब्धियों का महत्व और उपयोगिता तभी सार्थक है जब इनका अर्जन मानसिक संतोष और अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को ध्यान में रखकर किया गया हो। हमारे कार्यों में हमें आंतरिक शांति का अनुभव होना सही दिशा में कार्य होना इंगित करता है। मनुष्य को ईश्वर ने अभिव्यक्ति का विशेष गुण प्रदान किया है, जिसका उपयोग कर आकांक्षाओं की पूर्ति की जा सकती है। हमारे कार्यक्षेत्र में अपना लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करने वालों से सलाह लेकर पूर्ण समर्पण से कार्य में जुट जाना चाहिए। हमारे शरीर की कार्यविधि में सोच और सार्थक कल्पनाओं का ही महत्व होता है। हम हर दिन प्रगति करते हैं। पूरे दिन में किए गए कार्यों से मिला संतोष जीवन की राह में बढ़ता एक कदम है। आज के वैज्ञानिक युग में भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में तालमेल का ज्ञान और अभ्यास हमारी गति को सरल और तेज बना सकता है। अशांत मन हमारे शरीर को बहुत जल्दी थका देता है और हमारी मानसिक ऊर्जा भी तेजी से नष्ट होती है। ध्यान, मानसिक व्यायाम और अन्य शारीरिक श्रम अभ्यास हमारी सकारात्मक सोच को सुदृढ़ बनाने में सहायक होते हैं। हमारे जीवन की यात्रा में सही सोच ही सच्ची सफलता दिलाती है।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: इस संदेश के साथ ही कार्यक्रम चिंतन अब समाप्त होता है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मीराबाई की रचना को नितिन

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली भारती।
6: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
7: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
7: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
8: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
9: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
10: आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं भक्ति गीत का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना की अगली पेशकश में लीजिए सुनिए नितिन मुकेश के स्वर में सुभाष जैन अजल की रचना को। संगीत निर्देशन है शेखर सेन का।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई।

0: क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: तेरी चरण कमल, ये भक्ति रचना अभी आप सुन रहे थे नितिन मुकेश के स्वर में। रचना सुभाष जैन अजल की थी और संगीत निर्देशन था शेखर सेन का। इस भक्ति गीत के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कृषि संबंधी जानकारी कार्यक्रम कृषि चर्चा में, जिसमें आज चर्चा का विषय है टमाटर एवं बैंगन में उकठा रोग नियंत्रण के उपाय, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं मनोज कुमार साहू, वरिष्ठ अनुसंधान सहायक कृषि विज्ञान केंद्र रायगढ़।
1: किसान भाई जय जवाहर, राम राम। आज हमन चर्चा करबो बैगन और टमाटर में एक मुख्य बीमारी होते उकठा बीमारी, ओकर निदान कैसे किया जाए, ओकर पहचान की कैसे किया जाए, काबर की है बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इश्यूज है। तो मैं चर्चा कर रहा कि सबसे पहले टमाटर में जो उकठा बीमारी होते वो दो तरीके के होते, एक जीवाणु जनित भी होते और एक फफूंद जनित भी होते। सोलेनेसी में मिर्च, टमाटर, बैगन ये तीनों में भी होते, तो लक्षण लगभग समानता रहते। तो सबसे पहले हमन बात करबो कि जो जीवाणु जनित उकठा होते वह कैसे होते। तो किसान बंधु, जो जीवाणु जनित उकठा रोग होते ओकर जो पहचान ये है कि पौधा ग्रीन स्थिति में जब हरा हुए रहते और मुरझाए के शुरू होते, सबसे पहले वह एक तरीके से पत्ती और ऊपर से सुखद जथे और ऊपर से नीचे की ओर आज जथे, पत्ती झुरमुराज जथे। तो सडनली क्या होते कि 2-3-4-5 दिन के अंदर में पत्ती अचानक से मुरझा जथे और हरा स्थिति से ही मुरझाते। यह बैक्टीरियल विल्ट जो जीवाणु जनित कथन एकर एक पहचान हुई, लेकिन सिर्फ लक्षण के आधार पे ही पहचान पाना वाला मुश्किल है। तो एकर लिए एक हमन एक छोटे टेस्ट करथन। तो किसान भाई का करथन कि जहाँ इसने मुरझात है ओला हमन जो संक्रमित पौधा है ओला जड़ से निकालथन और पानी में थोड़ा वाश करथन। ओकर बाद एक कांच के ग्लास लेबो और ओमे साफ पानी भर देबो। फिर जो जड़ भाग रहते वो जो तना और जहां से जमीन से कांटेक्ट में रहते वो भाग ले लेबो और कट करबो। कट करके हमन ओला वो ग्लास में कुछ समय के लिए 5 मिनट के लिए स्थिर रूप से रख देबो। ओला बिना डिस्टर्ब किए हुए किसी प्रकार से ग्लास ला हिलाना डुलाना नहीं है। तो कुछ समय बाद स्थिति ऐसे होते कि वहां ट्रांसपेरेंट टाइप के एक धार की तरह से ओमे ऊज निकलते। अगर एकर पहचान होगी तो यह बैक्टीरियल विल्ट हुई। अब बैक्टीरियल विल्ट अब फफूंद जनित विल्ट होते। अब एकर पहचान करना है तो फफूंद जनित जो उकठा रोग होते एमे भी पौधा मुरझाते। शुरू तो पौधा लगभग थोड़ा पीला पड़ के पत्ती है मुरझाए कस करते और उग्र स्थिति में पत्ती यह भी झड़ते भी, लेकिन यह बैक्टीरियल विल्ट के तुलना में थोड़ा धीरे धीरे होते। तो अब एकर पहचान करने के लिए अब एकर भी टेस्ट करबो तो एला का करबो कि जो जड़ है उस संक्रमित पौधा के ओला भी निकालबो और फिर उसने हमन पानी में थोड़ा धो लेबो और एकर बाद जड़ ला हमन क्रॉस करके काट के देखबो। तो अगर जो जड़ के भाग में वैस्कुलर डिस्कलरेशन कथन, मतलब वो जो जड़ वाला भाग है वो में भूरा काला कलर के दिखाई दे ही, अगर भूरा काला कलर के दिखाई दे दिस तो यह फंगल विल्ट हुई। अब एकर अब हमन साइंटिफिक रूप से पहचान कर दे रहे, अब एकर निदान करबो। तो बैक्टीरियल विल्ट के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक थे ओला कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ हमन मिक्स करके ड्रेंचिंग करबो और नेक्स्ट टाइम जब कोई भी हमन सोलेनेसी इस तरीके के जहां एक फसल आगे है तो नेक्स्ट टाइम जब हमन एकर बीज उपचारित करबो, थरहा उपचारित करबो, मृदा उपचारित करबो और तब लगाबो, लेकिन खड़ी फसल में हमन ड्रेंचिंग ही कर सकत हन। तो किसान भाई ड्रेंचिंग के माध्यम से कुछ हद तक हमन कंट्रोल कर सकत हन। फंगल विल्ट के जब निदान के बाद इस तो ओकर लिए जो टेबुकोनाजोल फफूंद नाशी रसायन होते ओकर लगभग 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना लेबो अपन जतका क्वांटिटी में चाहिए और हमन सिंचाई के माध्यम से ड्रेंचिंग कर देबो। अगर ड्रिप उपलब्ध है तो ड्रिप के माध्यम से चला देबो और इस तरीके से हमन निदान पा जाबो। लेकिन किसान भाई एक चीज जरूर ध्यान रखिया कि अगर बार बार वही फसल ले था तो नेक्स्ट टाइम में कोशिश करा कि फसल चक्र अपनावा और फसल चक्र नहीं अपना पा था तो जय फफूंद नाशक जो ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास से एकर प्रयोग विशेष रूप से करा। धन्यवाद।
0: टमाटर एवं बैंगन में उकठा रोग नियंत्रण के उपाय, इस विषय पर जानकारी अभी आप सुन रहे थे और जानकारी दे रहे थे मनोज कुमार साहू, वरिष्ठ अनुसंधान सहायक, कृषि विज्ञान केंद्र रायगढ़। इस जानकारी के साथ ही कार्यक्रम कृषि चर्चा अब समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 6:35 हुए हैं। अब आइए हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज की दोनों सभाओं से प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य एवं शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में। अब से कुछ ही पलों बाद यानी 6:40 पर सुनिएगा रामचरितमानस का भाग 27। कार्यक्रम देशगान का समय होगा 6:50 का। नए गानों का कार्यक्रम फ्रेश बॉलीवुड हम आपके लिए लेकर आएंगे 7:05 पर। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा का समय होगा 7:35 का। लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर सुनिएगा 7:45 पर। 8:00 समाचार प्रभात व 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम की डॉक्टर की सलाह का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आज सुबह 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम जिसे हम रिले करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन सकते हैं सुबह 9:00 से, सुबह 11:00 से, अपराह्न 12:00 से शाम 5:00 तक और रात्रि 9:00 से 10:00 तक। प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से 9:55 पर और 11:55 पर। सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा आज सुबह 10:10 पर। आपके पत्रों व ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश हम आपके लिए लेकर आएंगे आज सुबह 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण समय होगा शाम 5:00 का। मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर। पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम का समय होगा शाम 5:10 का। महिलाओं का कार्यक्रम वनिता विहार हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 5:30 पर, जिसमें आपस की बात का विषय होगा तंबाकू सेवन अनेक रोगों का कारण। इसके साथ ही चर्चा के अंतर्गत सुनेगा चिंता छोड़ो सपनों से नाता जोड़ो, इस विषय पर चर्चा। इसके साथ ही क्रम होगा फरमाइशी गीत का। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 6:20 पर, शाम 7:00 और रात्रि 8:30 पर। कृषकों का कार्यक्रम किसानवाड़ी का समय होगा शाम 7:20 का, जिसमें आज की बात का विषय होगा फसलों की वृद्धि और विकास में बाधक खरपतवार। इसके साथ ही आज की नसीहत के अंतर्गत सुनिएगा न्यूनतम प्रीमियम अधिकतम सुरक्षा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी। इसके साथ ही होगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत का आनंद ले सकेंगे रात्रि 8:20 पर। विविध संगीत का समय होगा रात्रि 10:00 का और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी हम आपके लिए लेकर आएंगे 10:30 पर। स्थानीय सूचनाएं एवं कार्यक्रम विवरण संबंधी जानकारी हम आपके लिए पुनः लेकर आएंगे सुबह 7:55 पर, सुबह 10:00 और सांध्यकालीन प्रसारण सभा में शाम 5:05 पर और 6:05 पर।

मॉड्यूलेशन 100.7 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है तुलसीदास कृत रामचरितमानस का भाग 27। गायक कलाकार है महेंद्र कपूर और शोभना राव व संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

ब्रह्मा ने सब प्रकार से योग्य पाकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया था। इतना बड़ा अधिकार पाकर दक्ष को सत्ता का मद हो गया और उन्होंने शिव का अपमान करने की धृष्टता कर दी। जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसमें भगवान शंकर को निमंत्रित ना करके उस अपमान को जैसे दोहरा कर दिया। यही कारण था कि जब सती ने पिता के यज्ञ में उपस्थित होने के लिए जाना चाहा, तो शिव ने बिना निमंत्रण जाना सती के शील स्नेह अथवा मान मर्यादा के अनुरूप नहीं पाया। जब सती ने पिता के यज्ञ में जाने की जिद ही कर दी तो भगवान शंकर ने अपने प्रमुख गणों के साथ उन्हें विदा कर दिया। उधर पिता ने सती का कुशल क्षेम तक नहीं पूछा। यज्ञ में सभी देवताओं के भाग की सामग्री थी, किंतु कहीं भी शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया। पति की ये उपेक्षा देख अपमान से सती के अंग प्रत्यंग जल उठे, उनके क्रोध की सीमा न रही। इस मदांधता तथा नादानी के लिए उन्होंने पिता की भर्त्सना ही नहीं की, बल्कि ग्लानी तथा क्रोध के वशीभूत होकर अपने को उसी यज्ञ की अग्नि में भस्म कर डाला।

भली संत संभुषी सुनिए जीव जो

तुलसीदास कृत रामचरितमानस का भाग 27 अभी आप सुन रहे थे। गायक कलाकार थे महेंद्र कपूर और शोभना राव व संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। इसके साथ ही मानस गान अब संपन्न होता है। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है समूह स्वर में कार्यक्रम देशगान, रचना प्रभाकर राव की है।

समूह स्वर में प्रभाकर राव की ये देशभक्ति रचना अभी आप सुन रहे थे। इस देशभक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम देशगान अब समाप्त होता है। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 6:55 होने को हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब हम 6:55 पर रिले करेंगे संस्कृत में समाचार व 7 हिंदी में समाचार। समाचारों के अनुप्रसारण के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
1: बीएसएफ के सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: गृहमंत्री ने ड्रोन रडार निगरानी टावर अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कल कहा कि तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एज एआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचारों का अनुप्रस्थ

0: आकाशवाणी F90।
1: नमस्ते, मेरा नाम रीता देवांगन, मैं रायगढ़ विनोबा नगर 24 वार्ड से हूँ। मैं एक गृहिणी हूँ। गृहिणी होते हुए भी मेरा एक छोटा सा फैंसी स्टोर है, जो कि मैं फैंसी स्टोर चलाती हूँ। और सुबह से मैं दुकान चालू करती हूँ और रेडियो को भी उसी समय से मैं चालू कर देती हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई। रेडियो से हम अपना मनोरंजन करते हैं और जो भी हमारे ग्राहक आते हैं उनका भी

दिल झूम उठता है रेडियो से और प्रचार का रेडियो सूचना और प्रचार के माध्यम से हमें बहुत अच्छा लगता है। रेडियो से अनेकों जानकारियाँ मिलती है, मधुर मधुर गीतों से मन झूम उठता है। रेडियो से हम घर द्वार युवावाणी किसानवाणी सुनते हैं, भजन सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है। हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें को सीखने को भी मिलती है। किसानवाड़ी में खेती से संबंधित जानकारी पाते हैं। रेडियो से बच्चों बूढ़े युवा युवती सभी का मनोरंजन झूम उठता है। आज हम सूचना क्रांति के माध्यम से मोबाइल में रेडियो का कोई भी कार्यक्रम सुन सकते हैं। रोज सवेरे हम आकाशवाणी के माध्यम से भक्ति गीत सुनते हैं। रेडियो सुनते सुनते हम अपना घर का पूरा काम भी कर सकते हैं और हमें बहुत आनंद मिलता है। बहुत प्रकार के जानकारी भी हमें रेडियो के माध्यम से सुनने को मिलता है। हमारे घर के सभी सदस्य रेडियो सुनकर अपना मनोरंजन करते हैं। बच्चे भी रेडियो में सुनते सुनते अपना पढ़ाई का काम भी कर सकते हैं। आकाशवाणी को बहुत बहुत बधाई हो जो हम रेडियो के माध्यम से हमें इतना अच्छा प्रचार करते हैं। धन्यवाद।

0: के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं नए

गानों का प्रोग्राम फ्रेश बॉलीवुड, जिसमें अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं वरुण जैन और साथियों के स्वर में। गीत लिखा कौसर मुनीर ने और संगीत है अनुराग सेकिया का।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT।

0: टी ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़। श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, SHROTARAIGARH, यानी श्रोता रायगढ़ @gmail.com।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जाने, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। इस गीत की महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875 ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन जो बंकिम चंद्र ने ही संपादन किया था, बंगा दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818। ये भी आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया। उसके पहले पहला सुर दिया जदू भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नवलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी कहा गया।

0: वकील ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र आत्माभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस गीत में। बंकिम, मैंने पहले ही कहा कि एक नवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of स्वदेश पूजा। On 1876, वेस्ट बंगाल की हुगली जिला में गोपाल चंद्र धर नामक एक व्यक्ति वंदे मातरम गीत देश मल्लार धुन में गाया था। और मैंने बोला कि 1871 में इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में हुआ। वंदे मातरम हमारा गर्व है, स्वदेश को आगे बढ़ाने के लिए ये गीत हर वक्त हमारा आदर्श होगा। रविंद्रनाथ टैगर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला, देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में, तब उसका गीत का प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए सम्मान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार। बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
1: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनवेंद्रनाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

आर्टिस्ट फिल्म से निशांत सिंह की रचना को अभी आप सुन रहे थे। अनिरुद्ध रॉय के स्वर में संगीत था सुरेश बॉबिली का। इस गीत के साथ ही नए गानों का प्रोग्राम फ्रेश बॉलीवुड अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 7:35 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा।

संगी मितान मन ला रामविलास पटेल के राम राम जय जोहार। झरोखा कार्यक्रम के माध्यम ले भैया हो संगी हो आप मन ला रकम रकम के जानकारी देत रही थन और एक क्रम में आज के झरोखा माँ जानबो पुदीना के बारे में जो ला पोतना पान भी कहा जाते। संगी हो ताज़ा हरा पुदीना अधिक गुणकारी और विटामिन ए ले भरपूर होते। संगे संग एकर स्वाद सुगंध भोजन ला स्वादिष्ट और रुचिकर बनाए में कोई कसर नहीं छोड़े। एकर खातिर एला घर के गमला ये छोटे ठौर में भी हमन लगा सकथन और पुदीना ला हमर देश के सबो ठौर में लगा सकथन। यार सबो प्रकार के जलवायु में लगभग हो जाते। पुदीना जो ला पोतना पान कथन एकर चटनी के मजा अब्बड़ सुघर रहते। पोतना पान के पत्ती ला सुखा के भी उपयोग किए जाते। पुदीना के अर्क के उपयोग औषधि रूप में भी अब्बड़ एकन ले होते। पुदीना रोचक पाचक युक्त कफ उल्टी पेट पीड़ा आफरा गैस नाशक भी होइस और संग में पीत नाशक भी होते। यूनानी मत के अनुसार ले भैया हो पुदीना अमाशय ला शक्ति देहे वाला और पसीना लाए में सहायक होते। गर्भाशय ला भी सुघर करते। एकर अलावा संगवारी हो पोतना पान में महिला मन में मासिक धर्म भी सुघर जाते और कई प्रकार के जैसे समस्या रहते एकर भी धुरिया हो जाते ऐसे यूनानी मत अनुसार माना जाते। संगी हो पोतना पान या पुदीना के जो औषधि उपयोग हावे एमा खास तौर से देखा जाए तो एकर कच्चा पत्ता ला हमन खा सकथन कैंचा ही एकर चटनी भी बना सकथन। आयुर्वेद के अनुसार ले शरीर के गंदगी ला साफ करे में धुरिया करे में भी और देह ला ठंडकता लाए में भी और पाचन शक्ति ला सुघर करे में एकर बहुत ज़्यादा योगदान हावे। पुदीना के पान के ताज़ा रस ला नींबू और शहद के संग समान मात्रा में लेहे ले पेट संबंधी विकार या बीमारी भी धुरिया होते उकर से आराम मिलते। पुदीना के रस काली मिर्च और काला नमक के संग चाह के तरह जो उबाल के हमन पीथन तो एकर से भी सुघर रहते। सर्दी जुकाम हो या खांसी हो या बुखार एकर ले भी थोड़क राहत मिलते। पुदीना के पान ला चबाए ले या उकर रस ला पिए ले हिचकी भी धुरिया हो जाते जो समय समय में पानी की कमी ले या कुछ और कारण ले होते। मूड़ पीरा में पोतना पान के पत्ती के लेप माथा में लगाए ले भी मूड़ पीरा धुरिया होते। तो संगी और पुदीना के गुण बहुत ज़्यादा हवे तो आप मन भी अपन के घर में किचन गार्डन में आसपास में या गमला में थोरकुन लगावा पोतना पान ला और चटनी भी खावा और मज़ा भी लेवा और अतका गुणकारी जो पौधा है एकर उपयोग भी करा। तो संगी और झरोखा माँ आप सुना एक सुन सुघर एकन के गीत ला।

संगी हो झारू खा ले अब जाए के बेरा हो गए, तो आप मन के संगवारी रामविलास पटेल देव विदा, राम राम जय जोहार।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली
6: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
7: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

इस संदेश के साथ ही प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा अब समाप्त होता है। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम बाजी मांदर। कार्यक्रम बाजी मांदर में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सीताराम साहू और साथियों के गाए लोकगीतों को। पेशक खिदमत है ये लोकगीत।

सीताराम साहू और राधा साहू के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर अब समाप्त होता है। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 7:55 हुए हैं। अब आइए हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज की दोनों सभाओं से प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य एवं शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में। सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम विवरण में। अब से कुछ पलों बाद यानी 8:00 समाचार प्रभात व 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। व इसके ठीक पश्चात यानी कि 8:30 पर कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।

विविध भारती कार्यक्रम जिसे हम रिले करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन सकते हैं सुबह 9 बजे से, सुबह 11 बजे से, अपराह्न 12 बजे से शाम 5 बजे तक और रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक। प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण किया जाएगा आज सुबह 9:55 पर और 11:55 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कार्यक्रम सुगम संगीत का आनंद ले सकेंगे सुबह 10:10 पर। आपके पत्रों व ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनिएगा सुबह 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण समय होगा शाम 5 बजे का। पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम आप सुन सकेंगे शाम 5:10 पर। महिलाओं का कार्यक्रम वनिता विहार हम आपके लिए लेकर आएंगे संध्या 5:30 पर, जिसमें आपस की बात का विषय होगा तंबाकू सेवन अनेक रोगों का कारण। इसके साथ ही चर्चा के अंतर्गत सुनिएगा चिंता छोड़ो सपनों से नाता जोड़ो विषय पर बातचीत। इसके साथ ही क्रम होगा फरमाइशी गीत का। फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे शाम 6:20 पर, शाम 7 बजे और रात्रि 8:30 पर। कृषकों का कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण समय होगा 7:20 का, जिसमें आज की बात का विषय होगा फसलों की वृद्धि और विकास में बाधक खरपतवार। इसके साथ ही आज की नसीहत के अंतर्गत सुनिएगा न्यूनतम प्रीमियम अधिकतम सुरक्षा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विषय पर जानकारी। इसके साथ ही होगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 8:20 पर। विविध संगीत का प्रसारण समय होगा रात्रि 10 बजे का और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 10:30 पर।

स्थानीय सूचनाएं एवं कार्यक्रम विवरण संबंधी जानकारी हम आपके लिए पुनः लेकर आएंगे सुबह 10 बजे और सांध्यकालीन प्रसारण सभा में शाम 5:05 पर और 6:05 पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 100.7 MHz पर।

सुबह के 8 बजने को हैं। 8 बजे समाचार प्रभात व 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता।

0: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
0: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
2: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6वें चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से

0: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
1: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
2: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: बीएसएफ के सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
4: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में सिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित सीएसआईआर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
2: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी

0: आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद कनक। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इनकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून, 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश माघो। द हेडलाइंस, सेंटर आस्क्स ऑयल मार्केटिंग कंपनीज टू बिल्ड 30 डेज LPG रिजर्व्स एज वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट परसिस्ट्स। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे शोज मेजर गेन्स इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a 5-day visit. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under 20 Athletics Championships in Hong Kong, clinch 7 medals including 4 gold on day 2. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru. The government has asked the public sector oil marketing companies to set up liquefied petroleum gas

0: कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। और शुरुआती तौर पर इन बीमारियों का पता लगे तो हम इसका बेहतर उपचार करवा सकते हैं, और इन्हीं बीमारियों को जब हम नज़रअंदाज करते हैं तो इसके गंभीर परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। और श्रोताओं, जब हम बात करते हैं भारत की, तो यहाँ युवा जो है काफ़ी नशे की गिरफ्त में दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो नशा किसी भी तरह का हो, लेकिन उस नशे के आदि होने के बाद नशे के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, और ये नशा ही है जो हमारे युवाओं को भटकाता भी है। तो श्रोताओं, 31 मई को हम नो टोबैको डे मनाते हैं, विश्व स्तर पर मनाते हैं, और इसका उद्देश्य यही है कि तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में हम लोगों को जागरूक करें। और तंबाकू जो हमारे भारत में कई गंभीर बीमारियों के लिए उत्तरदायी होता है, इसी के बारे में 31 मई को नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। तंबाकू से होने वाले नुकसान और इससे बचने के तरीके क्या हो सकते हैं, और तंबाकू का हमारे जीवन में कौन कौन से दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इस बारे में जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर रश्मि राय जी को, जो एक ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट और मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं बालको मेडिकल सेंटर रायपुर में। तो डॉक्टर रश्मि जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि हम इतने बड़े पॉपुलेशन जो छत्तीसगढ़ के आसपास के सारे केंद्रों में हम इस बारे में बात कर पाएँ कि टोबैको कितना हानिकारक हो सकता है, तंबाकू कितना हानिकारक हो सकता है हमारे शरीर के लिए और मुँह के कैंसर के लिए, तो एक वो नोन कॉज है
0: जी।
1: तो जितना ही उसके बारे में बात करेंगे उतना ही हम उसको समझ पाएंगे, और इस तरह से हम अवेयरनेस जितना बढ़ाएंगे हम अपनी जो युवा पीढ़ी है उसको बचा सकते हैं तंबाकू के दुष्प्रभावों से।
0: जी जी डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर रश्मि जी, वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है 31 मई को, तो इस दिन का क्या महत्व है, और खासकर हम देखें छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में?
1: जैसे कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो अवेयरनेस के लिए है, ये अवेयरनेस हर तरह के लेवल पे पहुँचे, हर जगह पे। जिस तरह से तंबाकू का सेवन बहुत प्रचलित है छत्तीसगढ़ में, बहुत सारे फॉर्म्स में हो तरीके से सेवन किया जा सकता है, बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया, जो कॉमनली यहाँ तो बीड़ी का सेवन ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ मुख्य रूप से यूज़ करने वाला जो तत्व जिस फॉर्म में करते हैं वो है गुटखा या गुड़ाखू। सुबह शाम दांत में जैसे टूथपेस्ट किया जाता है वैसे इसका यूज़ होता है। और एक मिथ है, एक भ्रांति है कि ये तंबाकू नहीं है, और इससे हमें तंबाकू से जो दुष्प्रभाव होते हैं वो इससे नहीं होते हैं। ये हमारे मोस्ट कॉमनली जो जब हम हॉस्पिटल में बैठे होते हैं तब इस तरह की चीज़ें जब हम उनको बोलते हैं कि आप और किस फॉर्म में खाते हैं, तो वो कभी भी गुड़ाखू का नाम नहीं लेते। तो पहले तो ये समझना है कि ये जो गुटखा है, गुड़ाखू है, ये सब तंबाकू के ही प्रकार हैं। तंबाकू इट्सेल्फ उसमें इतने कंटेंट्स होते हैं, जैसे कि उसमें कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे नाइट्रोसामिन होता है, बेंजीनाल्डिहाइड है, इस तरह के जो केमिकल कंपाउंड से बड़े नाम हैं उसी तरह से वो हमारे शरीर के कणों को ख़राब करते हैं। और तंबाकू से जुड़े कम से कम 20 से ज़्यादा कैंसर में तंबाकू का रोल है, और बहुत सारी और बीमारियां जैसे कि सांस लेने में जो तकलीफ़ वाली जो हमारी फेफड़े की बीमारियां होती हैं, हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होते हैं, ये भी तंबाकू द्वारा होता है, जो कि हम जनरली नहीं सोच पाते हैं। हमारा जो कर्तव्य है, जो नो टोबैको डे का पर्पस है, कि हम इस बारे में अवेयर कराएं और इस चीज़ को अपनी युवा से दूर रखें।
0: जी जी जी, बहुत अच्छी बात बताई है आपने। तो डॉक्टर रश्मि जी, जब कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन कर रहा है, नशीले पदार्थों का सेवन करता है, तो उसमें ओरल कैंसर होने की संभावना काफ़ी हो जाती है, तो वो कौन से जो है प्राइमरी सिम्टम्स है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं?
1: कई बार क्या होता है कि गुटखा और तंबाकू वो गाल में रखते हैं साइड में, तो वहाँ पे सफ़ेद पैच या जबान में भी सफ़ेद पैच या लाल पैचेस जैसे बनते हैं, मतलब एक छाला जैसा बनेगा
0: जी।
1: जो सतह में बहुत खुरदुरा कलर, रेड कलर हो सकता है, लाल कलर हो सकता है, सफ़ेद कलर हो सकता है, तो हम लोग उसको ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं। तो ये इनमें इस तरह के जो छाले होते हैं, और कोई गांठ है आपके गले में, गांठ है आपकी आवाज़ में, कोई बदलाव आ रहा है, तो ये जो और जैसे अचानक से आपकी हड्डी मसूड़े जो होते हैं उसमें सूजन आ जाती है, तो कई बार क्या होता है कि घरों में लोग सोचते हैं कि ये हमारी दांत की तकलीफ़ है, ना कि कोई बीमारी है। तो हमारा जो बेसिकली सभी को कम से कम 3 महीने में एक बार जाके कोई डेंटल क्लिनिक

0: हो गया या आसपास के कोई भी ENT सर्जन को जाके अगर मुंह में इस तरह की कोई छाला गांठ है तो दिखाना चाहिए। फिर निगलने में तकलीफ हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, सब तंबाकू द्वारा हुए कैंसर। जैसे आपकी स्वर पेटी में अगर कैंसर हो जाता है तो आपकी आवाज़ बदल जाती है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं, जैसे गांठें हो गई, अल्सर हो गया, जो लंबे समय से उसको इग्नोर ना करें तो बेहतर रहता है।
1: जी, तो डॉक्टर रश्मि जी, जब हम ओरल कैंसर की बात करते हैं तो और तंबाकू के कारणों की बात करते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इस तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करता है तो उसके मुंह से संबंधित किन-किन स्थानों पर कैंसर होने की संभावनाएं होती हैं?
0: देखिए, मुंह में जनरली दो तरीके से तंबाकू का असर होता है। एक तो वो आपका पूरे मुंह में जो उसका रस रहता है, उसमें केमिकल होता है, पूरे मुंह को अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा जिस जगह पे रहता है वहाँ पे डायरेक्ट ट्रॉमा भी होता है। तो जनरली होंठ के पीछे रखने की आदत होती है, गालों में पीछे दबाने की आदत होती है और वो लगा के सो जाते हैं, तो वो एरिया तो बहुत कॉमन है। इसके अलावा मसूड़ों में हो सकता है, जबान में हो सकता है, जबान के नीचे सतह में हो सकता है, आपके तालू पे हो सकता है, फिर इस और इवन जबान के पीछे के एरिया में, जो कि कई बार दिखाई नहीं देता, आपको वो तकलीफ देगा, दर्द होगा, आवाज़ में थोड़ा सा लगेगा कि मोटी हो गई है, तो ये जबान का पीछे का एरिया होता है। तो और उस वजह से कई बार गले में गांठें होती हैं, तो ये एरियाज मेनली जो है कैंसर से ग्रसित होते हैं, जो अगर मुंह का कैंसर हम सिर्फ देखें तो।
1: जी, तो डॉक्टर रश्मि जी, आपने बताया कि जो छाले होते हैं उनसे जो है मुंह के छाले जो हो जाते हैं तो उनमें कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ नॉर्मल छाले भी होते हैं जो मुंह में अक्सर होते रहते हैं, तो एक नॉर्मल माउथ अल्सर और कैंसरस अल्सर को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते
0: ये
1: हैं?
0: आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि एक छोटे अल्सर को देख के हम डर भी सकते हैं, लेकिन कोई छाला जो कि 3 हफ्ते से ज़्यादा है और उससे आसपास की जो सतह है वो थोड़ी खुरदुरी मोटी हो गई है और वो जगह आजू बाजू लाल है और उभर जाता है और बीच में छाला जो है वो गड्ढे जैसा, आपको क्रेटर जैसा दिख रहा है, तो ये सारे ना छाले जो होते हैं उनको हमको दिखाना है। 3 हफ्ते से ज़्यादा कोई भी छाला है उसे हम इवेल्युएट कराएं, उसी में भलाई होती है। कई बार ये कैंसर का प्री कैंसर कंडीशंस भी होते हैं, तो अगर हम उसको उस लेवल पे ट्रीट करते हैं तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं और हम उनको फॉलोअप पे कुछ दवाइयाँ देके और ठीक भी कर सकते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर रश्मि जी, अभी जो वर्ल्ड टोबैको डे के विषय में हमने तंबाकू से संबंधित जानकारी दी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के जो समय में तंबाकू का सेवन जो है काफ़ी बढ़ गया है और इस तरह की समस्याएं काफ़ी देखने को मिल रही हैं। तो कार्यक्रम में हम एक छोटा सा अंतराल लेंगे और चाहेंगे कि आपकी पसंद का एक कोई गीत हम सुने।
0: पल पल दिल के पास।

0: श्रोताओं, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर रश्मि राजी से, जो एक ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और साथ ही मैक्सिलोफेशियल सर्जन भी हैं, और बात कर रहे हैं हम वर्ल्ड नो टोबैको डे के बारे में और तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में। तो डॉक्टर रश्मि जी, ओरल कैंसर की बात करते हैं, तो जब किसी मरीज को ऐसे लक्षण प्रकट हो रहे हैं कि उसे ओरल कैंसर हो सकता है, इसके लिए कौन कौन से जो है आधुनिक जांचें जो अभी हमको जो है आवश्यक रूप से जो है करवानी चाहिए और अभी के समय में वो उपलब्ध हैं?
1: देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको लग रहा है कि आपको लक्षण है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप होता है वो होता है कि एग्जामिनेशन। आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है और अपनी जांच करवानी है। ये पहला स्टेप होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मतलब हम अपनी आंखों से पहले समझते हैं कि किस प्रकार की बीमारी है। ये क्यों समझना ज़रूरी है? मान लीजिए मुंह में ना, जैसे हड्डी के पास की कोई जगह है, तो हम अगर उसका कुछ उसको समझना चाहते हैं कि इसका फैलाव कैसा है, तो हम हड्डी के लिए सीटी स्कैन बेटर होता है। और अगर हम जबान को देखें तो वो मसल का बना हुआ पूरा स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए एमआरआई बेटर होता है। तो इसीलिए पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन इम्पॉर्टेंट है। तो आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, पहले समझिए कि हमें कौन सा स्कैन कराना है। स्कैन का काम है पहले ये समझना कि ये, क्योंकि ये कैंसर क्या है कि वो लोकल एरिया में भी फैलता है और शरीर में भी फैलता है। तो पहला स्टेप होगा कि हम पहले ये समझें कि इसका फैलाव कैसा है, लोकल एरिया में कितना फैला है। तो उसके लिए अगर बोन के पास है तो हम सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई करा लेते हैं। फिर है ये कण की बीमारी, सेल में चेंजेस आते हैं, तो जब तक हम इसको प्रूफ ना कर लें, तो वो हम कर पाते हैं, हम वहां से एक सैंपल टिश्यू लेते हैं जिसे बायोप्सी की प्रक्रिया कहते हैं।

0: और उसको फिर हम माइक्रोस्कोपिकली समझते हैं कि ये बीमारी किस प्रकार की है। मुंह में भी अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं। ये तो मुंह का कैंसर जो आप तंबाकू से रिलेटेड है वो तो होता ही है, साथ में हमारी जो थूक की ग्रंथि और इसके आसपास के स्ट्रक्चर्स में भी कैंसर हो सकता है। तो बेस्ड ऑन दैट हमारा एक बायोप्सी जब आता है वो हमको बताता है कि इसको हमको ट्रीटमेंट कैसे देना है। तो मेन इम्पॉर्टेंट है इमेजिंग और दूसरा है बायोप्सी। तो सीटी स्कैन, एमआरआई और बायोप्सी जो रिक्वायर्ड है। अगर बीमारी बहुत बड़ी है तो पेट सीटी करके, होल बॉडी पेट सीटी होता है, या दोबारा बीमारी हुई है उन सब केसेस में पेट सीटी का योगदान बहुत है। वो हमें बीमारी के फैलाव को समझने में बेटर तरीके से हेल्प करता है।
1: तो डॉक्टर रश्मि जी, जब हम मुंह के हेल्थ की बात करते हैं तो हम इसे घर में रह के स्वयं ही कैसे कर सकते हैं, हम कैसे अपने मुंह के हेल्थ को एग्जामिन कर सकते हैं घर पे रहते हुए?
0: ये बहुत ही ज़रूरी है, जो क्योंकि हम हमेशा अस्पताल के करीब तो नहीं होते, तो और आप अपने शरीर से बेहतर कोई दूसरा आदमी हमें नहीं पहचान सकता। तो हमें सेल्फ चेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक प्रॉपर लाइट ए वाला एरिया चाहिए, एक मिरर चाहिए। और आपको या तो कई हमारे पास टंग ब्लेड्स होते हैं, या तो आप नॉर्मली आप फिंगर से भी कर सकते हैं। आप अच्छे से हाथ धोइए, आईने के अंदर आपके होंठ के पीछे का एरिया, सबसे पहले हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो होंठ के पीछे का एरिया, गालों का एरिया और मसूड़ों को, जबान के नीचे, जबान के ऊपर, तालू, इन सब चीज़ों को हमको प्रॉपर लाइट में और मिरर के सामने देखना है। हमें क्या देखना है? कोई भी लाल सफ़ेद छाला, कोई भी दांत अचानक से हिल रहा है, कोई ऐसी जड़ों और उसके आजू बाजू सूजन है जो पहले नहीं था, और ये जो चीज़ है अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गई है तो हमें ज़रूरी करके अपने आप को अस्पताल में जाके दिखाना चाहिए।
1: जी जी, डॉक्टर रश्मि जी, एक जो सबसे बड़ी भ्रांति हम देखते हैं कि कई लोगों को कैंसर की संभावना देखी जाती है, छाले होते हैं तो उन्हें बायोप्सी के लिए बोला जाता है, तो लोग बायोप्सी से बचने की कोशिश करते हैं, कहते हैं बायोप्सी के बाद कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है?
0: जैसे कि आपने खुद ही कहा कि ये भ्रांति है, तो इसमें सच्चाई तथ्य नहीं है।
1: जी
0: देखिए, अब एक होता है कि कोई भी चीज़ को तथ्य मानने के लिए उसका पीछे एक साइंटिफिक आधार होना चाहिए। हम यहाँ पे हेयर से में रहते हैं, उसने कहा और मैंने सुना,
1: जी जी,
0: है ना। तो जब हम इस तरह की सोच में फंस जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है हमें डर लगता है, उस डर को हमें कोई बोल दे कि हाँ तुम ये नहीं कराओगे, क्योंकि कोई भी आपके शरीर का कुछ भी कटता है आपको दर्द देता है। तो आपसे अगर हम बोलें कि हम एक सैंपल देने जा रहे हैं तो पहले तो आप उस प्रोसीजर से डर रहे हो, फिर आपको कोई बोल देता है कि हाँ इससे तुम्हारा कैंसर बढ़ जाएगा, तो ये आपके उस डर को हेल्प करता है कि मैं इस वजह से नहीं करा रहा हूँ। तो ये एक होता है डिनायल जो चीज़ है, उसमें हम उसका हेल्प लेते हैं। कभी हुआ कि 100 में से जो है एक पेशेंट आए थे, उनको हमने बायोप्सी किया, क्योंकि बीमारी अपने आप ही बढ़ने के फेज में चल रही है, और बायोप्सी ली और उसके बाद वो बढ़ गया। अब ऑब्जर्वेशन में ये है कि जब भी बायोप्सी की जाएगी तो बीमारी बढ़ जाएगी। किसी और से बात किया, उसको भी यही बताया, इस तरह से मास में ये बात फैल जाती है। हम बिना बायोप्सी के ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। हमारी दुविधा ये है, जब तक कर्ण को हम डिफाइन नहीं करेंगे तो ट्रीटमेंट देना गलत होगा। तो बेहतर है कि हम बायोप्सी से डरे ना, वो बहुत ज़रूरी स्टेप है किसी भी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने के लिए।
1: जी डॉक्टर रश्मि जी, अब पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति को कैंसर डिटेक्ट हो चुका है, तो इसके कितने स्टेजेस होते हैं और किन किन स्टेजेस में कितने जो है रिकवरी और बचने के चांस हो सकते हैं, और इनके लिए कौन कौन से अभी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां उपलब्ध हैं?
0: ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमें जब डायग्नोसिस मिलता है कि हमें कैंसर है तो सबसे पहले तो हम डर जाते हैं, क्योंकि कैंसर को माना जाता है कि ये आपका एंड ऑफ लाइफ का स्टार्ट हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। मुंह के कैंसर में अगर हम जल्दी अर्ली डिटेक्शन होता है तो हम अच्छा रिजल्ट मिलता है, हम अच्छे से चीज़ों को ट्रीट कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। मेरे खुद के इतने पेशेंट हैं जो 10 से ज़्यादा साल जी चुके हैं। तो हमें ये समझना है कि हमें इलाज कराना है। अब इसके जो स्टेजेस होते हैं वो, अब मैंने कहा कि अर्ली स्टेज में स्टेज 1, स्टेज 2, हम जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है 3 और 4, मेनली स्टेज 4 में इस बीमारी को क्लासिफाई किया गया। क्योंकि मुंह का कैंसर, मुंह में जो हमारे सारे मेन जैसे हड्डी और स्किन वगैरह सब पास में है, तो कोई अगर थोड़ा भी लेट होता है तो हम स्टेज 4 में पहुंच जाते हैं।
1: जी।
0: जो एक्चुअली स्टेजेस में डिफाइन करने का मतलब ये रहता है कि बीमारी जो है हम उसको कैसे ट्रीट करने के बाद दोबारा होने की क्षमता, ये जो

0: सकता है, तो वो साइज़ के हिसाब से हम लोग जनरली मानते हैं। अगर छोटी बीमारी है, लेस देन 2 सेंटीमीटर है, तो हम स्टेज 1 में मानते हैं, और उसको हम सिर्फ सर्जरी करके, मतलब हम जिन जो बीमारी हमें दिख रही है उसके आसपास का 1 सेंटीमीटर भाग हम निकालते हैं और हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब जो हमने निकाला है उसको हम लोग जनरली टेस्ट करते हैं। तो स्टेजिंग जो बेसिकली होती है वो हमारी जो फाइनल बायोप्सी रिपोर्ट आती है उस बेसिस पे होती है। अब मान लीजिए कई बार जो स्टेज 1 लग रहा है वो हमारे बेस्ड ऑन बायोप्सी रिपोर्ट स्टेज 2 भी हो जाता है, तो वो केसेस में कभी कभी हमको मेन सर्जरी से साथ साथ एक और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है, मोस्टली रेडिएशन करते हैं। उसके बाद 3-4 जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है, दोनों ही कंडीशन, मतलब जैसे जो लेटर स्टेजेस होते हैं उसमें सर्जरी प्लस रेडिएशन का प्रावधान है, और जब तक हम ये कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तब तक हम बीमारी से आगे नहीं निकल सकते हैं। तो बेसिकली 4 स्टेजेस हैं, और स्टेज 4 में भी अगर आपकी बीमारी डिटेक्ट हो रही है तो भी 50-60% लोग उसमें ठीक होते हैं। तो हमें ये सोचना है हम उस 50-60 के लिए हैं जिन्हें ट्रीटमेंट पूरा अगर हम करेंगे तो हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं।
1: जी जी जी। और डॉक्टर रश्मि जी, किसी व्यक्ति को कैंसर डिटेक्ट होता है तो इसका विपरीत प्रभाव तो स्वास्थ्य पर पड़ता ही है, लेकिन उस व्यक्ति की जो इकोनॉमिकली और सोशली जो कंडीशन होती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है?
0: ये बहुत ही एक्चुअली होलिस्टिक वे में अगर हम सोचें तो ये एक आदमी को कैंसर होता है जो एक मोस्टली वो ब्रेड अर्नर रहता है अपने परिवार का, दूसरा आदमी उसे लेके आता है। कई बार यहाँ पे छत्तीसगढ़ में है कि मोस्टली मैंने देखा है कि परिवार बहुत आपस में बंधे रहते हैं, लेकिन होता क्या है वो भी अपना परिवार अपना काम छोड़ के आ रहे हैं। तो भले ही एक आदमी को कैंसर हुआ है वो तो काम नहीं कर पा रहा है 3-4 महीने के लिए जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन एक आदमी दूसरा भी है जो अपना काम छोड़ के आ रहा है, तो ये दो फैमिली एक तरह से अफेक्ट हो रही है। हमारे पास सुविधा है, सरकार ने बहुत अच्छी आयुष्मान योजना इस तरह की सुविधाएं दी हुई है जिससे कि हम मदद कर पाते हैं, और बहुत सारे फंड्स भी होते हैं बड़े, कुछ अस्पतालों में फ़ंड की अवेलेबिलिटी भी रहती है। जैसे हमारे अरुण कुरकुरे फंड है जो कि इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता है, अगर हम उन योजनाओं का हेल्प लें तो हमें खर्चा वहाँ पे कम हो जाता है, लेकिन जनरली एक मोटा मोटी 12,000 से 15,000 रुपए का खर्च एक आदमी को लगता है जब हम जांच कराने जाते हैं, प्लस आना जाना, और ये 3 महीने का जो समय रहता है, सर्जरी हुई है, रेडिएशन हुआ है, 1.5 महीने के करीब रेडिएशन चलता है, तो आप काम छोड़ के जब बैठे हो तो फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी जो हम कहते हैं कि वो बढ़ती जाती है, काम नहीं हो रहा है प्लस खर्चा हो रहा है। तो मैंने ये देखा है कि है ना, इसीलिए हमें तंबाकू से दूर रहना है, ये एक ऐसा चीज है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंटेबल है अगर हम तंबाकू से दूर रहें। भले ही कुछ बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि तंबाकू हम नहीं खाते थे लेकिन हमें हो गया, लेकिन वो परसेंटेज कम है। तंबाकू अगर आप सेवन कर रहे हो तो आपको कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो तंबाकू आपको, आप पहले जीवन भर तंबाकू पे खर्च करते हो, फिर उसकी इलाज के लिए खर्च करते हो, आपने जितना कमाया रहता है आप अपने ऊपर खर्च करके चले जाते हो, तो जो डिपेंडेंट फैमिली है उसके पास कुछ नहीं बचता है।
1: जी। और डॉक्टर रश्मि जी, कई ऐसे भी हमने देखा है व्यक्ति होते हैं जो तंबाकू को छोड़ना चाहते हैं, और चूंकि उनकी हैबिट हो जाती है तो उसे छोड़ पाना उनके लिए कठिन होता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए चिकित्सा में इनको जो है एडिक्शन से मुक्त करा सके?
0: चिकित्सा में एक्चुअली टोबैको सिजेशन एक बहुत बड़ा मुहिम है जो कि सरकार चला रही है, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम्स चलते हैं, और ये अगर किसी में इच्छा शक्ति आ गई है तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि आप इस तरह के जो क्लिनिक्स होते हैं टोबैको सिजेशन क्लिनिक्स, ये मोस्टली हर सरकारी अस्पताल में आपको, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ आपको गाइडेड वे में सिखाया जाता है, जिसमें कि फिजिकल एक्सरसाइजेस के अलावा आपको आपका डिपेंडिंग कि आपको कितनी आदत है पहले वो असेस किया जाता है, बेस्ड ऑन दैट फिर हमें आपको क्या दवाई की आवश्यकता है, या आप सिर्फ ट्रेनिंग से, मतलब आपके विचारों की ट्रेनिंग से, आपकी फिजिकल ट्रेनिंग से क्या हम इसको कम कर सकते हैं, ये असेसमेंट उस क्लिनिक में होता है। जिन केसेस में हमें लगता है कि ये नहीं हो पा रहा है, आप भी चाह रहे हो हम भी चाह रहे हैं लेकिन डिपेंडेंसी इतनी है, उन केसेस में कभी कभी निकोटीन के पैचेस होते हैं, निकोटीन के च्युइंगम्स आते हैं, बट ये ऑफ द लेबल नहीं लेना है, मतलब बिना डॉक्टर की सलाह के आपको इनको नहीं लेना है। पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के थ्रू अगर हम जाते हैं टोबैको सिजेशन के, तो हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। मैंने कई लोगों को स्वयं अपने क्लिनिक में बैठ के काउंसलिंग करके हमने

0: टबैको की जो आदत है उससे मुक्ति दिलाई है।
1: जी
0: तो हमें इन योजनाओं का हेल्प लेना चाहिए, और उसके बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स भी अवेलेबल हैं। अगर हम मान लीजिए क्लिनिक तक नहीं जाते हैं, तो नेशनल क्विट लाइन नंबर बोलते हैं, टोबैको क्विट लाइन नंबर है 1800112356।
1: जी
0: तो वो एक नंबर है जिसपे आप खुद फ़ोन करके उनसे आप ले सकते हैं। प्लस आजकल जो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मोबाइल में भी आपको एप्स मिल गए हैं जो कि रिवॉर्ड और इस तरह की चीज़ें, छोटे गेमिंग फॉर्म जैसा रहता है, अगर आप उनका यूज़ करें तो आपको इसमें मदद हो सकती है।
1: जी, ये बहुत अच्छी जानकारी थी डॉक्टर रश्मि जी। डॉक्टर रश्मि जी, कार्यक्रम में चले उससे पहले आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगी?
0: मेरा आप सभी श्रोताओं से सिर्फ यही निवेदन है कि तंबाकू एक ऐसी चीज़ है जिसकी लत आपको जीवन में सक्सेस की तरफ नहीं ले जा सकती। उसके दुष्प्रभाव आपको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, आप मेंटली उसके गुलाम एक तो हो जाते हैं, तो आपका जो डिपेंडेंसी है वो आपको आपके 100% परफॉर्मेंस में हेल्प नहीं करता। हमारी जो यंग जनता है, जिसका जो हम देश निर्माण में हेल्प कर सकती है, वो फंस जाती है तंबाकू के इस जाल में। फिर हम बीमार पड़ते हैं, जो हमारा प्रोडक्टिव ईयर है वो हम अपने इलाज में बिता देते हैं। हम जो अपने परिवार के ग्रोथ और अपने स्वयं के ग्रोथ को जो टाइम देना चाहिए, या अपने जो भी आपका के जो पैसे हैं, आप जो भी कमा रहे हो, वो इन सारी चीज़ों में ख़त्म हो जाता है। तो आप सबसे यही निवेदन है कि हम सब मिल के एक दूसरे की मदद करके इससे हम दूर होने की कोशिश करें, और जहाँ भी ज़रूरत हो, इतने सारे सेंटर्स हैं, सरकार भी रेडी है हेल्प करने के लिए, आप लोग आइए। और अगर आप किसी नशे की आदत में हैं तो उसको छोड़ा जा सकता है, बस एक विल पावर चाहिए।
1: ये बहुत अच्छी बात है। और श्रोताओं, वर्ल्ड नो टोबैको डे पर आज डॉक्टर रश्मि राय जी ने जो भी बातें बताई हैं, इनका अनुसरण करना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि धीरे धीरे भारत में तंबाकू से होने वाले कैंसर की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। और जो भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हों और वो तंबाकू या कोई भी नशीले पदार्थों का एडिक्शन हो, वो आज ही तंबाकू छोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि तंबाकू से होने वाली बीमारी सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार के लिए नुकसानदेह होती है। और श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर रश्मि राय जी से, जिन्होंने वर्ल्ड नो टोबैको डे और साथ ही तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों, उनके लक्षण और इलाज के बारे में बातें बताई। तो डॉक्टर रश्मि जी, कार्यक्रम में आ पाएं और हमारे श्रोताओं को जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह का अनुप्रसारण अभी हो रहा था आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। विविध भारती कार्यक्रम अब हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। ये प्यारा सा गाना भी आप सुन रहे थे कदर टू फिल्म से, विशाल मिश्रा, नीति मोहन और साथियों की आवाजें, गीतकार थे सईद कादरी और संगीतकार मिथुन। दोस्तों आज है इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो यानी अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। इसका उद्देश्य आलू के पोषण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा में उसके महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आलू विश्व की प्रमुख खाद्य फसलों में से एक है, ये हर आय वर्ग के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। भारत सहित अनेक देशों में आलू की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, ये किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक है। आलू से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं जैसा कि हम लोग रोज खाते भी हैं, इसलिए इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। आलू की खेती और उससे बनने वाले नाना प्रकार के व्यंजन आजीविका का महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध कराते हैं, इसीलिए इस वर्ष की थीम भी शायद यही बात कह रही है। इस वर्ष की थीम है वेयर पोटैटोज ग्रो लाइवलीहुड्स फ्लरिश। तो चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ा जाए और आपको सुनवाते हैं ये

0: अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज में पिंटू की पप्पी फिल्म का गाना। रमन रघुवंशी ने लिखा इसे और संगीत से संवारा डॉक्टर नीट्स ने। आप सुन रहे वेद भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए रश्मि रॉकेट फिल्म का गाना। आवाजें हैं भूमि त्रिवेदी और साथियों की, कौशल मुनीर के बोल और तर्ज अमित त्रिवेदी की।

0: रेडियो से भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए एआर रहमान और हिरल विरदिया की आवाजों में महबूब का लिखा और एआर रहमान का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम हीरोपंती 2।
1: The fucker, the fucker, the fucker, the fucker.

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लो। सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
2: भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश देहाती डिस्को फिल्म से दिव्या कुमार की आवाज प्रणव वत्स ने लिखा इसे और संगीतबद्ध किया है गणेश आचार्य ने।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर

0: सुनने वालों को नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जो सिनेमा के पर्दे पर बतौर विलेन भी नजर आए।
1: मैं थूकता हूं तेरी सूरत पे, थूक कर दिखाऊं? हवेली पे आ जाना, कल यहां पे हजारों लोग होंगे। पूरी फोर्स बदलवा के रख दूंगा मैं, हाहाकार मचा दूंगा।
2: क्या
1: हाहाकार?
2: तेरे बाप का राजा क्या?
3: क्वाइट विक्रम, मामा ठाकुर से गलती हुई है।
2: क्या बात कर रहे सर?
1: ये बात मैं दिल्ली तक लेकर जाऊंगा।
2: चलिए अभी दिल्ली।
0: बतौर चरित्र अभिनेता भी, बतौर कॉमेडियन भी।
4: ए खालिद भाई, मेरा नंबर है।
5: अरे यार तू दोस्त है अपन का, मैं गया तू गई की बात?
4: ना ना, दोस्त है तो घर पे आ।
5: क्या बात करता है, सिर्फ 50 रुपया? ये तो बहुत कम है यार, तू टेंशन मत ले यार, कोयला ले और 50 के आगे एक जीरो लिख डाल, 500 हो जाएगा, बात खत्म।
6: क्या 500? खालिद भाई मेरी बीवी क्या?
5: अरे सॉरी, ये तो बहुत बुरा हुआ, सॉरी।
7: एक बार ये लिखने वाला खालिद भाई मेरे हाथ में आ जाए, मैं उसकी डेथ सर्टिफिकेट लिख डालूंगा, देखना।
5: मेरे को मालूम है किसने लिखा है।
0: और उन्होंने रंगमंच पर भी अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाई। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम सलाम कर रहे हैं जाने माने अभिनेता परेश रावल को।

परेश रावल का जन्म 30 मई 1950 को मुंबई में हुआ था। उनका परिवार जुहू में रहता था और उनका एडमिशन वहां जुहू स्कूल में करवा दिया गया। जब वो 11-12 साल के थे तो स्कूल के मंच पर अभिनय करने लगे और जुहू स्कूल की प्रिंसिपल ने उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने नन्हे परेश से कहा कि वो अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मंच पर वो अपनी अभिनय प्रतिभा की जौहर दिखाना जारी रख सकते हैं। स्कूल की पढ़ाई इसी तरह से चलती रही। रंगमंच और पढ़ाई को किसी तरह से परेश रावल ने बैलेंस किया और फिर मुंबई के नरसी मुंजी कॉलेज में पढ़ने लगे। यहां के प्रिंसिपल ने भी परेश रावल की अभिनय प्रतिभा को समझा और उनके साथ सहयोग किया, यानी उन्हें कॉलेज के लेक्चर्स छोड़ देने की अनुमति मिल गई क्योंकि वो अपने कॉलेज के लिए थिएटर किया करते थे। परेश रावल ने अपने कॉलेज को कई प्रतियोगिताओं में जिताया। उसके बाद 1973 आया जबकि परेश रावल ने पेशेवर थिएटर ज्वाइन किया। इंडियन नेशनल थिएटर के बैनर तले उन्होंने अपना पहला प्ले किया जिसका नाम था वैन छे मौत। ये वो दिन थे जब परेश फिल्मों में काम नहीं करना चाहते थे। वो थिएटर की दुनिया में खुश थे क्योंकि यहां उन्हें अपने मन मुताबिक एक्टिंग करने मिल रही थी। लेकिन फिर उनकी नजर पड़ी नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी और अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं के काम पर, और तब उन्हें यह एहसास हुआ कि थिएटर के अलावा फिल्मों में भी अभिनय की दुनिया का विस्तार है। और तकरीबन 4-5 साल बाद सन 1978 से 1980 के बीच परेश रावल ने यह फैसला किया कि उन्हें फिल्मों की दुनिया में जाना है। फिल्मी दुनिया में संघर्ष करना शुरू किया। श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, कुमार साहनी जैसे कला फिल्मों के निर्देशकों से उन्होंने समय समय पर मुलाकात की और बताया कि वो फिल्मों में काम करने के इच्छुक हैं और फिलहाल थिएटर में सक्रिय हैं। लेकिन परेश रावल का काम

अब परेश को ये समझ में आ गया था कि फिल्मों में उनके लिए फिलहाल तो जगह नहीं है। वो थिएटर में अपना पूरा ध्यान लगा रहे थे। एक दिन की बात है, मुंबई के मशहूर पृथ्वी थिएटर में परेश रावल के किसी नाटक का शो चल रहा था।

जाने माने प्रोड्यूसर करीम मुरानी उस शो को देखने आए और उन्होंने नेपथ्य में जाकर परेश रावल से भी बात की और बाद में निर्देशक राहुल रवेल से परेश के नाम की सिफारिश की। राहुल रवेल उन दिनों फिल्म बना रहे थे अर्जुन, और सन 1985 में परेश रावल को फिल्म अर्जुन के लिए साइन कर लिया गया। शूटिंग का पहला दिन था, पहली बार परेश रावल कैमरे का सामना कर रहे थे। उन्होंने अपना टेक इतनी अच्छी तरह से दिया कि निर्देशक राहुल रवेल ने कहा, परेश जी अब आप मेरी हर फिल्म में काम करेंगे। और इस तरह से परेश रावल थिएटर की दुनिया से होते हुए फिल्मों में चले आए।

धीरे धीरे परेश रावल ने फिल्मी दुनिया में अपने पैर जमाने शुरू किए, लेकिन इन दिनों वो नाटक करते चले जा रहे थे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, सन 1976-77 का जमाना था। परेश रावल एक गुजराती नाटक कर रहे थे, ठोकर, जो पीटर श्वाफर्स के नाटक इक्वल पर आधारित था, और इन दिनों उनकी मुलाकात हुई मॉडल और अभिनेत्री स्वरूप संपत से। परेश रावल को स्वरूप संपत से प्यार हो गया, लेकिन दिक्कत यह थी कि परेश रावल का ताल्लुक एक मध्यमवर्गीय गुजराती परिवार से था और स्वरूप संपत एक अंग्रेजीदा परिवार से आई खूबसूरत मॉडल, मिस इंडिया और एक बेहद खूबसूरत नाजुक शख्सियत थी। दोनों का कहीं कोई मेल नहीं था। परेश कहते हैं कि ये उनके लिए सपनों जैसे दिन थे। आखिरकार एक दिन परेश रावल और स्वरूप संपत ने शादी कर ली।

परेश रावल कहते हैं कि फिल्मों में अभिनय के लिए अगर हिंदुस्तानी सिनेमा के कोई आदर्श हैं उनके लिए तो वो हैं बलराज साहनी, नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी। परेश रावल का ये भी मानना है कि अभिनय उन्हें बड़ा ही दिलचस्प करियर लगता है क्योंकि एक्टिंग की दुनिया में एक जीवन में कई जीवन जीने का मौका मिलता है। अर्जुन के बाद परेश रावल को फिल्मी दुनिया में अपना नाम अच्छी तरह से कमाने का मौका मिला तो वो थी महेश भट्ट की सन

0: 1986 में आई फिल्म नाम, इसमें भी परेश रावल ने विलेन का रोल किया था। इसके बाद तो परेश रावल ने कई फिल्मों में तरह तरह के रोल किए। कभी वो बतौर विलेन नजर आए, कभी चरित्र अभिनेता के तौर पर, और कभी आपको हंसाते हुए नजर आए, कॉमेडी करते हुए।
1: विश्वजीत, हाँ बोल, ये इसमें कौन सी साड़ी पहननी है, है?
2: पता नहीं इनकी नाम भूलने की बीमारी कब जाएगी। इतनी सारी साड़ियाँ लेकर क्या कर रहे हो?
1: अरे भाई, कल तुमने जो 15-20 साड़ी खरीदी थी ना, है ना, तो मैं ये पूछने आया हूँ कि इसमें कौन सी साड़ी को इस्त्री मारनी है। डार्लिंग विश्वजीत,
2: परमजीत।
1: कौन परमजीत?
2: मेरा नाम परमजीत है जिससे तुम।
3: मेरा नाम परिमल नहीं, अनमोल है।
1: ए, आप तेरे को क्या हो गया? चुनीलाल?
2: मणिलाल।
1: कौन मणिलाल?
2: तोड़ा नाम मणिलाल है, मणिलाल पटेल।
1: ये नाम मैंने कब रखा?
2: बचपन से।
1: बचपन से? बचपन से मेरा ये नाम है, और मुझे अभी बताती हो तुम? ले, अभी मैं याद रखूंगा, मेरा नाम मेथी लाल है बस।
2: ओ जीसस।
1: जीसस? अभी तुमने बोला ना मेरा नाम मेथी लाल है, अभी जीसस।
2: गेट आउट, गेट आउट।
0: परेश रावल की सबसे मशहूर कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी। परेश मानते हैं कि हेरा फेरी की सफलता का सारा श्रेय जाता है इस फिल्म के लेखक नीरज वोरा को, जिन्होंने कॉमेडी को बड़ी अच्छी तरह से निभाया था।
4: तो भैया, आप गांव में घर है ना आपके?
5: नहीं है। क्यों?
4: नहीं, क्योंकि अगर कल शाम ने आपको घर से निकाल दिया तो मेरा तो ठीक है, आप इस उम्र में कहां कुत्ते की तरह भटकोगे।
6: देख राजू, जबान को लगाम दे, समझा?
4: देखा, चोर की दाढ़ी में तिनका।
5: सच बात बोलता तो मेरे को कोरा कागज पे अपना दस्तखत दे दे रे बाबा।
7: आपको मुझ पर भरोसा नहीं?
4: ये इसके दिल में खोट है।
6: तेरे दिल में खोट है? मैं तो किराया देकर रहता हूँ, तू तो मुफ्त में रहता।
4: हाँ तो मुफ्त में रहता तो क्या हुआ, मैं दस्तखत करने को तैयार हूँ।
6: तो मैं भी दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ।
4: हाँ तो करना तू।
6: हाँ तो तू भी करना।
4: हाँ तो कागज लेके आना तू।
6: तू कागज ले।
4: अरे मैं क्यों लेके
6: आऊं?
4: तुम दोनों के दोनों बाहर जाओ, पेपर लेके आओ, जाओ।
5: इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले।
4: मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। हेलो, पेपर पे साइन किया है, इसने अभी तक नहीं किया, खोट है इसके दिल में।
6: बताओ ना, साइन कर ले बाबा, साइन कर। तू कर ले साइन, साइन कर।
8: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।
7: क्या हुआ? आपको गाना सुनाई दिया?
6: गाना?
4: ये सब बहानेबाजी है, मैं चैलेंज मार के बोलता हूँ ये साइन नहीं करने वाला।
6: ये तो साइन कर रहे बाबा, साइन कर रहे, जल्दी साइन कर रहे, साइन कर।
8: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।
7: आपको गाना नहीं सुना दे रहा?
6: कौन सा गाना?
7: साफ सुनाई दे रहा है।
4: ये गुरु घंटाल आदमी है, साइन नहीं करने वाला। मैं कहता हूँ इसका बोरिया बिस्तर उठाओ, बाहर फेंक दो उसको।
6: ये तो साइन कर रहे, साइन कर रहे, गाने लगा ले, साइन कर रहे गाने।
9: हेलो
4: हेलो, देवी प्रसाद?
9: चम्मा
4: नहीं, देवी प्रसाद नहीं है, तुम क्या करोगे?
9: सर वो मेरी मछली का क्या हुआ?
4: वो तो मैं खा गया।
9: खा गए?
4: हाँ, वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया।
0: बतौर विलेन परेश रावल अपनी दो फिल्मों को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, एक है फिल्म डकैत और दूसरी फिल्म कब्जा। आज परेश रावल 100 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं, और एक कलाकार के लिए सबसे मुश्किल होता है अपनी कुछ प्रतिनिधि फिल्मों का चुनाव करना। लेकिन अपने एक इंटरव्यू में परेश रावल ने अपनी पसंदीदा फिल्मों के बारे में बताया है। उनकी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है केतन मेहता की फिल्म सरदार, जिसमें उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का किरदार निभाया था। परेश रावल से जब पूछा गया कि इस फिल्म के लिए उन्होंने तैयारी कैसे की, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल से तो वो मिल नहीं सकते थे, वो इस दुनिया में नहीं है, तो परेश का जवाब था कि उन्होंने असंख्य तस्वीरें उनकी देखी और उन तस्वीरों के जरिए ये अंदाजा लगाया कि सरदार पटेल किस तरह से बोलते होंगे, किस तरह से चलते होंगे और उनका स्वभाव किस तरह का होगा। इसके अलावा उन्होंने इस अभिनय के लिए बहुत सारी रिसर्च भी की।
10: फिर वही बात, हम यहाँ पे आजादी की बात करने आए हैं, बंटवारे की नहीं। और अगर बंटवारा होना ही है तो उसका निर्णय एक आजाद देश के आजाद लोग करेंगे, अंग्रेज सरकार नहीं।
0: पूजा भट्ट की फिल्म तमन्ना को वो अपनी बहुत महत्वपूर्ण फिल्म मानते हैं, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने एक वृहन्नला का, एक हिजड़े का किरदार निभाया था। परेश ये कहते हैं कि ऐसे किरदार भी मानवीय होते हैं, उनका अपना संघर्ष, उनकी अपनी तकलीफें होती हैं,

0: राजा।
1: हेरा फेरी आंखें आवारा पागल दीवाना, गरम मसाला, दीवाने हुए पागल, मालामाल वीकली, गोलमाल, हलचल, छुप छुप के, भागम भाग, शंकर दादा, भूल भुलैया, वेलकम, मेरे बाप पहले आप, दे दनादन और हंगामा जैसी ना जाने कितनी फिल्में हैं जिनके जरिए परेश रावल ने आपको हंसाया है।
2: और नाचते नाचते तुम्हारे पांव कहां पड़ रहे थे और घुंघरू किस ताल में बज रहे थे वो मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। अब जब तुम्हारी चोरी सामने आ गई है तो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा कर लौंडे के साथ गुलछर्रे उड़ाने का बहाना बना रही हो।
3: अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे?
2: अरे नौटंकी, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? क्या बेवकूफ समझ रखा है मुझे? इतना याद रखना, हम सब समझ गया हूँ और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और ये जो महंगी महंगी साड़ी है जो तुम्हारी इस गोल घूमर जैसे बदन को पहनाई है उसका क्या? और दिन रात जो तरह तरह के खाने जो तुमने चाट चाट के रसोई घर में खाए हैं उसका पैसा कौन देगा?
1: सन 1994 में परेश रावल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला फिल्म वो छोकरी के लिए, और फिल्म सर के लिए उन्होंने जीता फिल्म फेयर पुरस्कार।
4: हम लोगों को इतना खुश देखकर आपको अजीब लग रहा है ना? मैं बताता हूँ, बात यह है कि जब ये छोटी थी ना तो खुश रहती थी, खेलती रहती थी, हाँ, लेकिन जिस दिन से इसकी माँ गई है ना, चुप हो गई है, घर एकदम शमशान हो गया था। और इतने साल के बाद आपने सर पे हाथ रख दिया, मेरे घर में जान आ गई है।
1: सन 2001 में फिल्म हेरा फेरी के लिए परेश रावल चुने गए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन फिल्म फेयर की ओर से। सन 2003 में आवारा पागल दीवाना फिल्म के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का कल राज्यपाल ने किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में तेज आंधी और बारिश के कारण और अब समाचार विस्तार से महोत्सव का आज दूसरा दिन है, रमन डे का ने किया था। इस अवसर पर आम उत्पादन और अपार संभावनाएं हैं पर ध्यान कि किसानों की आय बढ़ाने में आम सकती है। 200 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए हैं। केंद्र सरकार के देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में और ऊर्जा बचाने की अपील की। राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को 6 लाख का स्वामित्व संबंध में बैंक ऑफ इंडिया के साथ एमओयू करने की अनुमति दी।

है। एनएचएम कर्मचारियों को मिलेगी जिनका वेतन खाता बैंक ऑफ इंडिया में संचालित है। बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि इस पहल से एनएचएम के हजारों कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेगा और उनके परिवारों को आर्थिक संबल प्राप्त होगा। जिले में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार छिपाऊ दो दर्जन से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा लखनपुरी में एक, बड़े सिलाटी में तीन और बड़े कनेरा में एक मकान को नुकसान पहुंचा है। धनपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक मवेशी की मौत हो गई। आंधी के कारण कई पेड़ उखड़ गए तथा बिजली के खंभे और तार क्षतिग्रस्त भी बाधित हुई। राजस्व विभाग प्रभावित नुकसान का आकलन कर रहा है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में रायपुर प्रेस क्लब द्वारा रायपुर में रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। कार्यक्रम के दौरान कुल चार सत्र होंगे जिनमें वरिष्ठ पत्रकार निधि पत्रकारिता से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। पहल के तहत रायपुर शहरी जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण का एक सफल मॉडल बनकर उभरा है। जल की समस्या से जूझ रहे शहर में अब रायपुर में तकनीकी विशेषज्ञों बिल्डरों के सहयोग की है। इसके तहत 2025 में बनाई गई है। रचनाएं शामिल हैं। छापेमार कार्रवाई कर किया है। जांच के दौरान एक मकान से तीन बरामद किया गया। से किसानों को डीएपी खाद बताकर बेचा जा रहा था। मौके पर पहुंचकर कर दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कुछ जिलों में तेज आंधी और बारिश के कारण और पूरे होने के उपलक्ष में रायपुर प्रेस क्लब आज राजधानी। इसी के साथ समाप्त हुआ। सकता है। नमस्कार।

के रायपुर केंद्र से सात मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। अब आइए हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज की दोनों सभाओं से प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य एवं शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में। पर सुनिए का कार्यक्रम आपके पत्र फरमाइश हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 10:30 पर। हम प्रसारण समय होगा शाम 5 बजे का। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन सकते हैं

होगा शाम 5:10 पर। महिलाओं का कार्यक्रम वनिता विहार का समय होगा 5:30 का, जिसमें आपस की बात का विषय

इसके साथ ही चर्च से नाता जोड़ो, इसके साथ ही गीत का मिनट पर शाम 7 बजे और रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण समय होगा शाम 7:20 का, जिसमें आज की बात का विषय होगा खरपतवार। इसके साथ ही आज की नसीहत के अंतर्गत सुनिएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विषय पर जानकारी। इसके साथ ही होगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत रात्रि 8:20 पर कराएंगे रात्रि 10 बजे से, और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सरयामिनी का समय होगा रात्रि 10:30 का।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
3: अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और 50 महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल लोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: जा तो सब्जी बाजार में नींबू और मिर्ची लेकर। क्या दुकान तू तो देख रहा है, दिन भर 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कर, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार।
0: गोपाल की बात ये रही।
1: क्यों नहीं मा?

अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान

0: संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भाषाओं की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

समाप्त होता है। ये केंद्र है, 10 मिनट हुए हैं। गीत कार्यक्रम ये गाना रचना व संगीत भानु सिंह का है।

आशा भोसले और अदनान सामी के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये गाना। गीत लिखा कुणाल वर्मा ने और संगीता अदनान सामी का। कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं प्रकृति मिश्र और सत्यजीत जेना की युगल स्वर में। रचना रवि राही की है और धुन प्रकृति मिश्र का।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट

0: से वंचित रह जाता।
1: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

लड़खड़ा के चल पड़ा के मुंतजर है मैं कदे हम वो जमी का टुकड़ा जिस पे खंदकें और सरहदें अब दिल को बड़ी दिक्कतें मुशक्कतों में दिन कटे हम मुख्तलिफ भी हैं कभी हम होते हू बहू हम किस किस्म की जंग में और हम किसके रूबरू दिल की बेदिली का क्या करूं बता भी दो ये पर्दे अब हटा भी दो सवाल।

0: राहुल सेठू और तलहा अंजुम के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये गाना। रचना नक्शवी और लल्ली की थी और संगीत संयोजन था राहुल सेठू का।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagad यानी shrotarayagad@gmail.com।
0: इस संदेश के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आपके पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुन रहे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में और नमस्कार आपकी दोस्त एंड होस्ट रजनी का। प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं आपके पसंदीदा गाने के साथ। इसके लिए फरमाइश की पत्र आया आप सबका बेमितरा से हैं सुरेश सारथी पूर्णिमा। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से ये पत्र आया नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा का यही गीत पसंद किया। पत्र आया श्रृंगेरी महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से है मिथिलेश देवांगन, मधु, हिमांशु और अंकित देवांगन। इसी गाने की फरमाइश की पत्र लिखा सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरवा से है कारी राय, मीनाकारी, पुंजराज, आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्र और ढोली साकरा से यह गीत सुनना चाहा जयंत कुमार पैरागी ने। इसी गाने की फरमाइश आई पत्र आया गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, जयतेग और मिका बिरक। लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश पर ये गाना। फिल्म का नाम जख्म, आवाज अलका याग्निक की है, गीत लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत MM करीम का। प्रोग्राम का नाम आपकी फरमाइश।

0: आकाशवाणी F90।
1: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं रोशनी चौधरी रायगढ़ से आप सभी श्रोताओं को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने की शुभकामनाएं देती हूँ। 90 साल

0: सिर्फ समय नहीं, अनगिनत एहसासों का सफर है। आप आवाज नहीं, एक अपनापन है जो हर घर में चुपचाप बस जाता है। बचपन की कहानियां हो या सुकून भरी शामी, आप हर लम्हे में साथ रहे हैं। इस तेज दुनिया में आपने हमें ठहरना सिखाया, सुनना और महसूस करना सिखाया। एक श्रोता के रूप में दिल से धन्यवाद हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए। आकाशवाणी यूं ही अपनी मिठास घोलती रहिए। धन्यवाद।
1: आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं आपके पत्रों व ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और कार्यक्रम आपकी फरमाइश की अगली पेशकश में लीजिए सुनिए ये गाना आपकी पसंद पर। इसके लिए फरमाइश की पत्र आया लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति थनक्ष और आरू साहू। यही गीत सुनना चाहा। पत्र लिखा लच्छनपुर से हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्बे शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। धरसीमा से ये पत्र आया इसी गाने के लिए छेदूलाल यादव, सीता अर्चना, अरुणा अनुराधा और अल्पना यादव का। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से हैं छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक अलका, अनामिका बलदाऊ यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव। इसी गाने की फरमाइश की पत्र आया गौशाला पारा रायगढ़ से है विनोद कुमार गुप्ता, रीना नेहा, यीशु और अंशु गुप्ता। लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर करण अर्जुन फिल्म का ये गाना कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में। गीत लिखा समीर ने और संगीत है आनंद मिलिंद का।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: इस संदेश के बाद फिर एक बार आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। अगले गाने की फरमाइश की हमें ईमेल किया जिनेंद्र, श्रोता संघ परभड़ी से हैं, महाराष्ट्र से। रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश, प्रीतेश और पूरा संघई परिवार, इसी गाने की फरमाइश आई। पत्र आया छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा का। अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी साहू, देवेंद्र प्रताप, नेहा देवी, मिलिंद कुमार, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, यही गीत पसंद किया। पत्र आया आप सबका कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, सेक्टर 67 मोहाली से ये पत्र आया। TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा का इसी गाने की फरमाइश आई। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर और महराज जहां का, यही गीत पसंद किया। बाजार पारा बेपिन तरह से हैं भरत लाल सिन्हा, लव कुमार और लक

की सिन्हा। लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर दिल फिल्म का ये गाना अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण के युगल स्वर में। गीत लिखा समीर ने और धुन है आनंद मिलिंद का।

दिल फिल्म के इस गीत के बाद अगला गाना लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर। ग्राम दरुचुरा से ये पत्र आया ददवा साहू भूरी साहू रेखा मोतीलाल साहू का। रुआ बांधा शनिचरी बाजार भिलाई से इसी गाने की फरमाइश की पत्र लिखा आप सबने सुशील जैन कल्पना जैन सैया सौरभ शौर्य और शुभम जैन। इसी गाने की फरमाइश की पत्र आया आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा मीना योगेश मैंडी सौरव शाइना और निवान शर्मा का। इंदिरा नगर रायगढ़ से हैं शेख अब्दुल सलीम बेगम परवीन मानो अब्दुल जमीर मोहम्मद अलीम आसिफ नईम राजा। ग्राम पंचायत बटेना बलकरण से हैं बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति वर्मा रेखा धनेश्वरी वर्मा। चटौदा सारा गांव से इसी गाने की फरमाइश की सुजान वर्मा सोहद्रा वर्मा आयुषी और कृत वर्मा ने। लीजिए सुनिए ये गाना फिल्म विश्वात्मा से साधना सरगम की आवाज में। रचना आनंद बख्शी की है और तर्ज विजू शाह का।

श्रोताओं, आप भी अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं आकाशवाणी रायगढ़ के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। इसके लिए नोट करिएगा पत्र व्यवहार का पता। पता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश, द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी केंद्र रायगढ़। पिन संख्या है 496001। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं shrotarayagad@gmail.com पर। इसके साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश से मुझे यानी अपनी दोस्त एंड होस्ट रजनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आपके पत्रों व ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश अभी आप सुन रहे थे। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजने को हैं विविध भारती कार्यक्रम। अब हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। ये पहला जो गीत है अब्दुल्ला फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत आर डी बर्मन का।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है मन चित्रपट संगीत। अब आपको सुनवाते हैं एग्रीमेंट फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गुलशन बावरा के बोल, संगीत है बप्पी लाहिरी का।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों ना गम किया करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: चित्रपट संगीत कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं चंबल की कसम। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीत को लिखा साहिल लुधियानवी ने, संगीत तैयार किया खय्याम ने।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।
1: दोस्तों नमस्कार, आज के मैटिनी शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्व तंबाकू दिवस पर आइए सुनते हैं BEST के चीफ मेडिकल ऑफिसर अनिल कुमार सिंगल से जयंत पात्रीकर की ये बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती के मैटिनी शो में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम सब जानते हैं 31 मई ये जो दिन है, इस दिन मनाया जाता है विश्व तंबाकू विरोधी दिवस। और तंबाकू विरोध क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए, सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है BEST के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल जी को। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: थैंक यू।
2: सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो लत है तंबाकू की, ये जो नशा होता है, ये लत के अलावा भी तंबाकू का कोई इस्तेमाल होता है, वो किस तरह से होता है?
3: जी एक्चुअली ह्यूमन ने तंबाकू का जो सेवन करने से पहले उसको कोई अलग तरीके से यूज करते थे। जैसे कि हमारा देश खेती प्रधान देश है तो वहाँ पे खेती हमारा पूरा डिपेंडेंसी रहता है। तो खेती को जो दो तीन चीजें से जो खतरा है, जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स या बड़े जानवर वगैरह, उनसे खतरा रहता था, तो उनके खेती के जो बॉर्डर पे तंबाकू के प्लांट्स लगाए जाते थे।
2: अच्छा।
3: और उनकी वो स्मेल से जो वाइल्ड एनिमल्स वो दूर चले जाते थे। दूसरा था कि खेती को दूसरा जो प्रॉब्लम था वो चूहे से, तो चूहे खेती खराब कर देते थे। तो अभी आज भी की तारीख में भी जो तंबाकू के जो लीव्स रहते हैं
2: जी जी,
3: वो जो बड़े रहते थे वो सूखने के बाद उसको गर्म करके,
2: अच्छा गर्म करके
3: उसको आग लगा के उसको चूहे के जो अंडरग्राउंड जो उनके
2: बिल होते हैं
3: उसमें डाल देते, चूहे भाग जाते या मर जाते थे।
2: अच्छा, अच्छा।
3: आज की तारीख में भी हमारे जो गाड़ी
2: में, ग्रामीण इलाकों में ऐसा होता है,
3: इवन सिटी में भी,
2: सिटी में
3: जो ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन चूहे गाड़ी के जो वायर
2: कुतर जाते हैं,
3: तो उसको रोकने के लिए भी तंबाकू डाल देते थे। तो उसके अलावा जो तंबाकू का जो पान रहते हैं उसको सूखने के बाद उसका पाउडर करते, उसको ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड करके भी यूज होता था। जैसे इंसेक्ट्स है जो खेत को या धान को खराब न कर दे। सो ये कुछ तरीके थे जो अदर देन सेवन हम इंसान इसको यूज करते थे। तो ये मुझे यहाँ पे कहना है कि तंबाकू से किसी को भी सेफ नहीं है, सब खतरे में है। अगर वो जीव छोटा है तो जल्दी मरेगा, अगर बड़ा है स्लोली स्लोली लेकिन मरेगा जरूर। तो तंबाकू के लिए कहा जाता है कि तंबाकू के जो सेवन करने वाले में से 50% लोग को तंबाकू मारी डालता है। तो ये मैं श्रोताओं को मैं चाहता हूँ कि बात ध्यान से सुने और अपने दिमाग में उसको हमेशा के लिए स्थापित

0: जी, ये तो बस एक पेस्टिसाइड की तरह इसको जो इस्तेमाल किया जाता है वो केवल उतनी बात अच्छी है तंबाकू की, ये कह सकते हैं बस,
1: बाकी यूज
0: बाकी कुछ नहीं। चलिए एक और आपसे बात जाननी थी कि आप BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और 2014 से आपने एक मुहिम चलाई थी तंबाकू विरोधी, क्योंकि हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट लाइन में जितने लोग काम करते हैं, खासतौर से जो ड्राइवर्स होते हैं बस के और ट्रकों के ड्राइवर्स होते हैं, इन लोगों में ज़्यादा लत होती है तंबाकू की। तो आपने जो मुहिम चलाई है इसके विरोध में, तो उसके 12 साल हो गए, क्या फ़ायदे आपको नज़र आए?
1: या तो मैं श्रोताओं को बताऊं कि तंबाकू में 7,000 अलग अलग प्रकार के केमिकल्स रहते हैं,
0: ओह, सात
1: रसायन,
0: हजार
1: 7,000।
0: रसायन, ओह,
1: जब कोई भी उसको कंज्यूम करता है तो वो शरीर में जाके अलग अलग बीमारियां करते हैं, जैसे कि सिंपल हार्ट बीट्स बढ़ जाती है,
0: जी,
1: ब्लड प्रेशर बढ़ता है,
0: हाँ
1: हार्ट
0: हाँ
1: अटैक आ सकता है, देन लकवा मार सकता है, अपने जो बोन्स है वो वीक
0: जी,
1: हो जाते हैं,
0: ओहो,
1: और तंबाकू खाने वाले लोगों को बैक पेन या शोल्डर पेन या फ्रैक्चर के भी प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा तंबाकू की वजह से TB सरी की बीमारियाँ होती है, और
0: ओ
1: सबसे डेंजर जैसे कि कैंसर,
0: कैंसर,
1: पर्टिकुलरली मुंह का कैंसर। तो ये सब बीमारी की वजह से हमारे पास हमारे एम्प्लॉयज़ जो कर्मचारी उसकी लत के वजह से पीड़ित थे, और
0: जी,
1: उसके वजह से हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन भी कम हो रहा था, बिकॉज बीमारी की वजह से वो काम पे नहीं आ सकते थे। तो हमने ये सब चीज़ को देख के हमने 2014 में तंबाकू मुक्त बेस्ट ये अभियान शुरू किया, और
0: तंबाकू
1: हमने
0: मुक्त बेस्ट,
1: बीएसट
0: अच्छा,
1: और आज तक उसको हमने कंटिन्यू किया है। तो 12 साल के आज ये अभियान को हो गए, तो
0: जी,
1: मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये 12 साल में 5,000 हमारे कर्मचारी ने तंबाकू की व्यसन परमानेंटली छोड़ दिया है।
0: वाह,
1: उसके अलावा एक जो सर्वे है उसको हम गेट्स बोलते हैं, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे,
0: अच्छा,
1: उसके मुताबिक कि सरकार अगर 100 रुपीज़ टैक्स लेती है तंबाकू के ऊपर, तो सामने 816 रुपये का हमें अतिरिक्त भार हमें भुगतना पड़ता है। वो
0: ओहो,
1: जो भार है मेनली तंबाकू की वजह से जो बीमारियां होती है उस पर
0: जी,
1: ट्रीटमेंट के लिए, और दूसरा जो बीमारी की वजह से लोग काम पे नहीं जाते या प्रोडक्टिविटी लॉस के हिसाब से
0: जी,
1: ये नुकसान। तो 12 साल में हमने देखा है कि बीमारियां कम हो गई, उसका जो ट्रीटमेंट का खर्चा कम हो गया, बीमारियां कम हो गई इसलिए सिकनेस एब्सेंटिज्म भी हमारे कम हो गया, और इसके
0: अच्छा,
1: वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और रेवेन्यू भी बढ़ गया, और साथ साथ में बीमारियां कम हुई है तो जो उसकी वजह से मॉर्टेलिटी थी
0: जी,
1: जो डेथ वो भी हमारे इधर कम हो गई है, कैंसर के प्रमाण हमारे उधर कम हो गए। तो लोगों में एक अच्छी भावनाएं तैयार हुई है तंबाकू के विरुद्ध में। तो ये बीमारियां कम होने से ये जो लोग ठीक हो रहे हैं या जो बीमार बीमार कम पड़ रहे हैं,
0: जी,
1: तो ये नोटिफाई किया गया और हमारी जो अभियान को नेशनली और इंटरनेशनल भी रिकग्निशन मिला है, एक्नोलेज किया गया, अवार्ड भी मिला है।
0: क्या बात है,
1: तो ये तो मैं चाहता हूँ कि पूरी भारत में ऐसे अभियान अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में
0: चलाए जाएं,
1: चलाया जाए, जो
0: क्या बात,
1: लोग अच्छे हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े
0: निश्चित रूप
1: हमारी।
0: से आप सभी, आप और आपकी पूरी टीम जो ये मुहिम चला रही है, अभियान चला रहे हैं, आप इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं,
1: यस थैंक यू,
0: पुरस्कार भी आपको मिल चुका है
1: यस
0: और काफ़ी उपलब्धियां रही इस
1: यस
0: अभियान के। बेसिक एक बहुत ही सवाल ये है कि लोग क्यों खाते हैं तंबाकू, क्या होता होगा, ये नशे की शुरुआत कैसी होती है, और वो खाने के बाद क्या उन्हें महसूस होता होगा कि वो फिर वो बार बार उसे खाने लग जाते हैं?
1: बेसिकली वो तंबाकू खुद से तो कोई खाता नहीं है,
0: जी,
1: मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि पीयर प्रेशर, स्कूल कॉलेज के ज़माने से दोस्त खा रहा है,
0: अच्छा
1: कलीग खा रहे हैं, ले लेना ले
0: अच्छा
1: लेना, तो
0: ओहो
1: छोटी
0: हो
1: छोटी शुरुआत छोटे से होती है। लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक रीज़न ऐसा है, जब तंबाकू का सेवन किया जाता है
0: जी,
1: आइदर स्मोक से या स्मोकलेस से, तो अपने ब्रेन में एक केमिकल्स जो है
0: जी,
1: वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, वो केमिकल का नाम है डोपामिन,
0: ओके,
1: और डोपामिन जो कहते हैं इसको हैप्पीनेस हार्मोन भी
0: हाँ,
1: बोलते हैं,
0: जी,
1: वो जब डोपामिन का लेवल ब्रेन में बढ़ता है तो लोग स्ट्रेस भी महसूस फील करते हैं,
0: हाँ,
1: उसको खुशी महसूस करते हैं, और सिंपल भाषा में बोले तो किक आती है उनको, और
0: ओ
1: किक के वजह से लोग ये पर्टिकुलर ड्राइवर्स ये
0: हाँ,
1: किक के वजह से ये तंबाकू का सेवन करते हैं। तो ये जो देन शुरुआत में बहुत कम मात्रा में तंबाकू की सेवन बहुत कम मात्रा में डोपामिन लेवल बढ़ता है,
0: अच्छा,
1: लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे आगे ये लत बढ़ती है तब वो डोपामिन लेवल बढ़ता है, तब तंबाकू का लेवल कंजम्पशन की मात्रा भी बढ़ जाती है,
0: अच्छा,
1: उसको कहते हैं कि निकोटिन रिसेप्टर डोपामिन रिसेप्टर्स
0: हाँ
1: वो जो है
0: हाँ
1: वो रजिस्ट हो जाते हैं, तब थोड़ा भी डोपामिन बढ़ने के लिए ज़्यादा मात्रा तंबाकू की कंज्यूम करने की जरूरत पड़ती है।

0: तो ये विशेष साइकिल तैयार होती है,
1: यानी पहले एक ग्राम खाने पर भी जो खुशी मिलती थी,
0: हाँ,
1: वो 10 ग्राम खाने के बाद भी नहीं मिलती है।
0: आगे
1: फिर वो मात्रा बढ़ती जाती
0: है, बढ़ते बाद इसलिए वो उसकी लत लगती जाती है और पेशेंट उसके पूरी अधीन हो जाता है, उसकी पूरी डिपेंडेंस तैयार हो जाती है, देन बीमारियां शुरू होती है।
1: अच्छा, फिर वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक बार लत लग जाए तो फिर वो कौन कौन सी बीमारियां, बहुत लंबी लिस्ट है।
0: यस, बहुत बड़ी लिस्ट है। शुरुआत में लोगों को लगता है कि कैंसर, कैंसर ठीक है, होता है, 100% होता है वो, लेकिन उसको टाइम लगता है। लेकिन उससे पहले जो होते हैं कि मैंने पहले बताया कि पहला तो जब तंबाकू खाते हैं तो पहला हमारी हार्ट बीट्स बढ़ जाती है और कोई नोटिस नहीं करता है। हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, देन ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, देन ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है देन डेफिनेटली वो हार्ट पे उसकी असर होने लगती है, तो देन हार्ट अटैक आने के रिस्क बढ़ जाती है। देन जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो पैरालिसिस उसके भी, जब तंबाकू कंज्यूम करते हैं तो हमारे जो खाने की जो पाचन शक्ति है वो पुअर हो जाती है और उसके वजह से लोग उनको अपचन समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की दिक्कत होती है। जब एक अपचन होता है तो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट विटामिन्स या कैल्शियम मिनरल्स जो एब्जॉर्ब होने चाहिए वो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और उसके वजह से पर्टिकुलरली कैल्शियम जो बोलते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आप तो बता रहे हैं तंबाकू खाने का ये असर है,
0: ये
1: साइड देखा गया है।
0: हाँ,
1: कि वो जब तक वो तंबाकू नहीं खा लेते, हाँ, सुबह सुबह चाय पीने के बाद या सिगरेट नहीं पी लेते, तब तक उन्हें हाजत नहीं आती और वो टॉयलेट नहीं जाते।
0: वो एक मिथ है, वो ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ मिथ। अपचन होता है तो कैल्शियम, सबसे बड़ा कैल्शियम का प्रॉब्लम शुरू होता है और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, इसलिए वजह से बेसिकली हड्डियां और मसल्स में कैल्शियम की बहुत नीड रहती है, जरूरत रहती है, तो ये मसल्स एंड हड्डियां भी वीक हो जाती है और ऐसे
1: बोन डेंसिटी कम हो जाती
0: है, बोन डेंसिटी कम हो जाए। तो ऐसे ऐसे जो तंबाकू जो खाने वाले लोगों में बैक पेन, मसल्स पेन और फ्रैक्चर की मात्रा भी ज्यादा रहती है। देन तंबाकू खाने की वजह से हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, इम्यूनिटी बोलते हैं, वो कम हो जाती है। और उससे अलावा लोग ड्यूटी पे रहते हैं तो लंच या डिनर या स्किप करने के लिए भी लोग तंबाकू खाते हैं, तो ये सब की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। उसके वजह से जैसे कि जो क्षय रोग या टीबी शरीर की बीमारी का उनको ज्यादा खतरा रहता है
1: जी।
0: और ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द एंड या नॉट द लीस्ट, ये कैंसर की बीमारी
1: जी। जी,
0: अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि तंबाकू को सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर होता है और भारत देश पूरे विश्व में
1: जी
0: तंबाकू की वजह से होने वाले
1: कैंसर के,
0: मुंह के कैंसर के प्रथम नंबर पे आता है।
1: ओहो।
0: और ये कलेक्टिवली जो भी मैंने बीमारियां बोली उसके वजह से भारत में हर दिन 3,500 लोग की मृत्यु होती है, तो ये श्रोताओं को जानना बहुत जरूरी है।
1: ये बहुत दर्दनाक
0: दर्दनाक चीज है,
1: मगर तो सत्य है,
0: लेकिन ये सत्य है
1: जी।
0: और
1: जी,
0: ये
1: जी,
0: मैं नहीं बोल रहा हूँ,
1: हाँ,
0: ये ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के रिपोर्ट में लिखा है।
1: जी जी, जी। हमने ये भी सुना है डॉक्टर साहब कि तंबाकू खाने से डायबिटीज होता है, मधुमेह।
0: यस, इस पे थोड़ा बाहर दूंगा
1: जी जी,
0: कि पहला तो हम समझ लेते कि पूरी दुनिया भर में,
1: हाँ,
0: दो देश में सबसे ज्यादा तंबाकू प्रोडक्शन होता है, उसका कंज्यूम भी होता है,
1: हाँ,
0: वो है एक है चीन और दूसरा नंबर पे हमारा भारत देश है।
1: अच्छा,
0: और दोनों देश में ही सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट है, मधुमेह के पेशेंट है।
1: ओ, अच्छा,
0: तो ये इनडायरेक्टली कोरिलेशन है,
1: हाँ,
0: कि तंबाकू वजह से डायबिटीज हो सकती है। आज की तारीख में देखें तो पूरी दुनिया में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज भारत में पाए जाते हैं, पहले 2 साल पहले चाइना में था, अभी भारत में हो गया, और दोनों में ज्यादा ही कंजम्पशन होता है। जैसे मैंने बताया कि तंबाकू में 7,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स रहते हैं, वो कंज्यूम करने के बाद हमारा जो डायबिटीज का जो मेन जो कंट्रोल मैकेनिज्म है इंसुलिन
1: जी, जी,
0: ये जो इंसुलिन के प्रोडक्शन को और इंसुलिन को फंक्शन को ये तंबाकू अल्टर करता है।
1: अच्छा,
0: और बहुत सारे रीजंस है और इसके वजह से शुगर कंट्रोल मैकेनिज्म हमारी बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है।
1: अच्छा,
0: अगर आप WHO की साइट पे जाओगे और डायबिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन मांगोगे
1: जी,
0: तो उसके
1: जी,
0: जो 5 प्रमुख कारण है उसमें 5वां कारण है तंबाकू का व्यसन।
1: अच्छा,
0: तो लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि तंबाकू वजह डायबिटीज भी होती है।
1: मगर जरूरी नहीं कि डायबिटीज है तो उसको तंबाकू की लत होगी,
0: नॉट नेसेसरी, बट तंबाकू खाने वालों को रिस्क ज्यादा रहती है,
1: इसकी रिस्क है, तो डायबिटीज हो सकता है।
0: यस, हो सकता है, और वो डायबिटीज मतलब बहुत कड़वी बीमारी है।
1: जी जी जी, तंबाकू अगर कोई किसी को अगर उसका नशा है, लत है और वो छोड़ना चाहे तो निश्चित रूप से बहुत उसके फायदे उसको मिलेंगे।
0: यस, yes,
1: मगर yes, उसके विड्रॉल सिम्टम्स भी होते होंगे।
0: यस, yes,
1: तो हमें दोनों बातें बताइए।
0: yeah,
1: छोड़ने के बाद में विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं, yes, कैसे होते,
0: yes,
1: हैं,
0: yes,
1: और एक बार वो छोड़ दे, निश्चय कर ले, अपना निर्धार पक्का हो जाए उसका कि छोड़ना है, तो उसके क्या क्या फायदे उसे होने वाले।
0: तो पहला हम

0: उसके फायदे के बारे में बोलेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जब तंबाकू अगर सपोज वो सिगरेट हर एक घंटे में खाता है
1: जी,
0: या किसी बहुत बार तो वो जब नींद से सुबह में उठता है तो अब कितने समय में उसको तंबाकू की जरूरत पड़ती है, वो एक भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फैक्टर है।
1: अच्छा।
0: उसकी लत के बारे में हमें मालूम पड़ता
1: है
0: कि उठने के बाद कितने समय के बाद उसको तंबाकू खाने की जरूरत पड़ती है। तो जब तंबाकू उस समय पे नहीं खाया तो पहला तो उसकी हार्ट बीट्स नॉर्मल रहती है।
1: अच्छा।
0: वो बहुत जरूरी है हार्ट हेल्थ के लिए,
1: बेशक
0: हृदय की स्वास्थ्य के लिए उसकी हार्ट बीट्स नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। तो वो नॉर्मल रहने लगती है। देन उसके बाद ब्लड प्रेशर, जो इसलिए अब हम जब भी एज अ डॉक्टर हम जब किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तब उसको पूछते हैं अगर तंबाकू आप एडिक्ट हो तो आधे घंटे के बाद ही हम आपका बीपी चेक करेगा अगर आपने, क्योंकि हमें मालूम है वो ज़्यादा ही दिखाने वाला है।
1: अच्छा।
0: तो इसलिए तो इनडायरेक्टली जब तंबाकू का लत या एडिक्शन छोड़ते हो तो बीपी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है।
1: अरे वाह।
0: तो ये दोनों हार्ट बीट्स और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता हो तो छोटा का हार्ट अटैक के रिस्क भी कम हो जाते
1: हैं। कम हो जाती है। जी जी जी।
0: देन मैंने बताया कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होने लगती है, हमारी जो पचन शक्ति है वो इम्प्रूव हो जाती है, हमारे हड्डियाँ हमारे मसल्स वो स्ट्रांग होने लगते हैं। देन आगे जाके छोटा का तंबाकू के जो खाने वाले जो सबसे डेंजर प्रॉब्लम है वो है कैंसर, उसकी भी रिस्क कम हो जाती है। देन डायबिटीज में हमारे पास लोग है जिन्हें तंबाकू छोड़ दी है उनकी डायबिटीज की गोले भी बंद हो गई क्योंकि शुगर भी नॉर्मल होने लगी है अभी उसकी।
1: अच्छा।
0: ऐसे बहुत सारे हमारे पास पेशेंट है
1: कि
0: तंबाकू की लत छोड़ने के बाद उनकी डायबिटीज की गोलियां भी बंद हो गई है।
1: क्या बात।
0: तो ये सब उसके फायदे है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि इसके क्या फायदे है छोड़ने के बाद।
1: जी बिल्कुल।
0: तब यस ये जरूरी है कि जब तंबाकू में जो 7000 केमिकल है उसमें से एक केमिकल का नाम है निकोटीन, और निकोटीन की वजह से हमारे ब्रेन में डोपामिन बढ़ता है और उसकी वजह से उसकी लत लगती है।
1: अच्छा।
0: तो जब तंबाकू सडनली आप छोड़ देते हो, लोग कहते हैं कि हम आज मैं अगर 5 बार खाता हूं तो कल 4 बार खाऊंगा, तीन तो ऐसा कभी नहीं होता, उसको झटके से ही छोड़ना है।
1: अच्छा।
0: तो ही फायदा होगा, तो ही उसकी लत छूटेगी। तो जब झटके से छोड़ते हो तब आपको निकोटीन का विड्रोल सिम्टम 100% महसूस होगा,
1: शरीर जो है अपनी प्रतिक्रिया देता है।
0: तो महसूस होगा ही।
1: हाँ।
0: वो जो विड्रोल सिम्टम जैसे कि वीकनेस आ जाएगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा। पर्टिकुलर डाइवर कंडर को ये बहुत होता था हमारे पास। तो ये लेकिन यहाँ पे जरूरी है कितना टाइम तक ये विड्रोल सिम्टम रहता है।
1: अच्छा।
0: वो 2 दिन से ज्यादा 2 हफ्ते चलता है, उसके बाद अपनी बॉडी खुद को एडजस्ट करने लगती है।
1: जी जी जी।
0: उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है,
1: तो पूरा शरीर अपने जो है सामान्य स्थिति में
0: आ जाता है बस,
1: जैसा तंबाकू खाने से
0: पहले था वैसा। बस थोड़े दिन के लिए अपने को सहन करना है और वो समय अगर निकाल डाला तो वापस कभी तंबाकू खाता नहीं।
1: कितनी जरूरी बात है।
0: यस।
1: हमारे श्रोताओं को उनमें से किसी को अगर ये लत है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वो छोड़ना चाहते हैं तो तुरंत छोड़ दें,
0: झटके से छोड़ना है,
1: झटके से एक साथ, और उसके बाद
0: 2 दिन से 2 हफ्ते
1: सोचना ही नहीं, 2 हफ्ते ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते,
0: ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते
1: ये लक्षण रहेंगे
0: बस, विड्रॉल सिम्टम्स
1: और उसके बाद वो सामान्य
0: हो जाएगा, अपनी बॉडी अपने आप को रिकवर करती है।
1: वाह वाह। तो फायदे हमने जान लिए। हम तंबाकू की बातें जब होती है तो एक एक्ट है, एक ऐसा नियम है, कुछ वो कानून है, कोप्टा एक्ट कुछ ऐसा कहते हैं, ये क्या होता है, क्या कोप्टा एक्ट क्या है?
0: सी जैसे तंबाकू की वजह से हमारे पास जैसे सबसे ज्यादा मौतें होती है, खर्चा होता है।
1: जी जी।
0: 100 रुपए के टैक्स के सामने 816 रुपए का हमें खर्चा हो रहा है। तो ये उसको और कम करने के लिए कुछ कानून बनाया है, उसको कोप्टा एक्ट बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म है कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट एक्ट।
1: अच्छा। कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, कोप्टा एक्ट,
0: कोप्टा एक्ट।
1: अच्छा।
0: उसके अंतर्गत आपको पब्लिक प्लेस में तंबाकू का कोई भी प्रकार का सेवन प्रतिबंध है, इज अ पनिशेबल ऑफेंस।
1: जी जी।
0: देन वो खाके पब्लिक प्लेस में थूकना भी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। देन उसके एडवर्टाइजमेंट
1: जी
0: जो होती है वो भी अलाउड नहीं है आपको कोई भी प्रकार के। सो ये एक एक्ट इसलिए लाया है कि लोग एक दूसरे को देख के जो खाते है वो ना खाए और उसकी लत और उसको कम करते जाए हम लोग। उसका फायदा हुआ है, कम हुई है। जो लोग खाने वाले परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन जो उसे और हमें आगे लेके जाना है उसको एक्ट को, और अभी कुछ सरकार ने उसको कड़क किया है कि उसके अंतर्गत वो सरोगेसी एड बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: उसको भी बैन किया है।
1: हाँ।
0: कि कुछ नाम सेम रखते हैं लेकिन कुछ अलग प्रोडक्ट रहता है।
1: हाँ।
0: एक्स तंबाकू का जो प्रोडक्ट था पहले
1: जी,
0: उसको खाली नाम सेम रखते हैं और प्रोडक्ट कुछ अलग रहता
1: है, होता तंबाकू ही है मगर उसको कुछ एक नया नाम और नया रूप दे देते हैं,
0: या तो

0: का प्रोडक्ट अलग कर देते हैं।
1: अच्छा, अच्छा।
0: जो पहले वो नाम तंबाकू के वजह के लिए यूज होता था, अब वो तंबाकू की वजह नहीं होते, कुछ अलग प्रोडक्ट जो नॉर्मली लोग खाते पीते उसके लिए, तो एड बोलते हैं, उसको भी बैन किया है।
1: जी, जी।
0: तो ये इसका उद्देश्य यही है कि तंबाकू का कंजम्पशन कम हो जाए, उसके वजह से जो बीमारियां है कम हो जाए और खर्चे भी कम हो जाए।
1: तंबाकू तो नहीं, मगर तंबाकू जैसे और तंबाकू इस्तेमाल करके कुछ नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इसी की अभी बात कर रहे थे। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि लोग सीधे सीधे तंबाकू तो नहीं खाते, मगर ऐसे प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करते हैं इनडायरेक्टली जिससे तंबाकू उनके शरीर में जाता है।
0: जैसे अभी बहुत कुछ आ गया है, इनहेलेशन आ गया है।
1: हाँ हाँ,
0: भले सिगरेट नहीं पीते लेकिन कुछ इनहेलेशन तरीका ई सिगरेट आ गई है, उसको भी अलाउ नहीं है, वो भी हानिकारक है।
1: जी जी,
0: उसमें हानिकारक।
1: तो ये जो तंबाकू ना खाके अगर ये ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी उतना ही धोखा, उतना ही रिस्क। जो व्यक्ति तंबाकू नहीं खाता वो गलती से उसके शरीर में तंबाकू चला जाए, तो पहला रिएक्शन बॉडी का तो ये होता है कि जैसे कभी पान खाते हुए पान में किसी ने हल्का सा तंबाकू डाल दिया और वो हमने खा लिया, तुरंत उल्टियां होने लगती।
0: यस यस यस। और बहुत बार तो जैसे,
1: लेकिन जिनको लत लगती है उनको पहली बार ऐसा नहीं होता,
0: उनको नहीं होता। ये जो आपने बताया वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं उसको।
1: हाँ,
0: हस्बैंड स्मोक करता है,
1: जी जी,
0: उसके वाइफ है या उसके बच्चे है।
1: हाँ,
0: तो उसमें भी वो धुआं जाता है ना।
1: बिल्कुल। हाँ,
0: वो धुआं जाता है। देन या घर में कोई तंबाकू खाता है तो उसको देख के बच्चे भी उसके खाने लगते हैं।
1: अच्छा,
0: तो ये बहुत जरूरी है। तो पैसिव स्मोकिंग की वजह से इट हैज बीन एस्टैब्लिश कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, जैसे कोई एक फैमिली में एक हस्बैंड स्मोक करता है और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो उसके वो धुआं उसको जाए तो उसके बच्चे को भी खतरा है।
1: जी,
0: जो अभी तक दुनिया में आए नहीं है उसको भी खतरा है,
1: उस पर भी असर हो रहा है,
0: बहुत खतरा है उसके लिए, सबसे ज्यादा खतरा है उसको तो।
1: जी,
0: द पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं उसको।
1: हाँ,
0: ये सिर्फ चीजें लोगों को आई डोंट नो मालूम है या उसको इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, आई डोंट नो, बट लोगों को मालूम होना जरूरी है ये बातें।
1: अच्छा, हमने सुना है कि कुछ दवाइयों के तरीके में कुछ तरह के मेडिसिन है, उसमें तंबाकू का इस्तेमाल भी होता है?
0: नहीं, आई डोंट थिंक सो।
1: अच्छा,
0: आई डोंट थिंक सो।
1: या कुछ लोगों ने कहा कि हमें तो फलां डॉक्टर साहब ने कहा है कि पान में थोड़ा तंबाकू खा लिया करो ताकि आपका पेट अच्छा रहे।
0: नहीं, ये सब मिथ्स है, मिथ्स।
1: अच्छा,
0: है, मिथ्स है,
1: ऐसा कुछ।
0: सी, तंबाकू इतनी क्वांटिटी इज नॉट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी।
1: बस वो,
0: बस उसको छोड़ना ही है ना, उसको नजदीक जाना ही नहीं उसके। बस
1: हाँ,
0: बस
1: हाँ,
0: जैसे मैं शुरुआत में बताया, छोटा जीव है तो जल्दी मरेगा, बड़ा है तो बाद में मरेगा।
1: मरेगा जरूर,
0: मरेगा जरूर।
1: तो इस कठोर सत्य को, इस कटु सत्य को जो हमें जान लेना चाहिए,
0: जाना एक्सेप्ट करना है, हमें
1: एक्सेप्ट करना है। कोई जादुई मिक्स आपने बनाया है?
0: यस, उसको हमने,
1: ये कैसे हुआ?
0: यस,
1: कब हुआ?
0: या,
1: और इसका क्या आपको परिणाम कैसा देखने को मिला?
0: उसको हमने नाम दिया मैजिक मिक्स।
1: अच्छा,
0: या मैजिक चूरन,
1: जादुई चूरन,
0: जादुई चूरन।
1: वाह।
0: जैसे अभी तंबाकू की जो एडिक्ट लोगों में दो प्रकार की एडिक्शन है, एक है साइकोलॉजिकल एडिक्शन जो 90% लोगों में, 10% लोग में फिजिकल डिपेंडेंसी है।
1: अच्छा,
0: तो 90% लोग बस उसको वो कलर का चूरण मांगता है और उसको हाथों में घसना है और खाना है, और उसका जो कैनिस्टर है या डब्बी बोले हैं जो महाराष्ट्र में, तो वो उसको दिख गई तो उसको लगता है मैंने तंबाकू खा लिया।
1: अच्छा,
0: तो हमने वो बेस को ध्यान में रखते हमने चूरण बनाया है जिसमें दालचीनी, अजवाइन, जीरा, बड़ी शोप और लवंग का इस्तेमाल किया है। जब उसको आप ग्राइंड करोगे तो हुबहू तंबाकू सरीका ही लगेगा।
1: अच्छा,
0: और जो चूने की जगह पे हमने राइस पाउडर यूज करते हैं उसमें।
1: अच्छा,
0: तो जब आप उसको हाथ में लेके घिसोगे तो फील सेम ही आएगा कि आप तंबाकू को घिस रहे हो।
1: जो लोग तंबाकू मल के खाते
0: हैं, तो उसको कलर भी वैसा ही है उसका।
1: हाँ, हाँ।
0: ना उसमें साइंस ऐसा है कि जो दालचीनी है,
1: हाँ,
0: इसकी प्रॉपर्टी है कि जो निकोटीन के विड्रोल को और कम करती है।
1: अरे वाह,
0: तो साइंस भी है उसके पीछे।
1: क्या बात है।
0: तो इसके वजह से हमने चूरन बनाया, उसका नाम रखा है मैजिक मिक्स।
1: मैजिक मिक्स,
0: मैजिक मिक्स।
1: वाह वाह वाह।
0: और वो मैजिक ने सच में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उस मैजिक किया है।
1: हाँ।
0: और वो खा के बहुत सारे लोगों ने तंबाकू छोड़ दिया है।
1: वाह वाह।
0: तो मैं लोगों को बोलूंगा कि उसकी लिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब में।
1: अच्छा।
0: मैजिक मिक्स मेरा नाम डाल के आपको मिल जाए कैसे बनाना है।
1: हाँ।
0: हमने उसको कॉपीराइट किया है, आप कोई भी घर पे बना सकता है।
1: अच्छा।
0: और उसको यूज करे और अपनी जब भी तलब लगे।
1: हाँ।
0: तंबाकू की जगह उसको खाए।
1: मतलब ये मैजिक मिक्स कोई कमर्शियल प्रोडक्ट?
0: नो, इट इज नॉट कमर्शियल प्रोडक्ट।
1: ये सबके लिए है, सबके फायदे,
0: सबके फायदे के लिए। हमने खाली कॉपीराइट किया कि उसको कमर्शियल यूज कोई ना करे उसको।
1: अच्छा। हाँ,
0: तो आपके लिए ये, आप खाओ, खुद बनाओ,
1: सबके लिए ये मुफ्त है, फ्री है,
0: खुद बनाइए घर पर, खाइए।
1: तो ये फॉर्मूला जो है वो यूट्यूब पे देख करके बनाया जा सकता है।
0: और मेन बात उसको खा के थूकना भी नहीं है।
1: हाँ।
0: तो स्वच्छ भारत अभियान को भी हम प्रमोट कर रहे हैं उससे।
1: क्या बात है। वाह वाह।
0: उसके खाने के बाद वो निगलना ही है, क्योंकि वो निगल

0: के बाद बहुत सारे बेनिफिट देता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: सब ये अपने गर्म मसाले फायदे करेगी हमारे बॉडी को,
1: हमारे सुनने वालों के बेनिफिट के लिए।
0: यस,
1: हम इस मैजिक मिक्स का जो फॉर्मूला है उसे एक बार दोहराते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आपने डाली?
0: दालचीनी,
1: अजवाइन, जीरा,
0: बड़ी सौंफ,
1: सौंफ,
0: और एक आध लौंग।
1: अच्छा,
0: उसको मिक्स करके।
1: लौंग तो एक ही ले रहे हैं, बाकी जितनी
0: बाकी इक्वल क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी,
1: इक्वल क्वांटिटी,
0: इक्वल वन। उसको ग्राइंड करना है मिक्सचर में, मिक्सचर होगा वो बहुत तंबाकू सरीका लगेगा।
1: अच्छा, लेकिन
0: उसमें तंबाकू नहीं है। चूने की जगह पे राइस पाउडर यूज करने का।
2: उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सरला भिड़े का गाया राग भैरवी में दादरा, बोल थे डारो ना डारो मो पे रंग। आपके साथ संगतकार थे तबले पर कन्हैया लाल भट्ट और सारंगी पर आशिक अली खां। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

0: यह आकाशवाणी का रायपुर और सराईपाली केंद्र है। 11:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में चल रही जनगणना के पहले चरण का आज अंतिम दिन। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का कल राज्यपाल ने किया शुभारंभ। और कोंडागांव सहित दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में तेज आंधी और बारिश के कारण जनजीवन हुआ प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में चल रही जनगणना के पहले चरण का आज अंतिम दिन है। 1 मई से शुरू हुई जनगणना के पहले चरण का 92% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। प्रदेश में जनगणना के लिए 48,742 ब्लॉक बनाए गए थे। हर ब्लॉक में औसतन 165 मकान शामिल हैं। इसी आधार पर प्रदेश में 80 लाख से अधिक मकानों का आंकड़ा सामने आया है। इन मकानों का पूरा विवरण पहली बार डिजिटल रूप में सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहा है। आज अंतिम दिन शेष बचे घरों तक पहुंचकर आंकड़े अपडेट किए जाएंगे। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष 1 फरवरी 2027 से शुरू होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय आम महोत्सव का आज दूसरा दिन है। महोत्सव का उद्घाटन कल राज्यपाल रमन डेका ने किया था। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आम उत्पादन और मैंगो टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने किसानों से पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक तकनीकों को अपनाने और आम के वैल्यू एडिशन पर ध्यान देने का आह्वान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने में आम की खेती महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। महोत्सव में देशभर की 250 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए हैं। ये महोत्सव कल रविवार तक चलेगा। प्रदेश में गर्मी और उमस का सिलसिला जारी है। प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई है। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ में मेघ गर्जन और बदली बारिश की वजह से तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक कमी आई है। कोंडागांव जिले में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार चिपावंड गांव में 2 दर्जन से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा लखनपुरी में 1, बड़े सिलाटी में 3 और बड़े कनेरा में 1 मकान को नुकसान पहुंचा है। धन

0: पुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक मवेशी की मौत हो गई। आंधी के कारण कई पेड़ उखड़ गए तथा बिजली के खंभे और तार क्षतिग्रस्त होने से बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। राजस्व विभाग प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन कर रहा है। रायपुर रेल मंडल और स्थानीय प्रशासन ने IRCTC और रेलवे के लोगों का दुरुपयोग कर कम क्षमता वाले चाय के पेपर कप बनाने वाली एक फर्म पर कार्रवाई की है। जांच के दौरान गुढ़ियारी स्थित एक फर्म में रेलवे के लोगों वाले तय क्षमता से कम आकार के चाय के कप बनाए जाते पाए गए। टीम ने मौके से ऐसे कपों से भरे 14 बोरे जब्त किए हैं। रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी ने कहा है कि यात्रियों को तय मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण खाद्य और पेय सामग्री उपलब्ध कराना जरूरी है। किसी भी तरह की अनियमितता, फर्जी ब्रांडिंग या लोगों के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में चल रही जनगणना के पहले चरण का आज अंतिम दिन। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का कल राज्यपाल ने किया शुभारंभ। और कोंडागांव सहित दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में तेज आंधी और बारिश के कारण जनजीवन हुआ प्रभावित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ ही में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में सुनिए समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में एलपीजी की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यभार मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6

0: 1,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
1: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि उनका स्थान लेंगे। गुजरात टाइटंस पहुंची अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचे और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज अभिनेता परेश रावल का जन्मदिन है। बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं हम उन्हें और उनकी फिल्मों के गाने आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे। भागम भाग इस फिल्म का गाना रेमो फर्नांडिस और सुजेन की आवाज़ों में, समीर के बोल संगीत प्रीतम का।

अंतराल के बाद अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आंखें फिल्म का गाना, नितिन रायकवार आदेश और अरुण बख्शी की आवाजों में। नितिन रायकवार के बोल, संगीत है जतिन ललित का।

अगला गीत सुनते हैं कार्यक्रम का, ओ माय गॉड, इस फिल्म का गाना है, कैलाश खेर, मीत ब्रदर्स और अनजान की आवाजें, कुमार के बोल, मीत ब्रदर्स अनजान का संगीत है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: ये है राजा फिल्म का गाना, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये हंगामा फिल्म का गाना शान और साधना सरगम की आवाजों में। समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
6: यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अगला गाना गोलमाल, इस फिल्म का गाना शेखर और स्नेहा पंत की आवाजों में, विशाल दादलानी और कुमार का लिखा हुआ गाना, संगीत है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अतिथि तुम कब जाओगे, इस फिल्म का गाना अनुपम आमोद की आवाज़, इरशाद कामिल के बोल, संगीत है प्रीतम का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सुरीला सफर कार्यक्रम में। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ मंजू द्विवेदी। दोस्तों, आज जो इबारत या जो टेक्स्ट हमने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया है, तो उसको आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं कि एक हसीन शाम को मन किया कि ठंडे ठंडे पानी से नहा लूं, ये सोचते हुए कि ऐ दिल तू किस पे आ गया है। मन में उथल पुथल थी कि पीते पीते कभी कभी यूं अंडे का फंडा भी समझ लेना चाहिए, इसलिए मैंने कहा सूरज जरा आ पासा। तो उसने कहा आला बर्फी वाला। मैंने कहा जब तक समोसे में आलू रहेगा, इश्के दी चाशनी का बोलबाला रहेगा। इसके बाद मन सोचने लगा हाय रे वो दिन क्यों ना आए। ये आज की इबारत है। एक हमारे साथी लिखते हैं कि इबारत हो या शरारत हो, हमारी ये इनायत है, चलेंगे साथ सफ़र में चाहे कहीं कयामत हो। एक साथी लिख रहे हैं कि शाम तो नहीं, हमारा तो दिन सुबह से ही हसीन बन पड़ा है। सुबह से मौसम अटकेलियां कर रहा है, कभी धूप कभी छांव, कभी तेज़ हवा हल्की सी बूंदाबांदी। इस मौसम का क्या वर्णन करूं, मन सुबह से झूम उठा, ये मौसम का जादू है मितवा, अब दिल पर काबू है मितवा। दोस्तों, आज जो इबारत हमने पोस्ट की उसमें कुछ जो गाने हैं वो खाने पीने की चीज़ों को लेकर है। आपको बता दें कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है। आलू को हम एक सब्ज़ी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे स्नैक्स या बनाने में या फिर जो छोटा मोटा नाश्ता शाम के समय का होता है उसमें आलू का बहुत महत्व होता है। हम सभी को पसंद होता है, चाहे वो समोसा हो, आलू बड़ा हो, या फिर एक कोई सैंडविच हो जिसमें आलू

डाला जाता हो, इस तरह के बहुत सारे नाश्ते बनाए जाते हैं आलू से। तो आलू हमारे जीवन में या हमारे रसोई घर में क्या महत्व रखता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, या इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे इसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हमें मिल सके, इस बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे जब शाम के नाश्ते की बात होती है तो सबसे पहले हमारा मन करता है कि आलू के पकोड़े खा लिए जाए, या आलू से बनी हुई ऐसे ही किसी नाश्ते की हमें याद आ जाती है। वैसे सबका सबकी पसंद जो है वो अपनी अपनी अलग होती है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस पर हम थोड़ी आलू की बातें करेंगे और इसके अलावा कुछ और भी गीत हम सुनेंगे। सबसे पहले जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो है दुल्हन एक रात की, इस फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, राजा मेहंदी अली खां के बोल हैं। संगीत किसका है ये आप हमें बताइए। धर्मेंद्र और नूतन पर फिल्माया गया ये गाना है।

उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया। जी हाँ, शाम का वक्त हो और अगर आपको पता चले कि आपकी पसंद का आलू का बना हुआ कोई बहुत ही मज़ेदार नाश्ता आपके सामने आया है तो आप भी यही कहेंगे ना कि उनको देखा तो दिल उस पर आ गया है। मदन मोहन का इसमें संगीत है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आलू सब्जियों का राजा है और वो हर किसी के साथ मिलकर बनाया जा सकता है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि बेफिक्र रूमानी शाम की याद दिलाती है आज की इबारत, इसे पढ़कर मन में एक चुलबुली और हास्य से भरी तस्वीर

0: आती है और हम थोड़े से रिलैक्स हो पाते हैं। तो चलिए आपके दिल दिमाग को हम थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और ठंडे पानी से नहाने का इसमें जो मज़ा है वो तो और भी है ही। पति पत्नी और वो इस फिल्म का गाना, महेंद्र कपूर और आशा भोंसले की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, रविंद्र जैन का संगीत।
1: ओ ठंडे ठंडे पानी।

0: लगता है कोई आया।
1: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब, नहा रहे हैं।

आलू से बना हुआ कोई स्वादिष्ट नाश्ता जब आपके घर में बन रहा हो तो उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है, और जब वो सुगंध फैलती है तो ऐसा भी कभी होता होगा ना कि आसपास में आपके कोई पड़ोसी, आपके कोई नाते रिश्तेदार, आपके कोई दोस्त आपका दरवाज़ा खटखटाते होंगे और पूछते होंगे भाई आज क्या बन रहा है। एक साथी लिख रहे हैं, आलू वो सादगी है जो हर स्वाद में रंग भर देता है, इसलिए हर घर की रसोई में उसकी खास जगह होती है। हर सब्जी उसका साथ पाकर और भी स्वादिष्ट हो जाती है। आलू सच में रसोई का राजा है। आलू न दिखावे में बड़ा है न नाम में, लेकिन काम में सबसे बड़ा है। यही उसकी असली पहचान है जो हर मौसम, हर सब्जी और हर थाली में फिट हो जाए, वही असली राजा कहलाता है। आलू, आलू की कहानी सादगी की जीत है, कम में भी सबसे ज्यादा स्वाद देने की कला है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज मैं आलू की टिक्की बना रही हूं। एक साथी लिख रहे हैं कि मुझे बड़ा

खट्टा वड़ा और फ्रेंच फ्राइज़ बहुत पसंद है। और एक हमारे साथी जो है उन्होंने हमें अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस की शुभकामनाएं दी है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की खोज दक्षिण अमेरिका में हुई थी और आलू की कहानी वहीं से शुरू हुई थी। एक साथी लिख रहे हैं कि आज आलू की बात चल रही है तो आलू के पराठे, समोसे, पकौड़े से लेकर चिप्स, पापड़ तक सभी का स्वाद निराला है। सुबह सुबह आलू के पराठे मिल जाए, दोपहर में आलू की सब्जी और पूरी मिल जाए और शाम को समोसे मिल जाए तो कहना ही क्या। ये सिर्फ आलू ही नहीं, ये हमें सिखाता है कि हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे आलू हर सब्जी में मिलकर इसका स्वाद बढ़ा देता है, वैसे ही हमें जीवन में होना चाहिए, सबके साथ मिलकर चलना चाहिए ताकि हमारा महत्व हमेशा बना रहे। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के बिना भारतीय रसोई अधूरी है। यद्यपि आज आलू भारतीय रसोई का एक अभिन्न अंग बन गया है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से भारतीय मूल की सामग्री नहीं है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू महज एक सब्जी नहीं, ये एक एहसास है, ये वो निश्चल साथी है जो हर दूसरी सब्जी के साथ अपनी पहचान मिटाकर घुल मिल जाता है। कभी वह गोभी के साथ जुगलबंदी करता है तो कभी मटर के साथ मिलकर एक नया स्वाद रचता है। वह किसी राजा के थाल का हिस्सा भी है और एक गरीब की झोपड़ी में तसल्ली का निवाला भी है। और एक साथी लिख रही है कि मुझे तो पता ही नहीं आज आलू दिवस है, आज अजीब सहयोग बना है, आज हमारी श्रीमती जी ने आलू के पराठे बनाए हैं, दही के साथ सेवन कर रहे हैं हम। बहुत धन्यवाद आपका। एक साथी लिख रहे हैं कि बेहद खूबसूरत गीत के साथ शुरुआत की है। वैसे आलू दिवस पर हमारे यहाँ आलू पालक टमाटर की सब्जी बनी है, मुझे आलू बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चों को भी ये बहुत पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कि आपका दिल आलू से बनी हुई कौन सी रेसिपी पर सबसे ज़्यादा आता है, कौन सी रेसिपी है जब आप ये कहते हैं कि ये दिल मुझे बता दे कि क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं। भाई भाई फिल्म का गाना, गीता दत्त की आवाज़, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत, अशोक कुमार और श्यामा पर फिल्माया गया गाना।

तो बताया क्या आपने कि आपका दिल आलू से बनी हुई कौन सी चीज़ पर आ गया है। बहुत सारे श्रोताओं ने इतनी सारी बातें लिखी है, लिखते हैं कि लाल टमाटर हरे मटर में मंडी चलने की ठानी, आलू भी तैयार हो गया साथ चली गोभी रानी। मुझे आलू इसलिए पसंद है कि वो सभी के साथ बहुत अच्छी तरह एडजस्ट हो जाता है, इसीलिए सबको आलू भाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज भी लंच में दही वाले आलू बनाए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि उदयपुर ज़िले में फतेह स्कूल के पास में एक जगह है जहाँ के आलू बड़े बहुत फेमस है, मैं कल परीक्षा देने जा रहा हूँ, ज़रूर वहाँ के स्वादिष्ट आलू बड़ों का आनंद लूँगा। और एक साथी लिख रहे हैं कि इबारत कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया आपने, आज आलू दिवस पर गीतों का मज़ा मिलेगा। और लिखा है कि आलू दुनिया के हर कोने में मिलते हैं, आलू बिना कोई रसोई बन नहीं सकती, ये सभी सब्जियों में मिक्स हो जाता है, चिप्स और पराठा तो आलू के ही स्वादिष्ट होते हैं, खिचड़ी और तहरी में मिलाकर उसका टेस्ट भी बदल दिया जाता है जो सबको पसंद आता है। अब तो मिठाइयों में भी आलू का प्रयोग होने लगा है, समोसा तो बिना आलू के बन ही नहीं सकता, आलू की पकौड़ी तो चटनी के साथ गर्मा गर्म खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, आलू पौधे का भूमिगत तना होता है, जड़ नहीं होता है। एक साथी ये लिख रहे हैं कि आलू सब्जियों के राजा है, पर मैं तो कहूंगी रसोई की रानी है, एक माँ जानती है कि बच्चों को कैसे सब्जी खिलाना पड़ती है, आलू के साथ कुछ मिला दो तो खा लेते हैं। और हमारा जो बिहारी खाना है वो तो बिना आलू के पूरा ही नहीं बनता है, दाल भात चोखा लिट्टी चोखा, और अगर आलू नहीं है तो ये व्यंजन अधूरा है। संक्रांति में दही चूड़ा, उसके साथ आलू दम, सफर में जाना है पूरी के साथ आलू की भुजिया, बरसात के दिनों के लिए आलू का सूखोता, अतिथियों के लिए आलू के चिप्स, सर्दियों में आलू के अचार, आलू को चालू बेटा कहाँ गए थे। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आलू सब सब्जियों के साथ घुल मिल जाता है, और अपने यहाँ आलू का रायता बहुत पसंद किया जाता है जो दही के साथ बनाया जाता है। और एक साथी ने हमारे ये बात लिखी है कि अगर ठंडे ठंडे पानी से ही नहाना था तो सूरज को और पास क्यों बुलाना था। बात तो आपकी सही है, लेकिन अगर इस गाने में अगर आप गौर करेंगे तो एक लाइन आती है कि आलू टमाटर का साग, जी हाँ, जब बहुत भूख लगी हो तो आलू टमाटर का जो साग होता है ना, वो हमारे मन को कितना ललचाता है, ये इसमें दिखाया गया है, इसीलिए हमने इस गाने को चुना है। तो सुनिएगा आप ये गाना। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू साधारण सा दिखता है लेकिन हर रसोई की जान है, हर मसाले और हर सब्जी के साथ मिलकर स्वाद दो गुना कर देता है, इसलिए उसे सब्जियों का राजा कहा जाता है। जिस थाली में आलू हो वो थाली अधूरी नहीं लगती, वो हर स्वाद को पूरा करने की ताकत रखता है। आलू की खासियत यही है कि वो खुद में सादा होकर भी हर व्यंजन को खास बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हम और बैराग फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। ऐसा कभी होता होगा ना कि आपने फरमाइश की है कि मुझे आलू से बना हुआ समोसा खाना है, लेकिन बन कुछ और जाता है, आलू के पकोड़े बन जाते हैं या आलू की टिकिया बन जाती है, तो आपके दिल में यही आता होगा ना कि अरे मैंने तो ये बनाने के लिए कहा था पर आज तो ये बन गया है, कुछ अलग ही हो गया है। चलिए ऐसा ही कुछ गाना है, सुनते हैं बैराग फिल्म से।

कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि रेसिपी कौन सी बनने वाली होती है और क्या बन जाती है, हम कोशिश करते हैं एक नई चीज़ कुछ बनाने की और कुछ और बनाने का सोचते हैं लेकिन वो बन नहीं पाता, कुछ और ही बन जाता है, हो सकता है कि वो उससे ज़्यादा स्वादिष्ट, और कभी कभी वो स्वाद जिसकी हम उम्मीद रखते हैं वो कभी नहीं आता है, तो भी मन बड़ा खिन्न हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू

वो ध्यान से खाओ क्योंकि आलू बाहर से ठंडा होता है लेकिन अंदर से गर्म होता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू ज़्यादा खाओगे तो आलू जैसे हो जाओगे और लौकी खाओगे तो लौकी जैसे बनोगे। एक साथी लिख रहे हैं कि आज सचमुच संयोग है, मैंने आज आलू के पराठे ही बनाए, पतिदेव को बहुत पसंद है मक्खन और अचार के साथ। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की लौंज एक प्रकार की मिठाई है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सर्दियों में नए आलू को मिट्टी की हांडी में जिसमें आग तपती उसमें रख देते हैं, उस पके आलू का अलग ही आनंद और स्वाद है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की आप सभी को बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई इसके भी दिन बहुरे हैं और वो भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के भल्ले भी बड़े स्वादिष्ट होते हैं, दही भल्ले की तरह ही। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू और दाल की बड़ी की चटपटी भाजी बहुत पसंद है। और तो और मैंने आपका कार्यक्रम सुनकर श्रीमती जी से वही भाजी का आग्रह किया और उन्होंने भोजन बन जाने के बाद भी मेरी फरमाइश के अनुरूप मुझे भाजी बनाकर वो दे रही है। एक साथी लिख रहे हैं कि किसी पड़ोसी ने तो दरवाजा नहीं खटखटाया, पर हाँ कई बार हमारी बेटी और उसकी सहेलियों ने जरूर कहा कि बाहर से अंदर आते ही कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आलू बेसन की, क्योंकि हम जब सैंडविच के लिए मसाला तैयार करते हैं तो उसमें अहम भूमिका तो आलू की होती है पर उस पर और भी कई चीजें डाली जाती है, सबसे तेल, फिर उसमें थोड़ा जीरा सौंफ और खड़ा धनिया और फिर थोड़ा सा बेसन डालकर भुनना, फिर अमचूर या नींबू डालकर उसमें उबले आलू को डालना और फिर कहीं जाकर इस मसाले को ब्रेड में डालकर सेकना, तब जाकर सबको खिलाना और फिर उसके बाद सबकी तारीफ पाना। एक साथी लिख रहे हैं कि बंगाल का आलू, बिहार और मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें आलू से बनाई जाती है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल थोड़ा मौसम का मिजाज ठंडा है, बारिश हो जाने से प्याज की पकौड़ी, समोसे और कुछ गर्म नाश्ता खाने का मन करता है, मौसम के साथ जुबान का मिजाज भी बदल जाता है तो अच्छा खाने का मन करता है, चाहे जितनी भी गर्मी हो पर बाजारों में चाट के ठेलों पर खूब भीड़ होती है, आलू की टिक्की समोसे बहुत खाए जाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब आलू का जो आकार होता है गोल गोल होता है लेकिन एक लंबे आकार की भी चीज़ होती है और उसके बारे में भी बहुत सारी बातें इस गाने में कही गई है तो उसे भी हम सुन लेते हैं। जोड़ी नंबर वन इस फिल्म का गाना है, प्रतीक जोसेफ की आवाज़ है, इन्हीं का लिखा हुआ गाना है, संगीत किसका है ये आप हमें बताइए।

जोड़ी नंबर वन इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, इसमें संगीत हिमेश रेशमिया का, और बड़े दिलचस्प अंदाज में इन्होंने जो है जीवन का फलसफा वो सिखाने की कोशिश की गई है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आलू की टिक्की के साथ चटपटी इमली की चटनी ऊपर दही से डाल दे फिर खाने में स्वाद आ जाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि व्रत में तो आलू बहुत इस्तेमाल किया जाता है, उबला आलू और दही का रायता, फ्राई में फिंगर चिप्स, हर हाल में आलू बहुत अच्छा लगता है, समोसे तो आलू के बगैर ही नहीं सकते। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि आज ही मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि आलू टमाटर की रसीली सब्जी बनाना, कहते हैं कि डायबिटीज वालों को लाल आलू खाना चाहिए और उबले हुए आलू को 12 घंटे फ्रिज में रखने के बाद खाना चाहिए, जिसमें से आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि कटक का आलू दम दही बड़ा जिस किसी ने खाया उसे कटक घूमने आने का मजा आया, विश्व प्रसिद्ध आलू दम दही बड़ा के स्वाद सभी मुसाफिर के पेट भरने के लिए ये याद किया जाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि जब हमारे बच्चे छोटे थे तो उनकी फरमाइश होती थी कि फिंगर आलू बनाने हैं, तो सच कह रहे हैं हम बनाते बनाते थक जाते पर वो सब खाते जाते थे, और तो और एक दो दोस्त भी आ जाते, वो दिन भी क्या दिन थे। आजकल तो मम्मी आलू ज़्यादा नहीं खाने चाहिए ऐसा कहती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू तो हम लोगों के यहाँ पहले भी बोया जाता था और वो अगस्त सितंबर तक सब्जी का पूरा काम करता था, लेकिन धीरे धीरे जो है इसके कम हो गया है ये। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू भारतीय रसोई की रीढ़ है, इससे यदि इसे सही और संतुलित तरीके से जैसे कि उबाल कर या बेक करके पकाया जाए तो ये सेहत और स्वाद दोनों के लिए बेहतरीन है। आलू भारतीय रसोई का राजा है जिसके बिना हर घर का भोजन अधूरा माना जाता है। स्वाद, पोषण और उपयोगिता के मामले में भारतीय व्यंजनों में आलू का स्थान सबसे ऊपर है। आलू वाकई स्नैक्स का राजा है, ये इतना वर्सेटाइल है कि इसमें कोई भी लाजवाब डिश मिनटों में बनाई जा सकती है। तो फिलहाल अगला जो हम गीत सुनवा रहे हैं उसमें तो केवल आलू टमाटर का जो साग होता है उसे ही कितने इस तरीके से इसमें हम सुनेंगे इस गाने में कि भूख होती है तब तो वो चीज़ हमें और भी ललचाती है, लेकिन नहीं भी भूख हो तो बोलने का जो अंदाज़ है इस के बारे में सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ आलू टमाटर का साग खा लिया जाए। संगीत किसका है बताइए हमें।

उजाला फिल्म का गाना हमने सुना, शंकर जयकिशन का इसमें संगीत है। और ये सही बात है कि जब हम पिकनिक पर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो सब्ज़ी या कुछ चीज़ बना के ले वो आलू की होती है। आलू की सब्ज़ी और पूरियां, या फिर मसाले वाली पूरियां, या फिर आलू के पराठे, या इस तरह की चीज़ें हम बना करके ले जाते हैं। यहाँ तक कि हम जब सफ़र में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो भी सबसे ज़्यादा जो सब्ज़ी आपको दिखाई पड़ेगी वो आलू।

की सब्जी ही होगी। एक साथी लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का फरुखाबाद शहर के जो आलू होते हैं वो भारत में नंबर वन तरह के आलू होते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि पुराने जमाने और आज तक आलू बैंगन की सब्जी सबसे ज़्यादा गुजरात के घरों में खाई जाती है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि ज़्यादा खाओगे तो एसिडिटी करेगा। जी हाँ, कोई भी चीज़ हो उसे अति किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि छोटे छोटे आलू को जाड़े के दिनों में हर घर में तापने के लिए जो अलाव जलाते हैं उसमें भून कर बच्चे अक्सर कटोरी में नमक उसमें डाल करके खाते हैं। गर्म गर्म बड़ा टेस्टी होता है। पहले गन्ने की पेराई होती थी तो खोलते कढ़ाई में जब राब तैयार होने को होती थी तो छोटे छोटे आलू को धागे में गूँथ कर कढ़ाई में डाल देते थे। कितना मीठा और टेस्टी वो आलू के लिए जो है हम झगड़ा करते थे। अब तो गाँवों में गन्ने की पेराई बंद हो गई है तो मीठा आलू भी अब नहीं मिलता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल लाल आलू बहुत मिल रहे हैं जिनमें कम मात्रा में स्टार्च होता है और भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन और मिनरल्स होते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की भाजी बैंगन का भरता, बोले जी बोलो तो क्या खाओगे, ये एक इस गाने के बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सबसे सस्ता आलू है, जो सभी सब्जियों के भाव ज़्यादा हो जाते हैं तो केवल आलू धनिया डालकर रसदार सब्जी चावल और रोटी के साथ खाने का जो मज़ा है वो बड़ा आता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आज आलू की बातें सुनकर हमारी बेटी ने भी फरमाइश कर दी कि अभी तो खाना बन गया है तो डिनर में आज मस्त आलू की रसेदार सब्जी जिसमें डाली हो थोड़ी सी केरी और उसके साथ हो जाए थोड़े से जीरा राइस, ऐसा इन्होंने लिखा। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की बात हो रही तो मुझे चूल्हे की आँच में सेक कर आलू बहुत पसंद आते हैं। जब कभी लंबी यात्रा पर जाता हूँ तो मम्मी हमेशा ही आलू के पराठे और आलू की चटनी ही रखती है जो सूखी रहती है और आसानी से हम ले जा सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आलू की बातें तो हम कर रहे हैं उससे चटपटे व्यंजन भी, लेकिन हो सकता है कि हमारे कई साथी हो जिन्हें कुछ मीठी चीज़ें भी पसंद हो, जैसे बर्फ़ी वगैरह इस तरह की चीज़ें भी तो उन्हें पसंद आती है, या फिर आलू से भी हम आलू की बर्फ़ी भी बना सकते हैं। कई साथियों ने हमारे लिखा है कि आलू का हलवा बनाया जाता है, आलू की बर्फ़ी भी बनती है। तो चलिए एक गाना सुन लेते हैं, बर्फ़ी फिल्म का, स्वानंद किरकिरे के बोल, प्रीतम का संगीत है, आवाज़ किसकी है आप बताइए हमें।

मोहित चौहान की आवाज में ये गाना आपने सुना। हमारे एक साथी की बात है कि आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है। आलू को हम सब्जियों का राजा कह सकते हैं, एक ऐसी सब्जी जिसके सहारे हम कोई भी उत्सव मना सकते हैं, कोई भी त्यौहार की शान बढ़ा सकते हैं। सब्जियों को खाने में मुंह बिगाड़ने वाले बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। गोभी आलू, मटर आलू, परवल आलू, कटहल आलू, टमाटर आलू, किसी भी कॉम्बिनेशन में सुपर हिट है। आलू समोसे में, आलू पराठे में, आलू पकौड़े में आलू। और एक साथी ने हमारी ये लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र ने आलू के महत्व को समझाने के लिए हर साल 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया है। इस साल की थीम है, जहां आलू उगते हैं वहां आजीविका फलती फूलती है। और ये थीम ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे किसानों को सहारा देने में आलू की भूमिका को रेखांकित करती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि माँ के हाथ के बने आलू के पराठों का स्वाद अब कहाँ मिलेगा, आज आपने माँ की याद दिला दी। और एक साथी लिख रहे हैं कि भंडार में आलू पूड़ी खाने का स्वाद तो खाने वाला ही जानता है। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि मेरी बेटी पूना के एक घर में रहकर पढ़ रही थी, मैं कभी कभार 10-15 दिन के लिए जाती थी। उसकी सहेलियों को बहुत आलू के भरवा पराठे और दही का रायता बनाकर खिलाया था। आए दिन यही फरमाइश उनकी होती थी। चलिए धन्यवाद आपका। मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी इस फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, और देव कोहली के बोल हैं, अनु मलिक का इसमें संगीत है।

मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी फिल्म का ये गाना हमने सुना, और सचमुच जब समोसे की बात आती है तो ज़्यादातर उसमें आलू ही डाल करके बनाया जाता है। आलू के बगैर समोसे का मज़ा हमें तो नहीं आता है, हो सकता है बहुत सारे साथी हमारी इस बात से इत्तेफाक रखते हों। एक साथी हमारे लिख रहे हैं, उन्होंने आलू बोने का सबसे अच्छा तरीका जो है उसके बारे में बहुत विस्तृत विवरण लिखा है, पूरा तो हम आपको नहीं सुनाएंगे, लेकिन हाँ अगर आप चाहें तो ये बात आपके काम की हो सकती है कि उन्होंने लिखा है कि सबसे अच्छा तरीका यह कि खेत में 3-4 बार गहरी जुताई करके और मिट्टी को भुरभुरा और समतल बना ले, बुवाई से पहले बीजों को फफूंदनाशक जैसे कि कार्बेंडाजिम से उपचारित करें और बीज को मेड़ों पर 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई में रोपे, जहां लाइन से लाइन की दूरी सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी इतने सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बारे में बहुत विस्तृत विवरण इन्होंने लिखा है जो हो सकता है कि आपके काम का हो। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि एक ही इबारत रहती है, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे किस नज़रिए से देखते हैं। किसी को इसमें बहुत कुछ अच्छा नज़र आता है और किसी को इसमें कुछ बिल्कुल नहीं भाता है, तो ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि अब गिलास पानी से आधा भरा है, इसे आधा भरा कहें या आधा खाली कहें, ये हमारी सोच पर है। वैसे सबसे जो अच्छी बात यह है कि इससे हमें बहुत सारे गानों के बारे में जानकारी मिलती। चलिए अब बात ऐसी है कि कई बार ऐसा होता है कि हमने अपने जीवन में वो चीज़ें खाई होती है और हमें अच्छी लगती है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब हमें कोई बीमारी हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि नहीं आपको आलू नहीं खाना है या मीठा नहीं खाना है या तला हुआ नहीं खाना है, और तब हमारे दिल में एक ही बात आती है कि हाय रे वो दिन क्यों ना आए कि जब आलू की इतनी स्वादिष्ट रेसिपी बनती। चलिए अनुराधा फिल्म का गाना सुनते हैं।

और अब एक बड़ी सुंदर बात, आलू का रस चेहरे पर लगाने से ग्लो आता है, ऑलराउंडर है आलू, ये हमारी एक साथी ने बात लिखी है। और इसी के साथ कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार, आज की त्रिवेणी में बातें होंगी आशा की, उम्मीद की। आशा क्या है? वैसे तो इसे परिभाषित करना या इसका वर्णन करना कठिन है, लेकिन आशा को हम तब पहचानते हैं जब हम इसे महसूस करते हैं और जब हमें इसकी ज़रूरत होती है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि आशा है अपने लिए एक बेहतर भविष्य की कल्पना करना और उसे पाने की कोशिश करना। हम सभी के जीवन में आशा का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये निराशा से बचाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये एक सकारात्मक भावना है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमें जीवन का अर्थ, उद्देश्य और धैर्य प्रदान करती है। आशा कठिन समय में मानसिक शक्ति बनकर हमें लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। आशा एक भावना है और सोचने का एक तरीका भी। कई बार जब हम हर तरफ से थक हार चुके होते हैं, हमें आशा की कहीं कोई एक किरण कहीं ना कहीं से किसी बाहरी कारण से भी मिलती है, तब हम फिर से ऊर्जा से भर जाते हैं। मुश्किल हालातों से उबरने में आशा की ज्योत जलाए रखना बेहद ज़रूरी है। आशा को हमें एक इच्छा शक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। आशा एक भावना है, एक मानसिकता है, जिसके ज़रिए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन और प्रतिकूल क्यों ना हो, आशा एक विश्वास ही तो है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।

आशा का अर्थ है आगे बढ़ते रहना, हिम्मत बनाए रखना और जीवन के अर्थ के साथ हर मुश्किल से उबरने का रास्ता खोजना। आशा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के बहुत कठिन समय में भी सहारा दे सकती है। यदि हम किसी विपरीत परिस्थितियों में भी आशा का अनुभव करते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम सकारात्मक निर्णय लेने की अधिक संभावना रखते हैं। कभी कभी हमारे दिलो दिमाग पर भय और निराशा आशा से कहीं अधिक आसानी से हावी हो जाती है। ये डर हमारे आशा के भाव को कमजोर करने लगते हैं। हालांकि हम अक्सर आशा को व्यक्तिगत स्तर पर देखते हैं, लेकिन आशा को सामूहिक रूप से भी अनुभव किया जा सकता है। राष्ट्र पर जब कोई संकट का समय आता है तब आशा और विश्वास का दामन थामे रहना आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। आशा हमें भविष्य के लिए बेहतर कल्पना करने और उसे पाने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करके जीवन को खूबसूरत बनाए रखती है, जिससे निराशावादी सोच दूर रहती है।

दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते समय यदि मन में आशा हो तो मस्तिष्क अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करता है और हम भी बेहतर महसूस करते हैं। आगे बढ़ते रहने की ये इच्छा शक्ति

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउन लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री डिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउन लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमा के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
3: म्यांमा के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया।

0: साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
1: राष्ट्रपति ओमी नाउलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
2: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,40,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया, जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक

0: को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
2: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिन कर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमेनाउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।

0: नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आशिक फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अपना

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आजाद फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

बाजे घुंघरू फिल्म का ये गाना आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी, सबिता बनर्जी, सीता और साथियों की आवाज़ों में, शिवराज श्रीवास्तव का लिखा हुआ गाना, धनी राम का संगीत। अगला गाना बात एक रात की, इस फिल्म का गाना हेमंत कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं, बगदाद की रातें। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन के बोल, संगीत है डी दिलीप का।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बनारसी ठग इस फिल्म का ये गाना है, लता मंगेशकर की आवाज़, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

सुहानी तेरी। इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में हम आपको वो गीत सुनवाते हैं जिसमें हमारे श्रोताओं ने पत्र लिख करके हमें उस गाने को सुनने की फरमाइश भेजी है। तो पहला जो गीत है ये दिल फिल्म का गाना उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में समीर का लिखा हुआ गाना आनंद मिलिंद का संगीत है। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है शमसुद्दीन की बाड़ी पूरा बीकानेर राजस्थान से। ये पत्र आया है हमारे पास मन्नत खान, समारा खान, मोहम्मद अनजान, सैफ अली, कमाल खान, मरियम बानो और मोहम्मद अली। आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये अपराध फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाज़ों में इंदिवर के बोल हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है ग्राम हीवरखेड़ तहसील तेल्हारा जिला अकोला महाराष्ट्र से विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारस, पायल, श्वेता और उर्वी बेन अड़िया ने।

0: अटली से नंद कुमार अदवंत, उर्मिला, नीलेश, मयूरी, कल्पेश और संगीता अदवंत। आपने जिस गाने की फरमाइश की है वो है मर्यादा फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने।
1: तू भी आ जा के आ गई रुत म...

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून

0: विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला जो गीत है ये खानदान फिल्म का गाना आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में है, राजेंद्र कृष्ण के बोल है, संगीत रवि का। ये गीत सुनना चाहते हैं रामलीला मैदान सचेंडी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मनु मनी, मीत, शिवांश, अनूप सिंह और अभिजीत सिंह। आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कच्चे धागे फिल्म का गाना। 1999 की फिल्म है ये कच्चे धागे। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ें, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, नुसरत फतेह अली खान का संगीत है। इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं ने लिख भेजी है वो हैं गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, गोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज। आपकी पसंद का कच्चे धागे फिल्म का

मनचाहे गीत कार्यक्रम में अब जिन श्रोताओं की पसंद पर हम ये गीत सुनवा रहे हैं वो हैं रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। आप सुनना चाहते हैं धर्मात्मा का गाना मुकेश और कंचन की आवाज़ों में। इंदिवर के बोल हैं संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुनते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना।

0: इस गीत के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: प्रस्तुत है नाट्य तरंग। नाट्य तरंग कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सी एल जोस, रूपांतरकार पी जी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। सुनिए इस नाटक का पहला भाग।

0: हेलो
1: जी,
0: इस तरह टकटकी लगाकर आकाश की ओर क्या देख रही हो?
1: आप मेरी ओर क्यों देख रहे हैं?
0: ऐसे ही।
1: मैं भी बस ऐसे ही बाहर देख रही हूँ।
0: क्या नाम है आपका? मेरा मतलब है, आप कौन हैं?
1: आप कौन हैं?
0: मैं जेल का अध्ययन करने आया हूँ।
1: और मैं जेल में सड़ने आई हूँ।
0: ये तो देखते ही मालूम हो गया था।
1: लेकिन आपको देखकर तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। आप कौन हैं?
0: मैं एक नाटककार हूँ। मैंने मलयालम भाषा में कई नाटक लिखे हैं। इस बार मैंने जेल की पृष्ठभूमि पर नाटक लिखने का निश्चय किया है। इसी सिलसिले में आपके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ।
1: आप दूसरे कैदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं?
0: कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं।
1: मेरा नाम डेजी है।
0: डेजी?
1: क्या हुआ?
0: मुझे मुझे कुछ याद आ रहा है।
1: क्या?
0: कुछ महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था, डेजी नाम की युवती को सेशंस जज ने सजा दी थी। तुम आप वही डेजी है ना?
1: हाँ।
0: आपने हाई कोर्ट में अपील नहीं की?
1: अपील तभी की जाती है जब सजा पाने वाले को कोई शिकायत हो।
0: आपकी बातें बड़ी विचित्र लग रही हैं।
1: मेरी कहानी भी बड़ी विचित्र है।
0: क्या आप इस सब के लिए अपने को दोषी मानती हैं?
1: दोष परिस्थितियों का है या मेरे भाग्य का, जिसने मुझे उन परिस्थितियों में डाल दिया, कह नहीं सकती।
0: आपकी कहानी जानने के लिए बहुत उत्सुक हो उठा हूं। क्या आप?
1: हाँ, मैं सुनाऊंगी आपको अपनी कहानी। एक साधारण देहात के गरीब घर में मेरा जन्म हुआ। मैं छोटी ही थी कि मेरे पिता चल बसे। खेतों में मजूरी करके और इधर उधर के छोटे मोटे काम करके मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा, बड़ किया। हायर सेकेंडरी की परीक्षा मैंने फर्स्ट डिवीजन में पास की। मैं चाहती थी कि पढ़ाई जारी रखूं और कोई डिग्री या डिप्लोमा ले लूं। संयोग से तभी एक वैभव संपन्न युवक बेनी से मेरा परिचय हुआ। उन्होंने मुझसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बेनी देखने में सुंदर नहीं थे, रंग भी उनका काला था, किंतु मन से वो बहुत सुंदर थे। हम दोनों का विवाह हो गया। बेनी ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया कि विधाता को जैसे मेरे सौभाग्य से ईर्ष्या होने लगी। एक दिन सहसा उनकी छाती में एक विचित्र ही प्रकार का दर्द उठा और वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें इस तरह के 2-3 अटैक और हुए तो उन्हें मर्सी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया।
2: ओह, डॉक्टर रामदास। गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
3: गुड मॉर्निंग बेनी। गुड मॉर्निंग।
2: कभी तबीयत कैसी है?
3: बीच बीच में कभी कभी सीने में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन थकान बहुत है डॉक्टर।
2: चिंता की कोई बात नहीं। अब डॉक्टर लॉरेंस तुम्हें एग्जामिन करेंगे। वो आज छुट्टी से वापस आ रहे हैं।
3: क्या ऑपरेशन होगा डॉक्टर?
2: क्यों, ऑपरेशन से डर लगता है क्या?
3: नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था।
2: क्या करने से तुम्हें आराम होगा ये निर्णय वही लेंगे। उन्होंने विदेश में शिक्षा पाई है और सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया है। अरे ये क्या, गिटार? गुड, कितना मधुर स्वर है इसका। बेनी, इसे बजाना आता है क्या?
3: डॉक्टर, किसी गुरु से तो शिक्षा नहीं ली है, फिर भी थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ।
2: बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है।
3: एक तरह से इसमें मेरी जान बसती है।
2: अच्छा,
3: अपनी पत्नी के बाद मैं इसी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। पत्नी जीवन में प्रेम भर देती है और गिटार मधुरता।
2: तब तो दोनों ही दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हुए, क्यों?
1: नमस्ते डॉक्टर।
2: ओ नमस्ते,
3: कहाँ गई थी तुम?
1: सुना था कि डॉक्टर छुट्टी के बाद लौट आए हैं।
3: अच्छा, तो तुम जल्दी से उनका पता लगाने गई थी।
2: मेरी पत्नी जो ठहरी उत्कंठा हो सकती है। डेजी, ये टॉनिक किसके लिए लाई?
3: हम दोनों के लिए।
1: नहीं डॉक्टर, सिर्फ इनके लिए।
3: इसकी बात पर ध्यान ना दीजिए डॉक्टर, खाएंगे तो हम दोनों एक साथ ही खाएंगे, वरना।
2: अच्छा अच्छा, मैं जरा वार्ड हुआ, फिर मिलेंगे।
3: अच्छा,
1: तुमने डॉक्टर रामदास को ये सब क्यों बताया कि हम एक साथ खाते हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं?
3: इसमें हर्ज क्या है, सच तो यही है ना?
1: सच होने पर भी अपनी बातों को दूसरों के सामने इस तरह खुल्लम खुल्ला क्यों कहते हो? मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी।
3: इसमें शर्म का है कि क्या? मुझे ये कहना चाहिए था कि हम दोनों में झगड़ा रहता है। देखो डेजी, सत्य किसी के सामने किसी भी समय कहा जा सकता है।
1: अच्छा जी, तब तो एक काम करें, इस कमरे के बाहर एक बोर्ड लटका दें, इस कमरे में रहने वाले पति पत्नी एक दूसरे के गहरे प्रेम में डूबे हुए हैं।

0: डेजी, कल डॉक्टर रामदास ने हमसे एक सवाल पूछा था, तुम्हें ख्याल है?
1: क्या?
0: हमारे बच्चे हैं या नहीं?
1: हाँ, ख्याल है।
0: मुझे याद है, ये सवाल सुनते ही तुम उदास हो गई थी।
1: नहीं तो?
0: नहीं?
1: हाँ, शायद। बेनी, बेनी तुम अच्छे हो जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। बेनी,
0: तुम्हें लगता है मैं ठीक हो जाऊँ?
1: हाँ बेनी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेरे अच्छे बेनी।
0: ठेसी, इधर आओ ना।
1: बेनी, ये अस्पताल है।
0: तो क्या हुआ? आओ ना।
1: बेनी, बेनी, बेनी, बेनी, क्या हुआ?
0: कुछ दर्द सा हो रहा है।
1: अरे, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। लेट जाओ बेनी, लेट जाओ ना तुम। अरे, तुम्हारे तो चेहरे पर पसीना आ रहा है।
0: नहीं नहीं नहीं, फिक्र मत करो, जरा सी गिदीनस से चिंता की कोई बात नहीं।
1: नहीं नहीं, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ।
0: ठीक जी।
1: बेनी, एक बात बताओ।
0: पूछो।
1: तुम्हें सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है, गिटार या मैं?
0: बताऊं? दोनों।
1: मेरा मतलब है कि तुम्हें तुम्हें सबसे अधिक सुख किसमें मिलता है?
0: तुम्हें निहारते हुए गिटार बजाने में।
2: तो आप कलाकार भी हैं?
0: कलाकार तो नहीं, लेकिन कला प्रेमी रोगी हूँ। आप
1: डॉक्टर लॉरेंस है ना?
2: जी हाँ, मैं डॉक्टर लॉरेंस हूँ। तुम बेनी हो ना?
0: हाँ डॉक्टर, तुम लॉरेंस हो ना?
2: हाँ, मैं लॉरेंस हूँ भाई।
0: माय गुडनेस, तुमसे अचानक मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता।
2: और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है।
0: मैं तो तुम्हें पहचान नहीं सका
2: लॉरेंस। और मैं ही तुम्हें कहाँ पहचान पाया बेनी।
0: कुछ भी हो, तुम यहाँ अस्पताल में मेरे डॉक्टर के रूप में, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने सुना कि अमेरिका से एक फेमस डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर लॉरेंस।

0: तो सोचा कि जरूर कोई कंपिटेंट डॉक्टर होंगे।
1: तो क्या मैं कंपिटेंट नहीं हूँ?
0: मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे वही पुराने दोस्त लॉरेंस हो। सुनो, हमें एक दूसरे से मिले कितने साल हुए होंगे?
1: यही कोई 14 या 15 साल।
0: और तुम मुझे देखते ही पहचान गए, खास तौर पर इस हालत में।
1: Exactly.
0: गजब की यादाश्त है तुम्हारी। अरे हाँ, मैंने परिचय तो करवाया ही नहीं। लॉरेंस, मेरी पत्नी डेज़ी।
2: नमस्ते।
1: नमस्ते, तो मैं देखते ही समझ गया था
2: आप आ गए हैं, तो लगता है जैसे।
1: सब वो बातें रहने दीजिए। अब बेनी, पहले बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है?
0: चेस्ट में पेन है।
1: हाँ।
0: दिल की तरफ भी पेन है।
1: वैसे
0: सांस लेने में अक्सर बड़ा कष्ट होता है।
2: ये ठीक से नहीं बताते। बस यही कह देते इन्हें कोई तकलीफ नहीं, इनकी आदत।
1: हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। स्कूल में हम 3 साल एक साथ पढ़े हैं। डेजी
2: जी,
1: मैं इन्हें ठीक करने में कोई कसर नहीं रखूंगा। जो भी जरूरी होगा जरूर करूंगा।
2: थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, आप इनकी बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं?
0: डेजी, मेरे सारे रोगों की लिस्ट तुम ही इन्हें दे दो। लॉरेंस, मैंने अपने को डेजी के सुपुर्द कर दिया है।
1: बेनी, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा कोई तो है जो तुम्हारी हर बात की तरफ ध्यान देता है।
0: हाँ, हूँ सौभाग्यशाली, लेकिन इस 24 घंटे की देखभाल से मेरा दम घुट रहा है।
1: खुद सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इस पर देखभाल से भी दम घुटने लगे तो। हाँ। खैर, जो भी हो भाई, बेनी तुम्हारा कंप्लीट चेकअप करना होगा। अभी तो मैं वार्ड में जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा। सही हो गया ना?
0: ओके, बाय।
2: भगवान की बड़ी कृपा है जो डॉक्टर लॉरेंस को यहाँ भेज दिया।
0: ये फ्लास्क क्यों ले रखा है?
2: अरे बाबा, मैं तो पानी गर्म करने को रखाई थी, शायद गर्म हो गया होगा। मैं अभी जाकर ले आती। सो रहे हैं क्या?
0: अरे गिरिजा, तुम?
2: आप यहाँ?
0: हाँ, मैं एक बीमार की हैसियत से आया हूँ। सीने में और दिल में दर्द है।
2: दिल में दर्द? जिसके दिल ही नहीं उसके दिल में दर्द?
0: जरा शिष्टता से बात करो।
2: जो शिष्टता का मतलब ही नहीं समझता वो कह रहा है शिष्टता से बात करो।
0: जरा आहिस्ता बोलो।
2: मुझे पहचान लिया आपने?
0: हाँ, पहचाना ही नहीं, इस दौरान बीच बीच में तुम्हें याद भी किया है।
2: अब भी मन में विष भरा है, दूषित विचारों का विष।
0: तुम ऐसा सोचती हो?
2: सोचती नहीं, बल्कि अनुभव से कहती हूँ। मुझे देख पाएंगे इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्यों?
0: हाँ, ये कल्पना नहीं की थी कि तुम्हें नर्स की ड्रेस में देखूंगा।
2: हाँ, आपने तो मुझे किसी हीन वेश में देखने की कल्पना की होगी। इस कदर गिर तो नहीं गई हूँ?
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है गिरिजा।
2: मैं किसी का आशीर्वाद नहीं चाहती।
0: क्या?
2: आपके पास खड़ा रहना तक मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
0: मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ गिरिजा।
2: ये तो आज की बात है, उन दिनों तो आप एक टेरर थे। चेहरा?
0: मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर बात क्या है?
2: आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आती?
0: तमीज से बात करो। मैंने ऐसा किया क्या है जो तुम ये सब कह रही हो?
2: अच्छा, 4 साल पहले उस दिन जो कुछ हुआ था आपको याद नहीं? मेरे पिताजी बीमार पड़े थे, उनके प्राण बचाने का कोई उपाय नहीं था। मैं नौकरी की तलाश में आपकी संस्था में गई तो आपके दुष्ट मैनेजर ने मुझे अपनी वासना का शिकार बनाने की कोशिश की। मैंने बाघिन की तरह उसका सामना किया, मेरे कपड़े फट गए लेकिन वो भाग गया। उसके बाद कमरे में घुस आए आप, लेकिन मैं आपके चंगुल से भी भाग निकली।
0: देखो, मेरी पत्नी सुन रही होगी, प्लीज प्लीज आज चुप हो जाओ।
2: हो तो मुझे आपकी पत्नी से डरना होगा।
0: प्लीज प्लीज मुझे माफ करो, इस समय कुछ ना कहो।
2: उस दिन मैंने गिरजा और बेनी की बात सुन ली थी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। उस रात बेनी कुछ अस्वस्थ रही। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस ने बेनी का कंप्लीट चेकअप किया। 2 तरह के एक्सरे लिए, ईसीजी लिए, ब्लड और यूरिन टेस्ट हुए। रिजल्ट आने के बाद ही वो कुछ बता सकेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उन दिनों जब भी मुझे फुर्सत मिलती मैं पास के चर्च में जाकर बेनी की जल्दी ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन मैं चर्च से लौटी तो सुना बेनी और गिरजा बातें कर रहे थे। कुछ नहीं कहना है।
0: लेकिन मुझे तो कहना है, कल जहां बात रुक गई थी मैं वहीं से शुरू करता हूं।
2: मैं कुछ सुनना नहीं चाहता।
0: तुम्हें सुनना पड़ेगा। सुनो, तुम जब आई थी मैं ऑफिस में नहीं था। तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई वो मुझे मालूम है। तुम्हें समझा बुझा कर शांत करने और तुमसे माफी मांगने के लिए ही मैं दौड़ा दौड़ा आया था, लेकिन तुम न जाने क्या समझी और मेरी बात सुने बिना चली गई। मैंने आवाज दी मगर तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तुम कौन हो ये मैं तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़कर ही जान गया था।
2: आप चाहते हैं मैं इन सब बातों पर विश्वास करूं?
0: नहीं, मेरी ओर से कोई ऐसा आग्रह नहीं है। मैंने तुम्हें सच बता दिया है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है।
2: आप इतने ही सज्जन और भले मानस होते तो मुझे बुलाकर नौकरी ही नहीं दिला देते।
0: हाँ, लेकिन उस बीच कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं हुई कि मुझे इसका अवसर ही नहीं मिला। उसी दिन मैनेजर को नौकरी से हटा दिया गया। बाद में मैंने वो ऑफिस ही बंद कर दिया। आज ना वो संस्था है ना वो ऑफिस।
2: अच्छा।
0: हाँ अच्छा, ये बताओ तुम्हारे पिता ऑपरेशन के बाद भी कई दिन अस्पताल में रहे थे या नहीं?
2: हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ?
0: कितने रुपए खर्च हुए?
2: करीब 600। लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति पर तरस खाकर अस्पताल वालों ने वो रकम माफ कर दी थी।
0: माफ नहीं की थी गिरिजा, सारी रकम मैंने चुकाई थी। तुम्हें बिना सूचना दिए चेक भेज दिया था। चाहो तो अब भी पता लगा सकते हो। डिस्चार्ज होकर बाहर जाते वक्त तुम्हारे पिता के हाथ रुपए भी मैंने रखवा दिए थे।
2: क्या?
0: हाँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। तुम्हारी वेदना देखकर मेरा मन दुखी हो उठा। मुझे लगा कि तुम्हारी इन मुसीबतों के लिए मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं, इसलिए मैंने ये सब किया। फिर एक दिन सुना तुम और तुम्हारे पिता दोनों ही कहीं चले गए। उसके बाद कल तुम्हें देखा।
2: मैं ये सब नहीं जान पाई, गलती हो गई, मुझे माफ करें।
0: माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं गिरिजा, मैंने जो कुछ भी किया वो अपना कर्तव्य समझकर किया। चेहरा कुरूप होने पर भी मेरा मन कुरूप नहीं है।
3: गिरजा चली गई, लेकिन उनकी बातें सुनकर मेरे मन में बेनी के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना आदर, कितना प्यार और उमड़ आया कह नहीं सकती। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस जांच की रिपोर्ट लेकर आए। क्या हुआ डॉक्टर? टेस्ट में क्या निकला? कोई खास बात?
4: वो बेनी कहाँ है?
3: चेरिन के पास गए हैं, अभी आते होंगे। डॉक्टर, सारी रिपोर्ट्स आ गई ना?
4: हाँ डेजी, सारी रिपोर्ट्स आ गई।
3: कोई खास बात बताइए ना डॉक्टर।
4: डेजी, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है लेकिन मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। बेनी के हार्ट के एक वॉल्व में गड़बड़ है। वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर वॉल्व बंद हो गया तो उसकी सांस रुक जाएगी और ऐसी इमरजेंसी किसी वक्त उठ सकती है। जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा इसी हफ्ते में।
3: डॉक्टर,
4: हाँ डेजी प्लीज, बेनी से कुछ नहीं कहना, मेजर ऑपरेशन है, लेकिन मैं अपनी पूरी जान लड़ा दूंगा।
3: डॉक्टर, डॉक्टर किसी तरह मेरे बेनी को बचा लीजिए डॉक्टर, उनके बिना।
1: अरे भाई, अभी तो ऑपरेशन हुआ भी नहीं और तुमने चिंता करनी शुरू कर दी।
3: मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर।
1: डेजी, इस तरह अधीर होने से कैसे काम चलेगा? तुम्हें तो बेनी को आत्मविश्वास और सहारा देना है। अब तुम इस तरह हिम्मत हारोगे तो कैसे होगा? तुम्हें तो मुझे सब बात सच सच बतानी ही थी।
3: नहीं, मुझ में ये सुनने का साहस नहीं है डॉक्टर।
1: डेजी धीरज रखो, डेजी धीरज रखो, बेनी इस समय आ गए तो ये सब देखकर दुखी हो जाएंगे। अल्लो बेनी आ रहे हैं।
5: आइए आइए, कहाँ पे जाना?
6: ओ डॉक्टर।
5: भाई जब भी डॉक्टर पेशेंट को देखने आता है पेशेंट बेड पर नहीं मिलता। इस पैकेट में क्या है?
6: बता दूंगा, पहले ये बताओ मेरी रिपोर्ट्स देखकर तुमने क्या डायग्नोस किया?
5: भाई रिपोर्ट सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, हो सकता है एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़े।
6: कोई गड़बड़ है डॉक्टर?
5: अरे भाई गड़बड़ कैसी, डोंट वरी, मैं तो हूँ, आई विल डू माई बेस्ट।
6: लॉरेंस, ये बात इस

0: डेजी से कह दो, इसी को ज्यादा डर लग रहा है। डेजी, अब तुम्हारी परेशानी दूर हुई ना?
1: और हाँ बेनी, एक बात और, इस तरह कमरा छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं है। आई डोंट लाइक इट। अच्छा तो मैं चलता हूं अब। सी यू अगेन, बाय।
2: तुम तो चेरियन से मिलने गए थे बेनी, ये पैकेट कहां से उठा लाए?
0: तुम्हारे लिए एक चीज है।
2: अच्छा, देखो तो।
0: लो, देख लो।
2: साड़ी, ये अब काहे को? और यहाँ
0: मेरी ओर से प्रेजेंट।
2: प्रेजेंट?
0: हाँ, तुम्हें याद है आज तुम्हारा जन्मदिन है, भूल गई? लो, मेरी डेजी के लिए जन्मदिन का प्रेजेंट है। ए, तुम उदास नजरों से मुझे घूर क्यों रही हो? लो ये रख लो।
2: इतना स्नेह जताकर तुम क्यों मेरा दम घोट रहे हो? बेनी, हमें एक दूसरे के लिए इतना अधीर नहीं होना चाहिए।
0: हाँ, ऐसा मुझे भी लग रहा है। तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं होना चाहिए था। तुम्हें इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए था। खैर, साड़ी पसंद आई?
2: तुम्हें अस्पताल में साड़ी नहीं लानी चाहिए थी।
0: अब अगर मैं और मौका ना पाऊं तो? तुम तो बड़ी ना समझो। तुम अगर ऐसे ही रही ना तो फिर चल गया काम। प्रेजेंट देखकर रोने लगी? नहीं नहीं नहीं, रो मत। देखो, अब अगर और ज्यादा रोगी तो मैं रूठ जाऊंगा। बोलो, रूठ जाऊं? नहीं नहीं ना। अच्छा तो फिर हंस दो। देखो ये ऐसे ऐसे।
2: अरे, क्या क्या हुआ आपको?
0: डेजी,
2: यहाँ लेट आइए, लेट आइए ना। बेनी, बेनी, बेनी, डॉक्टर, डॉक्टर! कुछ ही मिनटों के अंदर डॉक्टर लॉरेंस दौड़ कर आ गए। दूसरे ही दिन बेनी का मेजर ऑपरेशन हुआ। भगवान की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा। गिरजा की निष्ठापूर्ण सेवा ने मुझे अचरज में डाल दिया। जब ब्लड का स्टॉक खत्म हो गया तो उस नाजुक परिस्थिति में गिरजा ने अपना खून दिया। बेनी धीरे धीरे बोलने चालने लगा तो मेरा मन खुशी से खिल उठा। लेकिन मेरा सुख क्षण भंगुर था। सहसा सब खत्म हो गया। चौथे दिन मेरा बेनी स्वर्ग से धर गया।
3: Oh, no.
2: सदा के लिए मुझसे बिछड़ गया।
3: आखिर ये हुआ कैसे?
2: ऑपरेशन के बाद एक दिन बेनी के हृदय में दर्द उठा। सांस लेने में बड़ा कष्ट होने लगा। फौरन डॉक्टर के पास आदमी दौड़ाया, लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर लॉरेंस घर पर नहीं मिले। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी के प्राण फकीर उड़ चुके थे। टूटे हुए पेड़ की तरह मैं जमीन पर गिर पड़ी और फिर मुझे किसी बात की सुध नहीं रही। पांच बाद मुझे होश आया, मैं बीमार पड़ गई। जिस कमरे को मेरे पति खाली कर गए थे मैं उसी में भर्ती हो गई। 2 महीने बीत गए। एक दिन नर्स गिरजा मेरे पास आई।
4: डेजी, ये सब क्या है? छोटे बच्चों की तरह?
5: ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता गिरिजा।
4: दुख तो मुझे भी है डेजी, मैं भी उनको नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझ पर बहुत उपकार किया था।
5: मैं अब क्यों जीवित हूँ गिरिजा? चिराग बुझ गया, रोशनी खत्म हो गई, मेरे सामने अब अंधेरा ही अंधेरा है।
4: ना डेजी, इस अंधेरे से तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। उठो, हाथ मुंह धो लो, हमेशा रोना धोना अच्छा नहीं। चलो देखो, देखो इससे बेटी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
5: गिरिजा
4: डेजी, अच्छा अब मैं चलती हूँ, ड्यूटी खत्म होने पर आऊंगी, तब हम देर तक बैठकर बातें करेंगे।
6: इस तरह कुछ महीने और बीत गए। डॉक्टर लॉरेंस मेरी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहते थे। बेनी के प्रति वे बहुत स्नेह प्रदर्शित करते थे। और एक दिन सब लोगों को आश्चर्य में डालकर हम, मैं और लॉरेंस, विवाह सूत्र में बंध गए।
3: अच्छा?
6: लेकिन इस सब के बावजूद भी बेनी मेरे अंदर जीवित रहे। उनका प्रिय गिटार मैंने संभाल कर रख लिया था। एक दिन की बात है,
7: आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में।
8: 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
9: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
8: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
10: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
8: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
10: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
8: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
11: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
12: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
11: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
13: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अभिनेत्री साधना सिंह, यानी नदिया के पार की गुंजा।
2: जोगी जी प्रेम
1: इनसे बातचीत कर रही हैं विधि जैन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हमेशा आपके लिए कोई ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आती है जो आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, हमारे श्रोता जिन्हें बहुत पसंद करते हैं। और आज एक ऐसी अभिनेत्री हमारे समक्ष हैं जिनको देखकर न जाने कितने दिलों ने ये सोचा होगा कि काश हम भी ऐसे ही होते, या हमारे परिवार की बेटियां, बहुएं सभी ऐसी ही होती। हर कोई ये विचार कर रहा था, वो मिट्टी की खुशबू, वो जिंदगी, वो किरदार, वो अभिनेत्री जो उस समय भी उतनी ही खूबसूरत थी और आज भी वही रूप, वही रंग और वही यौवन हमें दिखाई दे रहा है। आज हमारे सामने है, अच्छा श्रोताओं चलो एक प्रश्न पूछती हूँ। एक डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा था, चंदन काहे का हम अच्छी लड़की नहीं है, ये किस फिल्म का डायलॉग था जरा विचार कीजिए। हाँ वही फिल्म जिसमें हमने होली की धुन पर भी नाचा है और गांव की एक प्यारी सी लड़की की चुहलबाजी, मस्ती और बहुत सारी शैतानी को भी देखा है। और वही मस्तीखोर बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी अभिनेत्री हमारे बीच में है और नाम है साधना सिंह जी। मैं मंच से इस प्यारे से विविध भारती से आपका इतने प्यार से स्वागत करती हूँ।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आज पूरा विविध भारती परिवार इतना प्रसन्नचित है आपको पाकर क्योंकि उन्हें उनकी गुंजा सुनने को मिल रही है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: मैंने जब जिक्र गुंजा का कर दिया है तो गुंजा से ही शुरू करते हैं। गुंजा जो है वो बहुत बदमाश भी है और कहीं मिर्ची पीस के खिला देती है कहीं पानी गिरा के चली जाती है। हाँ। कभी बाबा की डांट भी खाती है तो माँ के सामने झिझक के निकल भी जाती है। और वही गुंजा जो है वो एक समय पे आके उदास भी हो जाती है अपने परिवार के लिए, बहन के लिए, अपने खुद के लिए। तो आप उन दोनों में से, हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पहली वाली गुंजा होनी चाहिए, पर फिर भी मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि मेरे सामने जो गुंजा बैठी है वो कौन सी वाली गुंजा है।
1: एक्चुअली तो फर्स्ट हाफ में जो दिखा है चुलबुली, बदमाश
0: जी,
1: प्रैंक करने वाली हूँ मैं वही, लेकिन उसके साथ ही ये आता है साथ में जो सेंसिटिविटी है, जो उसका अलग भाव, जो
0: समझदारी,
1: सैडनेस है या किसी के लिए फील करना है।
0: हाँ।
1: वो अपने आप इसके साथ बायो प्रोडक्ट की तरह आता है।
0: हाँ।
1: तो मैं एक्चुअली देखा जाए तो जो गुंजा है वही मैं हूँ,
0: दिल की सच्ची अच्छी बच्ची।
1: हाँ, जो भी है बदमाशी भी करती हूँ और आज तक करती हूँ। पहले मेरे बच्चे थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाते थे, क्या मम्मा रुको, अब वो भी इंजॉय करते हैं क्योंकि उनको पता ही है औरत रुकने वाली है नहीं। तो मैं आज भी वैसे ही मस्ती करती हूँ घर में भी।
0: हाँ।
1: बाहर भी, फ्रेंड्स के साथ भी। और जब बोलते हैं गुंजा, गुंजा के कैरेक्टर में इतनी ढल गई मैं कि मुझे पता ही नहीं चला ये मेरे अस्तित्व में कैसे शामिल हो गई।
0: अच्छा।
1: और कुछ चीज़ें थी जो मेरी थी
0: जी,
1: और मेरे दादा जो ये थे डायरेक्टर गोविंद मुनीस जी, वो मुझसे सुनते थे, अच्छा बताओ तुमने और क्या बदमाशी की, तो वो सब बताती थी। जैसे कलर लगाया उसको सचिन को लगाया ना, वो मेरा एक्चुअली रियल इंसिडेंट था जहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड के भाई को, सोया हुआ था और सुबह उठ नहीं रहा था होली में, तो उसको पूरा लगाया था ऐसे मैंने, तो दादा ने डाल दिया वो और जो मिर्च खिलाई, अभी भी करती हूँ मैं वैसे काम।
0: यानी साधना जी जो है वो ये बदमाशियां कर चुकी थी और अभी भी कर रही हैं और गुंजा
1: करती रहूंगी।
0: सच बात है, वो गुंजा का जो किरदार रहा है आपका, जो आपने किया है, उस समय बहुत सारी अच्छी फिल्में आ रही थी, यानी ऐसी ही फिल्में आ रही थी जो बहुत सेंसिटिव थी, लोगों के दिलों को छू रही थी। और उन फिल्मों के बीच में सन 1982 में नदिया के पार अपना एक अलग मुकाम बनाया। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि नदिया के पार करते समय या उसके पहले क्या आपने उसके बारे में पढ़ा था, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, या बस नेचुरली उतर गई थी मैदान में?
1: हाँ नहीं, उतर ही गई थी क्योंकि कहीं मैंने वो एक्टिंग सीखी नहीं।
0: अच्छा।
1: और कोई स्पेशल कोर्स नहीं कराया दादा ने मेरे साथ
0: जी,
1: उन्होंने बस एक ही चीज बोली, तुम जैसी हो वैसी रहना, ठीक है। और लेकिन बावजूद उसके मुझे लगता था कि नहीं, एक्टिंग कर रही हूँ मैं, कहाँ करूँ, मुझे समझ नहीं आया शुरू में। तो जब शूटिंग खत्म हो गई, मैं कहा दादा एक्टिंग ही नहीं कराई।
0: अच्छा।
1: आपने तो बोलते बस तुम देखना पर्दे पे, इसी को एक्टिंग बोलते हैं। तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था क्योंकि दिमाग में था ही नहीं कि एक्ट्रेस बनना है
0: जी।
1: लेकिन चलिए जो बने, लेकिन उन्होंने देखा मुझे 14-15 दिन ऑब्जर्व किया
0: जी,
1: तब जाके उनको लगा यही मेरी गुंजा है।
0: अरे वाह।
1: हाँ,
0: तो साधना में उन्होंने गुंजा ढूंढ ली। जब आप छोटी थी तो आप क्या चाहती थी? आप अभिनेत्री, आपने भी बोला कि आपको पता नहीं था कि हाँ, आप अभिनेत्री बनेंगी।
1: हाँ,
0: तो साधना जी क्या बनना चाहती थी?
1: मुझे पैशन तो सिंगिंग का ही था।
0: अच्छा।
1: तो लोग भी मुझे एज ए सिंगर ही जानते थे, कानपुर में मैं थी
0: जी,
1: तो उनके हिसाब से मैं सिंगर ही थी। और टीचर्स भी बहुत प्यार करती थी, क्योंकि जैसे ही उनका ब्रेक होता है ना, लंच ब्रेक वगैरह, तो बोलती थी बुलाओ साधना को। और सब खा रही और मुझे बोल रही वो वाला गाना सुनाओ, अभी वो वाला सुनाओ, फरमाइशी चलता था गीत। तो इस वजह से मेरी बड़ी गलतियां माफ कर दी जाती थी स्कूल में भी, कि ठीक है जो भी है गाना तो गाती है ना। तो या कुछ क्योस होता था तो बोलते साधना को बोलो माइक पे आए जल्दी।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो ये था, रुतबा था मेरा अपना।
0: तो अच्छी बात है। लेकिन आपने एक जिक्र किया कि आपके सामने माइक रखा जाता था और कहा जाता था कि हाँ, साधना गाओ। लेकिन अभी आप अपनी पसंद का कोई गीत बता दीजिए जो हम हमारे श्रोताओं को सुना दें। कौन सा ऐसा गीत है जो पहला गीत आप सुनना चाहती हैं आपके साक्षात्कार के साथ?
1: देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं 3 साल की थी, 3-3.5 साल की, जब मैंने अचानक एक गाना गाया। उस समय तो रेडियो होते थे और मेरी मम्मी ने पूरे मोहल्ले को बुला लिया, मेरी बेटी देखो गाना गा रही है, मेरी बेटी गाना गा रही है। वो गाना था तोरा मन दर्पण कहलाए,
0: क्या है ना।
1: तो शुरुआत मेरी उससे हुई और फिर बस गाने लगी और मतलब एज ए सिंगर छाने लगी। उससे वक्त आवाज़ अलग थी मेरी, मतलब आप 50,000 लोग खड़े कर दीजिए उन तक पहुंच सकती थी,
0: उतनी बुलंद
1: आवाज़। हाँ, बुलंद आवाज़ थी
0: जी। तो आपका जब पसंदीदा गीत है और 3 साल की उम्र में जब छोटी सी साधना ने पहला गीत गाया है, तो वो गीत हम आपको विविध भारती परिवार की तरफ से उपहार स्वरूप देना चाहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।

0: बताया कि 3 साल की उम्र में आप गा रही थी, आप हालांकि आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं, तब तो भला की खूबसूरत रही होंगी, तो लोगों का प्यार करना बनता है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और मैं शायद गलत नहीं हूँ कि आपने मंच में नृत्य अभिनय बहुत सारे काम स्कूल में जो होते हैं वो भी शायद किए
1: हाँ, मैंने
0: होंगे।
1: नृत्य कभी नहीं किया,
0: अच्छा
1: वो मेरी बहन करती थी, तो
0: अच्छा
1: मेरे माइंड में आ गया कि वो डांस कर रही हैं तो मैं गाने में ठीक हूँ,
0: अच्छा
1: लेकिन वो कहीं ना कहीं अटक गया मेरी बॉडी में या कुछ। तो वो कथक करती थी बहुत ज़बरदस्त, बिरजू महाराज जी की बहुत फेवरेट ये थी डिसाइपल, और बिजली की तरह नाचती थी वो, तो कहीं ना कहीं कथक मेरे अंदर कुछ ना कुछ भाव उसके रह गए।
0: अच्छा
1: अब अफसोस की बात यह कि उनको अर्थराइटिस हो गया, तो फिर एक डांसर के लिए अर्थराइटिस हो जाना,
0: बहुत
1: तो
0: दुखद घटना है जी।
1: मतलब टीचर्स भी बोलती थी तुम तो स्कूल में गाना गाती थी, और हम लोग का एनुअल फंक्शन में हमेशा मना कर देती थी कि मैं डांस नहीं करूँगी, लेकिन वो था तो है अंदर।
0: नहीं, आप बहुत अच्छा नृत्य की हैं उस जोगीरा
1: जोगीरा
0: में, और हमने देखा बड़ा
1: में
0: मस्त
1: मार
0: है।
1: खा के की हूँ।
0: अच्छा, वो किस्सा भी जरा बता
1: नहीं,
0: दें
1: वो ये था, बद्री जी थे
0: जी।
1: हमारे डांस डायरेक्टर,
0: जी
1: तो गाना तो बड़े मज़ेदार था। हाँ,
0: हाँ,
1: और शीला जो है वो पूरी ट्रेन डांसर थी,
0: अच्छा
1: तो मैं तो
0: हाँ,
1: नहीं थी। तो उसमें एक स्टेप है ना, थोड़ा मुश्किल स्टेप है, ऐसे करके ताली एकदम,
0: जी
1: और घूम के आना था,
0: जी
1: मुझसे हो नहीं रहा था कि माइंड अटक गया था। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी ये, तो बद्री जी से मैं कहती थी कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो बोलते हैं 3-4 दिन उन्होंने देखा ये ऐसे बदतमीजी करती जा रही है, तो एक बार आएगा, आज तुमको डांस आएगा देखना, लेकिन डंडा मारा पैर में। एकदम ठीक कर दिया मैंने
0: अच्छा, एक
1: आपको।
0: डंडे में डांस हो गया।
1: तो कई लोग ऐसे भी होते ना कि लातों के भूत, क्या कहते हैं,
0: लाठी के भूत।
1: लाठी के भूत, मारा पैर में बड़ी जोरों से लगी, मैंने कहा मैं कर लूंगी इसे।
0: बद्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने इतना खूबसूरत स्टेप हम तक
1: और
0: पहुंचाया।
1: क्योंकि शीला बहुत अच्छा कर रही थी,
0: हाँ
1: तो मैं देखती रहती थी, बड़ा मटक मटक के डांस किया उसने, फिर मैंने कोशिश की तो हो गया।
0: बहुत खूब किरदार को निभाया और बहुत खूब नृत्य किया आपने। हमें नहीं पता था कि आपको उसमें डंडा पड़ा है, पर मैं उस डंडे को भी प्रणाम करती हूँ जिस डंडे ने इतना खूबसूरत नृत्य करवाया। अभी नदिया के पार फिल्म में आप आई और बहुत सारी जगह बहुत सारे अलग अलग भाव आपने दिखाए हैं, कहीं आप उसके प्रेम में भी हैं और अगले ही पल आप चंदन को परेशान भी कर रही हैं। तो ये जो भाव बदलने की जो क्रिया थी, आपने अभिनय सीखा नहीं, आप किसी रंगमंच की अभिनेत्री नहीं है, वो सब कैसे इतना छोटा छोटा अंतर, हम जब नदिया के पार देखते हैं तो मैं वो अंतर दिखाई देता है कि पल में शोला पल में माशा वाला, कि आप 1 सेकंड पहले उसी चंदन को देख के आपके अंदर से प्रेम के भाव आ रहे हैं और अगले ही क्षण वो प्रेम के भाव बदल गए। वो
1: हाँ,
0: किरदार किया कैसे आप?
1: वो इसीलिए हो पाया कि मैंने कोई मेथड एक्टिंग नहीं सीखी थी। अगर वो सीखी होती तो मैं बंध जाती किसी भी चीज में।
0: अच्छा,
1: वो बह गया, बह रहा था जैसे, तो मुझे कुछ ऐसा खास ऐसा बोलना नहीं था, बहुत बड़ी स्पीच नहीं देनी थी, छोटे छोटे मोमेंट्स अगर आप देखो तो जैसे मैं बोलती थी वैसे ही बोलती हूँ, तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। मुझे लगता है उसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया, कि दादा बोलते थे जो मर्जी आए करो,
0: अच्छा
1: ये है ये फ्रेम है ये। सचिन ने भी हेल्प की समझने के लिए कि हिलना नहीं पड़ता, पता चला तुमको बोलते हैं राइट तो चली जाती हो एकदम बाहर कैमरे की, तो यही सच। और दूसरा वो उसके जो डीओपी,
0: डीओपी
1: हाँ,
0: दादा।
1: उनको बड़ी खुन्नस थी मेरे से, तो वो सीधे नहीं, इतना सा बोलो तो 10 गुना आगे चली जाती है, इसको सिखाओ। तो
0: अच्छा,
1: 2-3 चीजें ये सीखी कि लाइटिंग लेना है, अच्छा थोड़ा अगर इधर बोला इतना ही जाना है,
0: हाँ
1: ऐसे चल फ्रेम की बारी चली जाती थी, तो वो नेचुरली था अंदर तो आ गया।
0: जी,
1: मैंने कुछ उसमें पुट ऑन करने की मतलब कोशिश ही नहीं की।
0: अभी बहुत सारे बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपको तो खैर अभी बहुत बरस हो गए इस अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय की दुनिया में, आप उन नए बच्चों को क्या कहना चाहती हैं इस विषय में?
1: मुझे लगता है कि पहली बात, एक्टिंग ऐसी चीज है जो सिखाई नहीं जा सकती, कि आप
0: अच्छा,
1: पैसे लेके आ रहे हैं अपने घर से बॉम्बे में सीखेंगे एक्टिंग, वो नहीं, जर्म्स अंदर होने चाहिए, तो वो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ज्यादा हो गया कम हो गया, पर जो चीज़

0: है ही नहीं आपके अंदर, और सिर्फ शक्ल के उससे कि नहीं मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ या सुंदर लग रहा हूँ, चले आते हैं एकदम, मतलब पोटली उठा के माँ बाप का पैसा लेके। तो मुझे नहीं लगता कि वो पहले खुद को जज करें, समझें अपने आप को। हो सकता है बहुत अच्छे एक्टर हो जाएं, लेकिन ये सोच के आना कि नहीं मैं अब जा रहा हूँ हीरो बनने या हीरोइन बनने, वो गलत, बहुत गलत है। और माँ बाप साथ में नहीं होते हैं, फिर आप गलत राहों पे चलने लगते हैं
1: जी। तो थोड़ा सा खुद को परख के आए, ऐसा आपका कहना है। हाँ। और सुंदरता बस ज़रूरी नहीं है अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय भी ज़रूरी है। ये तो बहुत अच्छी बात हमें आपसे पता पड़ी। इसके साथ ही एक और बड़ी खूबसूरत सी अदायगी मुझे ये लगी कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ, मैं टीवी सीरियल्स में काम कर रही हूँ, तो मैं फिल्मों में कर रही हूँ तो मैं टीवी में क्यों करूँ।
0: हाँ,
1: एक
0: तो
1: ये ईगो भी सामान्यतः लोगों में होता है कि हमने किया है, तो इसके लिए आपने अपने मन को तैयार किया या
0: नहीं? कुछ तैयार नहीं किया, मुझे पता था मीडिया है ना,
1: हाँ
0: वो भी एक्टिंग ही चाहता है
1: जी,
0: है ना, हमको वहाँ भी लाइनें याद करनी होंगी
1: जी।
0: लेकिन वो पीयर प्रेशर एक होता है, वो कौन ले पाता है कौन नहीं ले पाता। नहीं तो एक्टिंग तो कहीं हम अगर सड़क पे खड़े होकर प्ले करते हैं तो थोड़ा लाउड करते हैं क्योंकि हमको पता है, वो अपनी समझ है
1: जी,
0: है ना, कि यहाँ पे बहुत सेंसिटिव कुछ आवाज़ नहीं आ रही, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने लगूँ
1: जी।
0: तो अल्टीमेटली मैंने पाया कि एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है।
1: अच्छा, एक्टिंग नहीं करना ही
0: एक्टिंग है। हाँ, तो मैं तो इतनी बड़ी अपने आप को समझती नहीं हूँ कि मैं किसी को बोल पाऊँ। ये आपने पूछा तो मैं बता रही हूँ। हाँ, कि
1: जी जी, हमारे समक्ष बैठी हैं साधना सिंह जी, और अभी हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो साधना जी, हम तो रेडियो वाले हैं, हम गाना सुनाते हैं।
0: हाँ,
1: तो
0: हाँ,
1: मौका है, दस्तूर भी है कि आपकी पसंद सुन ली जाए।
0: अच्छा, ऐसा
1: जी, तो कोई गीत बता दीजिए जो।
0: मोस्टली मुझे रोमांटिक और ब्रीजी सॉन्ग या स्लो सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। तो कुछ दिल ने कहा, ऐसी भी बातें होती हैं।
1: वो उसका संगीत कितना खूबसूरत
0: और जी, बहुत मीठा संगीत है।
1: तो हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं ये खूबसूरत सा नगमा।
2: कुछ दिल ने

0: और गीत के पार वापस हम सब प्रस्तुत हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में। ये खूबसूरत सा कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन प्यारी सी अभिनेत्री के साथ में, वो अभिनेत्री जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और जो भी जीवन में आया है उसे मुस्कुराते हुए सब करती गई हैं, मस्ती के साथ सब करती गई हैं और उसी उसी में आगे बढ़ते बढ़ते इनके पास में कई और सारी फिल्में आई हैं जिनमें एक आज के यूथ की पसंदीदा फिल्मों में से एक बड़ी प्यारी सी फिल्म है सुपर थर्ड। इसके बारे में आप कुछ किरदार के बारे में बताएं तो।
1: ये समय ना बहुत टफ था मेरे लिए।
0: अच्छा।
1: क्योंकि कमिटमेंट हो चुकी थी और उसी वक्त मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब थी तो हॉस्पिटलाइज थे, तो मैं जब भी आती थी बॉम्बे तो सीधा हॉस्पिटल जाती थी
0: जी।
1: तो बड़ा गंदा सा पैच था।
0: अच्छा।
1: उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी लेकिन ये है कि आप जब कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाते हो तो आपके कई सीन्स जब कटने होते हैं ना तो साइड जो एक्टर है उनके ही कटते हैं, हीरो हीरोइन के नहीं कटेंगे। तो बहरहाल जैसा भी था तो आई वॉज सेटिस्फाइड जो थी। और अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं तो ह्यूमन टच नहीं रह गया है
0: जी
1: तो वो मैंने मिस किया उस फिल्म में। और बाकी तो छोटा सा अच्छा सा रोल था। और मैं जानती हूँ कि एडिटिंग होती है
0: जी।
1: और एडिटिंग से ही फिल्म बनती है
0: जी।
1: तो इसलिए मैंने कभी उन पे क्वेश्चन नहीं किया कि मेरा ये सीन क्यों काटा वो सीन क्यों काटा
0: जी।
1: लेकिन हाँ अच्छा लगा। प्रोडक्शन के जो लोग हैं, अभी लड़कियां आ गई हैं बहुत
0: नहीं
1: प्रोडक्शन में
0: जी, जी
1: तो उनके बीच में घिर के मस्ती करते हुए ठीक है। बट बाकी जो स्टार हैं वो तो अपने अपने वैंस में चले जाते हैं आजकल। हमारे टाइम पे हम लोग को बिठाया जाता था कि दूसरा क्या कर रहा है उसको भी देखो।
0: तो उस समय आप लोग दोनों उसमें बैठे रहते थे यानी अपना करने के बाद फिर आप वहीं होते थे, सेट पे ही रहते थे?
1: सेट पे ही रहती थी, मतलब पहले ऐसे ही होता था।
0: अच्छा।
1: बैठ के साथ में खा रहे हैं, साथ में गप भी कर रहे हैं, कुछ सीन की बात भी कर रहे हैं
0: जी।
1: या अभी कुछ सीन हो रहा है तो इसके बाद मेरा है तो मुझे क्या सुर पकड़ना है क्या नहीं, बहुत सी चीजें। लेकिन आजकल शॉट देते ही लोग वैनिटी, मेरी वैनिटी तो खाली रहती थी क्योंकि सेट पे ही आदत है
0: आदत अनुसार आप लड़कियों से घिरी रहती थी।
1: हाँ तो टाइम निकल जाता है। बट रोल अच्छा था, फिल्म अच्छी थी
0: जी।
1: तो एक लाइन बोलती हूँ ना, हमें नहीं चाहिए शॉल, हम बहुत हॉट है। तो वो एक छोटा सा था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया वहाँ पे। हाँ
0: नहीं वैसे आप बहुत हॉट है, शॉल की जरूरत नहीं। तो अभी उसके बाद आपने एक चंदा किरदार को भी निभाया ससुराल फिल्म में, उसके बाद बहुत सारे किरदार किए आपने नदिया के पार के बाद। जी
1: नदिया के पार बहुत ज्यादा काम नहीं किया मैंने
0: जी,
1: काफी कुछ घर की भी प्रॉब्लम्स हो गई थी और यहाँ मैं सिस्टर के पास रह रही थी, बहुत सारी चीजें हुई उस दौरान। लेकिन ये है कि एक शंकराभरणम फिल्म आई थी
0: जी,
1: विश्वनाथ जी साउथ के थे, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, उसका नाम था शंकराभरणम। तो जब मैं थिएटर में काम कर रही थी तो इप्टा में
0: जी,
1: तो वहाँ के जो सबसे बड़े जो कर्ता धर्ता थे आबिद रिजवी, मुझे बिल्कुल बेटी की तरह। हाँ तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बोले चलो तुमको एक तमिल फिल्म दिखाते हैं। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ, तमिल मुझे समझ नहीं, वो वही पढ़ती रह जाऊंगी मैं सब टाइटल
0: नीचे का जी।
1: लेकिन वो ले गए
0: जी
1: और वो फर्स्ट फ्रेम शुरू हुआ फिल्म का।

0: मैं ऐसे देखती रह गई। मतलब जब फिल्म ख़त्म हुई तो मैं इतनी भरी हुई थी, ओवरवेल्म्ड एकदम। मैं कहा ऐसी भी फिल्में होती हैं क्या, काश इस तरह की कोई फिल्म मैं कर पाती। तो विद इन टू मंथ्स मुझे फ़ोन आता है कि ऐसा ऐसा हम लोग हिंदी वर्जन बनाना चाह रहे हैं,
1: वही तो सेम फिल्म।
0: हाँ सेम फिल्म, लेकिन आपको जो गुरु हैं उनकी बेटी का रोल। मैंने कहा कोई भी रोल है मैं करूँगी। जुड़ना ऐसी फिल्म
1: जी,
0: से
1: जी।
0: तो विश्वनाथ जी तो बहुत उनको पूजा जाता है वहाँ पे
1: जी,
0: साउथ में। सरगम ये सब उन्होंने ही बनाई, तो उनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बोला तुम्हारी आंखें अच्छी हैं बहुत, लेकिन
1: बोलती आंखें,
0: हाँ, तो इनको ऑन इनहेंस कैसे कर सकते हो एक्टिंग के लिए
1: जी,
0: कि एक बार पलक झपकाओ तो उसका क्या मीनिंग होता है, दो बार झपकाओ तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें वो बताते थे ना, तो ही जस्ट अभी पास्ड अवे, उनका मंदिर वगैरह बनाया। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। नदिया के पार के बाद ससुराल थी ना शायद, हाँ
1: जी जी उसके बाद ही,
0: हाँ, तो मस्ती में की बस। और वहीं पे मेरे हस्बैंड मिल गए मुझे, हस्बैंड जो आज हैं
1: जी,
0: उनकी फिल्म थी जो मैं नहीं करना चाह रही थी।
1: अच्छा,
0: लेकिन मेरे डायरेक्टर हैं
1: जी,
0: मुझे लगा उनको काम मिलना चाहिए, तो उस वजह से मैंने कहा कि अगर दादा कर रहे हैं तो मैं कर रही हूँ। तो वो फिल्म की, उसके बाद ना इतना सिनेरियो इतना गंदा हो गया था और कोई अच्छी फिल्में नहीं बन रही थी, तो सिर्फ बुआ बन के, दादी बन के, चाची बन के खड़े रहना। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी।
1: हाँ।
0: तो वो टाइम मैंने अपनी शादी, फिर बच्चों को देखना ये सब
1: जी, जी।
0: और फिर उसके बाद मुझे जब मैं फिल्म में आई तो ये पिछले 5 सालों की जुगनी,
1: जी जुगनी,
0: जुगनी बहुत अच्छी फिल्म
1: बहुत
0: है, देखे
1: अच्छी
0: हाँ।
1: फिल्म जी।
0: तो ये नए लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया जब,
1: हाँ,
0: तो बहुत एनर्जी और बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट है। तो मैंने कहा नहीं ये तो सिनेरियो ठीक है अभी। तो उसमें अच्छा रोल दिया उसने मुझे, लड़की ने, और उसका नाम है शेफाली भूषण
1: जी।
0: अभी भी उनकी मराठी एक फिल्म बहुत हिट हुई है, स्थल।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो उनके साथ काम करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों के साथ काम करके। दे वेरी ड्रिवन, सब लोग शीशा दिखा रहे हैं, आपको मेकअप मैन की जरूरत नहीं है, है ना, सब मिलके काम कर रहे हैं,
1: मिलके काम कर, हाँ, पारिवारिक तरीके,
0: हाँ,
1: से काम,
0: हाँ,
1: हो रहा है।
0: फिर मैंने अनुराग कश्यप, वो मुझे ढूंढ रहा था कब से, तो उसको लगा कि शायद मैं अमेरिका चली गई हूँ शादी आदि करके, तो कुछ देख रहा था, उसने कहा रुको रुको ये साधना जी कहाँ है आजकल, तो उन्होंने बताया यही है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, आपको काम करना पड़ेगा मेरे साथ। तो वो फिल्म की फिर उसमें मजा आया मुझे बहुत।
1: अनुराग कश्यप जी के साथ में आपको एज ए डायरेक्टर, वो जब साथ में है,
0: हाँ,
1: तो आपको क्या अलग लगा पहले का?
0: मुझे ये लगा कि वो कंफर्ट मैंने फील किया जो नदिया के पार में था।
1: अच्छा,
0: हाँ, क्योंकि ये भी बोलते, हाँ, ऐसा जैसा आपको ठीक लगे, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये नहीं जकड़े हुए नहीं थे,
1: हाँ,
0: कि ऐसा ही करना है। और कई कई जगह तो आए, पैर वैर छुए, बोले हम नहीं सोचते थे कि आप इस तरह की लैंग्वेज बोलेंगी
1: जी। हम लड़कियों को बचपन से कहा जाता है कि एक राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे आपको लेके जाएगा।
0: पति का नाम राजकुमार
1: ही नहीं, राजकुमार आ गए। वो सफेद घोड़े पे आए थे या एम्बेसडर में आए थे?
0: अरे वो उन्होंने बदला लिया मुझसे शादी करके।
1: अच्छा, हम जानना चाहते हैं वो किस्सा।
0: वो किस्सा मैंने बताया, मैं किस्सा यही था कि मुझे अंदर से ये नहीं था कि मुझे फिल्म करनी है, तो मैंने कहा अब नहीं करूंगी। तो ये बिहार छोड़ के आए थे कि फादर ने बोला इस लड़की को लेके ही फिल्म बनानी है, तो फादर ने बोला, तो आए उन्होंने सब जमाया सब काम,
1: हाँ,
0: और मिलने आए तो उनको लगा मैं बहुत अकड़ू टाइप की हूँ। और मुझे मालूम नहीं क्या ऐसा किया होगा मैंने
1: जी।
0: तो एक बार मिले, उसके बाद दूसरी बार मिले मैं पहचानने से इनकार कर दिया मैंने, इनकार मतलब जानबूझ के नहीं, मेरी दाढ़ी रखी होगी शायद उसलिए। फिर तीसरी बार मिले जब साइन करा चुके थे, चौथी बार मिले अरुण गोयल के दोस्त थे, तो अरुण ने कहा ये राजू, वो देखे जा रहे हैं मेरी तरफ, तो मैंने कहा कि अच्छा, तो बोले अरे साइनिंग अमाउंट लेके भी नहीं पहचान रही हो। मैंने कहा ओ गॉड, क्योंकि आप कभी चश्मा पहन के आ जाते हैं, कभी दाढ़ी रख के आ जा, इनको इतना गुस्सा है, बोले शादी करके बताता हूँ इसको, कैसे नाम नहीं याद रहेगा।
1: नाम याद कराने के लिए शादी कर ली।
0: शादी कर ली, बताइए अब। हालांकि बहुत दंगे फसाद हुए, 5 साल तक हम लोग की चल रहा था अफेयर,
1: हाँ,
0: और मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे।

0: अच्छा
1: फिर
0: मेरी वही लड़की हीरोइन चाहिए थी, लेकिन उसके साथ शादी नहीं करानी थी।
1: होता है ना दिमाग में, शादी फिल्म लाइन की लड़की है, ऊपर से तुम उसको घर ले आओगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। लेकिन 5 साल के बाद जब वो माने तो बहुत अच्छे से माने। फिर
0: मैं जानना चाहती हूँ एक कोई गीत जो आप अपने सफेद घोड़े पे आए हुए चश्मे वाले दाढ़ी वाले

0: अब हम लोग उत्तर प्रदेश की फिल्म में जो आपने किए हैं यूपी की भोजपुरी फिल्म है उनके बारे में चर्चा करेंगे।
1: भोजपुरी फिल्म तो एक ही शायद मैंने की है,
0: वो वाली की है ना, गंगा मैया तो है।
1: ये तो मेरे फादर इन लॉ की फिल्म थी, पायनियर थे वो
0: जी,
1: और ये फिल्म उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, सब इनकी एक दोस्ती थी, बोला भोजपुरी बड़ी खूबसूरत लगती है सुनने में, क्यों ना इस एक फिल्म बनाई जाए। तो ये चले आए मेरे फादर इन लॉ बक्सा उठा के, और वहीं जहाँ दादर उतरे सामने ही वहाँ पे एक होटल है जहाँ पे सब स्टार वगैरह आते थे, वहाँ वो मिले नासिर साहब से, नासिर हुसैन जो जिन्होंने फिल्म, और उन्होंने स्टोरी सुनाई और उनको साइन भी कर लिया। कुमकुम जी मदर इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में फंसी हुई थी, उनको संभाल के निकाला और फिल्म बनाई गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई वो
0: जी,
1: जो कि ब्लॉकबस्टर आज भी ब्लॉकबस्टर है। तो उसको मेरे फादर इन लॉ को ट्रिब्यूट देने के लिए एक और फिल्म बनाई मेरे हस्बैंड ने, जबकि वो चले गए इस दुनिया से
0: जी,
1: गंगा जैसन पावन प्रीतिया हमार।
0: अच्छा,
1: तो उसमें मैंने काम किया
0: जी,
1: क्योंकि उस वक्त शायद कोई और रेडी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा घर में बैठी है चलो इसको
0: इतना लाइटली तो नहीं लिया होगा।
1: बहुत अच्छी फिल्म बनी
0: जी,
1: लेकिन
0: जी, बहुत प्यारी है।
1: हाँ, वो
0: बहुत अच्छी फिल्म जी। एक प्रश्न और मन में आ रहा है, पंजाबी सिकड़ी लड़की सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की भाषा बोलने लगती है, मतलब सीधे ओ चंदन लाइक जो वहाँ की भाषा है उस भाषा में आ जाती, ये जो भाषा का बदलाव है इसको करने में तो तकलीफ हुई होगी?
1: बिल्कुल भी नहीं, मैं बनारस में की पैदाइश हूँ।
0: अच्छा
1: हमें अपनी जो बाइयाँ आती थी उन सबसे तो
0: मतलब अब वो चाट और लस्सी खाते पीते
1: हाँ
0: जी,
1: क्योंकि आज तक हम लोग बहन भाई हिंदी में बात करते हैं।
0: अच्छा।
1: सिर्फ मम्मी डैडी से पंजाबी सीखी मैंने।
0: अच्छा,
1: कि मुझे आनी चाहिए क्योंकि बनारस में ये मतलब आपस में मेरे भाई लोग दोनों पगड़ी बांध के और भोजपुरी में बात करते थे तो वो विजुअली बड़ा अजीब सा लगता था कि अरे
0: सरदार खड़े हैं और
1: तो हमारा पंजाबी एक्सेंट है ही नहीं।
0: अच्छा,
1: हाँ हम लोग जो बनारसी भाषा है और इलाहाबादी
0: जी,
1: हाँ ये काफी फर्क है
0: जी।
1: तो हमने सिर्फ जैसे उनको बोलिए अगर राजबाबू तो बहुत गुस्सा हो जाते थे कि ये भोजपुरी फिल्म नहीं है, अगर लगान दिखा रहे हो आप, बैकड्रॉप है आपका गांव वाला, मतलब कि भोजपुरी फिल्म हो गई क्या?
0: अच्छा,
1: ऐसा था।
0: आपने जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया और अभी हमें टीवी सीरियल्स के बारे में ही बात करनी है, तो उसके पहले मैं चाहती हूँ जो फिल्मों की हम बात कर रहे थे उसमें नदिया के पार बड़ी खूबसूरत सी फिल्म है, और उसका जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा गीत साधना जी को, गुंजा को, कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है वो गीत हम सुनाना चाहेंगे?
1: देखिए कौन दिशा में तो सब गाते हैं
0: जी,
1: बट मेरे सामने पहली रिकॉर्डिंग हुई थी गुंजारे चंदन चंदन, तो एक वो इतनी रोमांटिक थी ना धुन उसकी
0: जी,
1: और दोनों का जो एक प्यार था उस फिल्म में कैसे दिखाया गया था और थोड़ा अलग था, चंदन चंदन ऐसा
0: बहुत अच्छा।
1: तो मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है।
0: रिकॉर्डिंग के समय आप थे क्या इसकी?
1: हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग में थे मैं।
0: रविंद्र जैन वहाँ पे उसका डायरेक्शन कर रहे होंगे, गाया जा रहा होगा। कैसा कैसा एम्बियंस था, कैसा लग रहा था सुनते?
1: बहुत अच्छा लग रहा था मुझे क्योंकि वो गाना है ही अच्छा, अगर आप
0: जी बहुत खूबसूरत गीत है
1: और मैं करने वाली हूँ तो वो भी एक्साइटमेंट था, और हर रिकॉर्डिंग में थी मैं, लेकिन ये कुछ अलग इसने असर किया मुझे।

0: आपकी पसंद का गीत तो हमने सुना दिया, लेकिन जब सुनाया है तो हमारे यहाँ कहते हैं ना रिटर्न गिफ्ट मिलती है, तो एक रिटर्न गिफ्ट लेना चाहेंगे कि ये गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस समय आपको कैसा लग रहा था, यानी क्या देखा आपने उस समय जब आप पहली बार स्टूडियो गई होंगी शायद?
1: हाँ, बस माहौल देखा, माहौल कमाल का होता है क्योंकि

0: और लगता सुनते ही रहो आप, चलते रहे ये म्यूजिक, क्योंकि कैसे बैठ के डिस्कस करना, और हेमलता जी थी
1: जी,
0: और कैसे वो लाइव गाना देखना, और सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे साथ में,
1: एक साथ
0: एक साथ,
1: बहुत बड़े कमरे में।
0: बहुत बड़ा कमरा तो नहीं था, फेमस में हुआ था।
1: अच्छा, फेमस स्टूडियो।
0: बट जितना था सब भरा हुआ था, और उसकी जो ऊर्जा होती है ना, वो आपको अलग महसूस कराती है। एकदम लग रहा था मैं हवा में उड़ रही हूँ, अब ये गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज होगा। तो ये बड़ी कमाल की चीज है।
1: वहाँ पे रविंद्र जैन जी भी संगीतकार की तरह विराजमान होंगे
0: भैया। मैं तो प्रणाम करती हूँ, ऐसा आदमी मैं सच्ची में सोच नहीं सकती हूँ कि दादा को एक गाना नहीं पसंद आ रहा था। उन्होंने ऑन द स्पॉट 30 गाने सुना है,
1: 30 गाने,
0: 30 गाने में, और सुना रहे थे ये पसंद है नहीं है, अच्छा और ये, और वर्ड्स उसी टाइम लगा रहे थे, ये नहीं कि लिखे हुए गाने पढ़ रहे थे, वो बनाते थे उसी टाइम स्पॉट पे। अच्छा ये वाला ठीक लग रहा है, अच्छा छोड़ी छोड़ी नहीं लग रहा ना, ये अच्छा लग रहा है। साधना तुमको भी, मुझे भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी यू नो
1: जी,
0: तो मुझे तो लगता था ये आदमी इतना गुणी, इतना गुणी, माई गॉड। उसका म्यूजिक भी बना लेते थे,
1: शब्द भी लिख लेते थे
0: एक सेकंड में।
1: 30 गाने एक समय पे,
0: 32 होंगे 30 होंगे मुझे इतना याद नहीं, लेकिन चलते जा रहा था इन लोग का
1: लगातार।
0: दादा कह रहे हैं नहीं अब एक और सुना दीजिए, तो अच्छा अच्छा ये वर्ड्स इधर डाल, शुरू कर दिया। तो उनसे
1: और कहीं लिखा नहीं जा रहा क्योंकि देख नहीं सकते तो लिखते नहीं है।
0: उसके बाद फिर हम लोग के बहुत सारे टूर हुए, जिसमें राज बाबू, राजकुमार बड़जात्या जी, उनकी वाइफ सुधा भाभी, और रविंद्र जैन जी और उनकी वाइफ, और मैं, और सचिन, हम लोगों ने बहुत शोज किए। तब उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल गायब हो यहाँ से, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम गाना गाती हो, मैं तुमसे गवाता।
1: ये रविंद्र जी
0: हाँ,
1: ने कहा से,
0: क्योंकि
1: जी।
0: उनके साथ जितने टूर होते थे सबको लगता था मैंने ही गाया फिल्म में, तो बहुत प्यार देते थे, और बहुत बहुत बहुत इज्जत और बहुत प्यार
1: जी।
0: दादू,
1: और जब
0: दादू
1: टूर करने जाते थे तब क्या एक्सपीरियंस होता था स्टेज पे, जो उनके लाइव शोज होते होंगे वो?
0: हाँ,
1: आनंद ही अलग आता
0: हाँ,
1: होगा।
0: वो तो शेरनी थी मैं तब बस चलो कहाँ चलना है, बोलना है क्या बोलना है।
1: अच्छा,
0: तो आई थिंक वो अखड़पन में सब कुछ सीख गई।
1: हाँ,
0: अल्लड़पन कहते ना,
1: ये कह सकते हैं आपके माता पिता की परवरिश का असर था कि आपको उतनी स्वतंत्रता दी गई, मानसिक स्वतंत्रता दी गई बचपन से।
0: ये बात है, मेरे दोनों मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत उनको ये था कि जो भी करना है करो, बस उसके बाद का जो जो भी रिजल्ट है वो भी तैयार रहो, उसके लिए भी तैयार रहो।
1: अच्छा, खेलो कूदो, चोट लगे तो तैयार रहना,
0: हाँ,
1: लगेगी तो
0: लगे,
1: संभाल लेना।
0: हाँ।
1: बहुत बढ़िया बात है, इतना आनंद आ रहा है आपसे बात करते हुए, इतना नई रोचक जानकारियाँ मिल रही हैं। और उसके साथ में एक बात और, जो आपने सीरियल्स में काम किया है, जो टीवी के पर्दे पर काम किया है, उस तक पहुँचने का कुछ ऐसा जरिया था या आप चले गए ऐसे ही घूमते?
0: नहीं नहीं, बस एक दिन फोन आ गया मुझे, तो मैंने अपने ससुर को बोला, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि शायद वो परमिशन नहीं देंगे अब, क्योंकि इतने बड़े खानदान में लड़की आ गई, अब शूटिंग भी करेगी।
1: हाँ,
0: तो ये चारों तरफ से ना मुझे बता दिया गया था।
1: अच्छा,
0: नॉट फ्रॉम माय हस्बैंड, वो इंडल्ज ही नहीं किए इसमें। लेकिन जब ऐसा हुआ और मुझे लगा कॉमेडी मिल रहा है मुझे, तो मुझे करना है, तो मैंने फ़ोन कर लिया डायरेक्ट अपने फादर इन लॉ को, और बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा कि बाबा ऐसा ऐसा मुझे रोल आ रहा है, मैं कर लूँ? तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लो अगर अच्छा है तो।
1: अरे वाह,
0: लेकिन अच्छे अच्छे रोल करना जो भी। तो इन लोग को किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि बाबा ने बोल दिया, बाबा
1: एक
0: ने बोल
1: बार
0: दिया,
1: में बोल दिया।
0: तो मैंने कहा ऐसे हवा मत बना के रखो, तो
1: यानी आपको मायका भी सुंदर मिला, ससुराल भी अच्छा मिला, दोनों जगह।
0: सास ससुर तो बहुत अच्छे थे
1: जी,
0: तो जहाँ भी हैं बस खुश रहें
1: जी। बिल्कुल साधना जी, थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी आपके बेटे का, जो आपकी बदमाशियों से परेशान है। पर हम उसे कहना चाहेंगे कि भाई परेशान मत हो, यही बदमाशियों ने हमारे हम जाने कितने करोड़ों के चेहरों में कितनी बार मुस्कुराहट लाई है। तो आपके दो बच्चे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी अभिनय के जगत में है?
0: नहीं नहीं, मेरे बेटा तो बहुत दूर है।
1: अच्छा,
0: उसको फेमस नहीं होना है। वो बिल्कुल ही अलग सोचता है
1: जी।
0: और मेरी बेटी ने की है फिल्में,

0: तमिल में की हैं
1: जी,
0: उसको लॉन्च किया था सतीश कौशिक ने
1: जी,
0: अनुपम जी ने,
1: बहुत बढ़िया।
0: लेकिन बस वो तकदीर नहीं थी कि जब रिलीज हुई पिक्चर जिस थिएटर में लगी स्वाइन फ्लू की वजह से सारे थिएटर बंद हो गए, तो वो पिक्चर भी ऐसे ही ढह गई।
1: हाँ, तो उस समय वो चल,
0: फिर वो उसको मिला उधर काम, फिर एक टाइम के बाद चीजें हो जाती है ना कि उतना अच्छा किरदार नहीं मिल रहा है, आपने हीरोइन किया है तो वो अपनी लाइफ में अपना देख रही है, शोज करती है या टीवी वगैरह जो भी है, ऑडिशन वगैरह वो वैसे ही देती है जैसे और लोग देते हैं।
1: मतलब तो, उसमें साधना जी का हस्तक्षेप नहीं होता?
0: नहीं, मैं करती भी नहीं, क्योंकि
1: मेहनत करो अपनी।
0: हाँ, अपनी मेहनत करो,
1: ये बहुत अच्छी बात है।
0: क्योंकि अपने मैंने अपने लिए कभी किसी को बोला नहीं, तो बच्चे के लिए क्या बोलूंगी
1: जी। लेकिन आप जो चुलबुला किरदार है आपका, और जैसी आप हैं, और मैं इतने समय से आपको जान रही हूँ, तो मैं समझ रही हूँ कि आपके साथ बैठ के अगर 2 घंटे बैठ के बातें की जाए तो शायद मेरे ठहाके रुकेंगे नहीं। तो वो जो किरदार है, तो एक बार अगर आपको ऐसा सोचने का मौका मिले कि कुछ ऐसी फिल्म करनी है, तो क्या आप करेंगी?
0: बिल्कुल करूँगी, मुझे कॉमेडी करना है, मेरा वो साइड अब एक्सप्लोर हुआ ही नहीं।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो साजिद के साथ फिल्म की मैंने ना ये सुपर 30
1: जी,
0: तो उसको मैंने एक मैसेज भेजा है कि मुझे ना रोने धोने वाली माँ के लिए बुलाना नहीं तुम लोग मुझे जब बुलाना कॉमेडी को ही, अच्छा तो बोले 100%।
1: हाँ,
0: अब देखते हैं क्या होता है
1: जी बिल्कुल होगा, आपने कह दिया, सोच लिया।
0: हाँ,
1: और विविध भारती के परिसर में कई चीजें जो सोच ली जाती हैं वो पूरी हो जाती हैं, ऐसा
0: ऐसा
1: हम
0: है?
1: मान के चलते हैं। बिल्कुल, ये जगह बड़ी
0: हाँ,
1: बड़े पवित्र लोग यहाँ
0: हाँ,
1: पर आए हैं।
0: हाँ,
1: आप जानते हैं कि यहाँ पर
0: हाँ,
1: अभी आप तस्वीरें देखते
0: हाँ,
1: हुए आ रहे थे, तो बड़े बड़े किरदार आए हैं, तो ऊर्जा बड़ी अद्भुत है यहाँ की।
0: हाँ, लेकिन एक चीज बता रही हूँ मैं
1: जी,
0: कि ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ सिर्फ मतलब बेड ऑफ रोजेस बोलते हैं ना, बहुत बहुत तकलीफें आई और बहुत ऊंच नीच भी हुई और ट्रॉमाज हुए हैं लाइफ के, बहुत सारी चीजें हुई हैं। बस मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि मैं थोड़े टाइम के बाद अपने आप हैप्पीनेस की तरफ चली जाती हूँ,
1: ऊर्जा सकारात्मक।
0: हाँ, वो मैं नहीं रख सकती इतना, क्योंकि मुझे लगता है क्राइम है खुद को दुख देना, दे के रहना या अपने पे तरस खा के रहना, क्योंकि आप सबको सब होता है, मुझे और औरतों की तरह ऐसा नहीं है,
1: हाँ,
0: लेकिन मैं सबको बताती भी नहीं हूँ।

0: मुझे लगता है कि एक ऐसा फेज भी आया लाइफ में कि मुझे लगा मैं जीऊं या मर जाऊं। हाँ, मतलब इतनी सीवियरिटी वाली चीज़ें हुई कि मुझे
1: समस्या
0: ऐसा
1: थी
0: लगा
1: जीवन
0: कि मुझे जीना मतलब नहीं है इस टाइम, नेक्स्ट स्टेप ये होगा बेटर कि मेरी सांस ही ना आए।
1: में।
0: लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या मुझे लोग ऐसा देखेंगे, क्या मुझे जानते हैं मेरी हंसी के लिए, मेरी खुशी के लिए, तो मैं कुछ तो अच्छा करके जाऊं। और
1: क्या
0: फिर मैं बाउंस बैक मैंने किया था,
1: बात है।
0: और तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ये तरीका अच्छा है कि मैं खुश रहूं, खुश दिखूं, खुश बोलूं, और एटमॉस्फेयर अपने आप ठीक होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा।
1: बहुत अच्छी बातें हमको सुनने मिल रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है साधना जी। और इस
0: थैंक यू।
1: अच्छाई के बीच में अगर वो शुरुआत वाली अच्छाई आप पूरी कर दें, हमारा एक गाना जो है, तो क्योंकि रविंद्र जैन जी जब कह गए कि तुमसे ही गवा लेते, तो हम भी चाहते हैं विविध भारती में आई हैं तो कुछ गाने हम भी
0: मैं
1: सुन
0: एक
1: लें
0: कोशिश करती हूँ।
1: जी।
0: चलिए, मैं आपको आज ये भी बताती हूँ कि मैं रफ़ी साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ।
1: आह
0: वो मतलब मेरे लिए भगवान भी हैं, सब कुछ है।
1: जी
0: मुझे लगता है मैंने रोमांस, दर्द, दुख जो भी है उनकी आवाज़ से सीखा है।
1: जी
0: उनका ही गाना गा देती हूँ।
1: जी

पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छांव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक

0: और अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं और शायद मुझे लगता है कि अभी अगर 2 घंटे और बात की जाए तो साधना जी की कहानी पूरी नहीं होगी, पर हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे जो नए नए बच्चे अभिनय के क्षेत्र में आ रहे हैं और बाकी हम जो महिलाएं, इन सब के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो।
1: तो बच्चे तो आजकल के बच्चे हैं कि क्या बच्चे, आई डोंट नो, क्या उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगी मैं।
0: जी
1: जो बोलना चाह रहे हैं वो रोज आता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। और मुझे लगता है कि जिंदगी में जैसे हेल्थ हेल्थ ऐसी चीज है जिसपे औरतों का बहुत कम
0: ध्यान
1: ये
0: होता है।
1: ख्याल होता है, क्योंकि उसको लगता है बेटे को भी बादाम खिला दूं, उसको भी खिला

0: दो, उसको भी खिलाओ, बचेगा तो देखती हूँ अपने लिए।
1: और बचता कभी नहीं,
0: बचता भी नहीं है और कभी क्रेप भी नहीं करती हूँ माए
1: जी।
0: लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए तो ही आप सबको समेट पाएंगी, ऐसी सिचुएशन को फेस कर पाएंगी जो आती है कभी कभी। कर्मा है ना, वो तो छोड़ेगा नहीं। और अपनी सेहत पे ध्यान दें। 50 में औरतें सोचती हैं हम लोग तो जिंदगी खत्म हो गई
1: जी।
0: तो वो जिंदगी शुरू होती है उस वक्त, क्योंकि हाँ। आप सारी जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं। और उस उम्र में औरत सुंदर भी सबसे ज्यादा लगती है, लेकिन उसको एहसास नहीं है।
1: हाँ।
0: तो अपने आप को देखें, अच्छी चीजें देखें, पहनें। पहनने से मुझे याद आया, मैंने ब्रांड भी शुरू किया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, एक कच्चे धागे करके।
1: अच्छा।
0: और साड़ियाँ, वीव्स वगैरह, मैं चाहती हूँ सब खुश अच्छे से सज धज के रहें। औरतों का काम है ये, ड्यूटी है उनका, मतलब राइट बनता है कि सिर्फ खाना ही नहीं बनाए, अपने आप को भी बनाए। और अच्छी फिल्में देखें तो हम लोग अच्छी फिल्में करेंगे। मेरी एक फिल्म आ रही है कैसी है पहेली
1: जी,
0: वो जरूर आप लोग देखिएगा। उसमें माँ बेटे का है स्टोरी, माँ बेटे की।
1: अच्छा।
0: बहुत सारे उन फेस्टिवल में जा चुकी है
1: वाह,
0: और न्यूयॉर्क में तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। तो
1: क्या बात
0: मैं
1: है।
0: चाहती हूँ कि ये सब देखें।
1: फिल्म है कैसी है पहेली,
0: कैसी है पहेली,
1: जरूर से हम
0: हाँ
1: सभी विविध भारती परिवार जरूर इस फिल्म को देखेंगे, इतना हमें विश्वास है।
0: हाँ
1: और आगे आपके पास में बहुत सारी फिल्में आएं, वो चुलबुली वाली साधना सिंह हम जरूर देखना चाहते हैं, हमारा बड़ा मन है, क्योंकि हम हमारी उस वाली गुंजा को बड़ा मिस कर रहे हैं जो बड़ी बदमाशियां करती थी। सो हम वो देखना चाहते हैं उस किरदार में आपको। आप विविध भारती तक आई साधना जी, इतना सारा समय दिया, इतने प्रेम से समय दिया,
0: अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगता है, विविध भारती से कहीं ना कहीं आत्मा जुड़ी हुई है।
1: तो हमारे साथ आप बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए, नए नए किस्से जब कभी आए तो हमारे पास तक जरूर आते रहिए साधना जी। अच्छा लगता है विविध भारती में जब आप आते हैं, आप लोगों की ऊर्जा आती है, तो आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, प्रणाम।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बॉबी टॉकीज कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की ये बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

विविध भारती के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी हम कर रहे थे। FM 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये गर्जंडी, सिंघरा, भरदा, पलहड़ा, धर्मपुर, गौरा, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, कोटराही, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैन पार्ट में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये सकालो, किशुनपुर, गंगरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, उदरबसवार, केदमा, जगरनाथपुर, ढोढ़ा गांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, दातीढाप, गढ़गांव, बरडांड, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, तपकरा में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, रानी कोम्बो, कुंजारा, लोटापानी, मयूरचुंदी, बरटोली, खड़ामाचा, चट्टान पारा, महुआडी, खुटसेरा, पतेबहाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़ और कापू में हाथियों की कुल संख्या 90 है। ये आमगांव, पोटिया, ओंगना, चैनपुर, रुपुंगा, बोजिया, बनहर, औरानारा, बेहरा मार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कोदवारी, सलिहा भाटा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 41 है। ये छर्रा टांगर, बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राटरोड, झिंगोल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वनमंडल के बिलाईगढ़ में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये जोगीडीपा, सरगुली, धौराभाटा, कोलडीपा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये मुरुमडी, गुड़ागढ़, फुरफुंदी, दलदली, तालाझर, गौहा, बहरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडईपानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारीपानी, डूमरघाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में

0: रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार
2: दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
3: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट अभी आप सुन रहे थे। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र को। 5:05 हुए हैं, सुनिए कार्यक्रम विवरण। पॉप टाइम सुनेंगे 5:10 पर, 5:30 पर सुनेगा वनिता विहार, जिसमें आपस की बात का विषय रहेगा तंबाकू सेवन अनेक रोगों का कारक। चर्चा में सुनेंगे चिंता छोड़ो सपनों से नाता जोड़ो, और सुनेंगे फरमाइशी गीत। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे 6:20, 7:00, 8:30 पर। रात 10:00 सुनेंगे विविध संगीत, सूर्यामणि प्रस्तुत करेंगे रात्रि 10:30 पर। कार्यक्रम किसानवाड़ी का समय रहेगा 7:20 का। कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा फसलों के वृद्धि और विकास में बाधक खरपतवार। नसीहत में सुनेंगे न्यूनतम प्रीमियम अधिकतम सुरक्षा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। गैर फिल्मी गीत पेश करेंगे रात 8:20 पर।
4: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार

0: करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 14.7 मेगाहर्ट्ज पर। 5:10 हुए हैं। वक्त हो चला है कार्यक्रम पॉप टाइम का। विवा ग्रुप की आवाज़ों में आइए सुनते हैं इस गाने को, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने, धुन बनाई है सलीम सुलेमान ने।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें।

वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
5: संदेश पहले आप सुन रहे थे समीर के लिखे गाने को, आशमा ग्रुप की आवाजों में संगीत दिया था सलीम सुलेमान ने। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं विवा ग्रुप के आवाज में गीत को। विवा ग्रुप ने ही इसे लिखा है और धुन बनाई है।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: और कास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagad, यानी shrotarayagad@gmail.com।
3: विवा ग्रुप की आवाज में आप सुन रहे थे संदेश से पहले प्यारा सा गीत। इसके साथ ही पॉप टाइम कार्यक्रम अब समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 107 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से। 5:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं शहरी महिलाओं का कार्यक्रम वनिता विहार।

वनिता विहार सुन रही सभी श्रोता सखियों को सरिता का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नशा को नाश का द्वार कहा गया है। चाहे किसी भी प्रकार का नशा हो, नशापान से आत्मनियंत्रण की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है और सोचने समझने की क्षमता भी कम होती जाती है। फलस्वरूप अनेक प्रकार की बीमारियां शरीर में घर बना लेती हैं। बहनों, हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि तंबाकू सेवन अनेक रोगों का कारक है। आज के समय में तंबाकू का सेवन एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन चुका है, चाहे वह सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला या खैनी के रूप में हो। तंबाकू शरीर के लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचाता है। बहनों, तंबाकू का सेवन शरीर में कैंसर के खतरे को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तंबाकू का सेवन मुंह और गले के कैंसर का प्रमुख कारण है। तंबाकू चबाने से मुंह, जीभ और अन्य प्रणाली के कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है और इसके साथ ही साथ धूम्रपान करने वालों में फेफड़ा के कैंसर की आशंका भी 22 गुना ज़्यादा होती है और साथ ही साथ धूम्रपान करने से भी यह समस्या जो है और अधिक बढ़ती जाती है। बहनों, धूम्रपान करने से फेफड़ों की गंभीर बीमारी जो सांस लेने में तकलीफ पैदा करती है, यह परेशानी भी आती है जो टीबी जैसी संक्रामक बीमारियों को सक्रिय कर देती है। बहनों, तंबाकू का सेवन हमारे शरीर के हर अंग को नुकसान पहुंचाता है, जिसमें हमारा हृदय भी शामिल है। धूम्रपान से आपकी आर्टरी में रुकावट और संकुचन हो सकता है, जिसका मतलब है आपके हृदय तक रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है। बहनों, तंबाकू के कारण दिल का दौरा, स्ट्रोक, कोरोनरी, धमनी रोग और ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। तंबाकू का सेवन हमारे मुंह और दांतों को कई प्रकार के रोगों से भी ग्रसित कर देता है। तंबाकू चबाने या धूम्रपान करने से मसूड़ों की बीमारी, दांतों का पीलापन और मुंह में छाले या सफ़ेद धब्बे भी हो सकते हैं और इसके साथ ही साथ तंबाकू के सेवन से अल्सर, एसिडिटी और पेट के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए जहां तक हो सके तंबाकू के सेवन से दूर ही रहना चाहिए। बहनों, हम सभी यह अच्छी तरह जानते हैं कि तंबाकू में निकोटीन की मात्रा होती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यह एक उत्तेजक मादक पदार्थ है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और इसका इस्तेमाल खासकर खैनी और धूम्रपान के रूप में किया जाता है और दोनों ही विधि से कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी होने का खतरा बना रहता है। इसलिए धूम्रपान से हमें सदैव दूर रहना चाहिए और इसके साथ ही साथ बहनों, हमें परोक्ष धूम्रपान से भी बचना बेहद जरूरी है, यानी ऐसा धूम्रपान जिससे व्यक्ति खुद नहीं करता पर दूसरे द्वारा धूम्रपान किए गए उसके उड़ाए गए धुएं के घातक दुष्परिणामों को भोगने के लिए मजबूर होता है। बहनों, घर में यदि एक व्यक्ति भी धूम्रपान करता है तो वह घर के अन्य सदस्यों को भी समय से पहले मौत के करीब पहुंचा देता है, क्योंकि एक जलती हुई सिगरेट से निकलने वाले कुल धुएं का काफ़ी भाग धूम्रपान करने वाले के अंदर जाता है, लेकिन इसके बावजूद 66% धुआं हवा में घुलकर उसे धूम्रपान जितना ही जहरीला बना देता है। तो जाहिर है बहनों, घर के अन्य लोग इस धुएं से कैसे बच पाएंगे। बहनों, धूम्रपान करने वाला व्यक्ति धुएं के साथ जितना टार और निकोटीन लेता है उससे कहीं ज़्यादा टार व निकोटीन धुएं के साथ निकलकर हवा में पहुंचता है और इस धुएं में 5 गुना ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और कैडियम होते हैं। इसमें जहरीली गैस हाइड्रोजन साइनाइड होती है, जिसमें नुकसानदायक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है और यह फेफड़े व हृदय रोगों का मुख्य कारण होता है। बहनों, सिगरेट का धुआं सिर्फ धूम्रपान करने वाले को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह गर्भवती महिला और उसके अजन्मे बच्चे के लिए भी खतरनाक होता है। भले ही माँ धूम्रपान नहीं करती, लेकिन पिता के सिगरेट का धुआं माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह होता है। बहनों, कुछ धूम्रपान करने वालों की ऐसी भी सोच होती है कि यदि वे घर से बाहर निकलकर धूम्रपान करते हैं तो घर का वातावरण प्रदूषित नहीं होगा और इससे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। तो बहनों, यह ख्याल भी गलत है, क्योंकि धूम्रपान करने वाले की सांस में धूम्रपान करने का प्रभाव 24 घंटे बाद भी रहता है
और यह प्रभाव बच्चे के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। इसलिए बहनों, हमें न सिर्फ धूम्रपान से बचना चाहिए बल्कि परोक्ष धूम्रपान से भी बचना बेहद जरूरी है। बहनों, कल 31 मई के दिन को हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं और सन 1987 से इस दिवस को मनाते आ रहे हैं। हम सभी यह जानते हैं कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जुनून व संघर्ष के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों, धूम्रपान करने वालों, उत्पादकों और तंबाकू उद्योगों को इस दिवस में शामिल कर दिया गया है और हर वह जगह जो तंबाकू के इस्तेमाल से जुड़ा है उन सभी के लिए तंबाकू का इस्तेमाल कम करने के लिए प्रभावी नीति

नीतियां बनाई गई हैं, क्योंकि तंबाकू का उपयोग दुनिया भर में मौत का सबसे अपरिहार्य कारण है और वर्तमान में दुनिया भर में 10 में से 1 की मौत का कारण तंबाकू सेवन ही जिम्मेदार है। तो बहनों, क्यों ना हम संकल्प लें तंबाकू छोड़ने का। बहनों, तंबाकू सेवन एक बहुत बड़ी लत है और यह लत धीरे धीरे छूट सकता है, अचानक से नहीं छूटता है। हम इसे धीरे धीरे कम करते करते पूरा छोड़ सकते हैं और यदि कभी हमारा मन किया तो हम उसका एक विकल्प तैयार कर लें। जैसे उसके जगह पर हम रोस्ट किया हुआ सौंफ का उपयोग कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ मेथी, अजवाइन और काली जीरी और सौंफ, इस सब का हम एक मिक्सचर बना लें और उसको हल्का रोस्ट कर हम इसका सेवन भी कर सकते हैं। इससे एक तो तंबाकू सेवन की लत छूट जाएगी और हमारा पाचन क्रिया भी ठीक रहेगा और साथ ही साथ एसिडिटी की शिकायत भी दूर हो जाएगी। यदि आज हम सब मिलकर यह दृढ़ संकल्प लें तो आसानी से तंबाकू सेवन छोड़ सकते हैं। बहनों, कल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, तो आज से हम यह संकल्प लें तंबाकू छोड़ने का और इसके इस संकल्प के साथ ही साथ इस दिवस को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग करें। तो इस चर्चा के बाद बहनों, चलते हैं अब अपने अगले क्रम की ओर और आज है महीने का 5वां शनिवार और क्रम है आपकी फरमाइश के गीतों का। तो बहुत बहुत स्वागत है बहनों आपका इस क्रम में। बहनों, आपकी फरमाइश क्रम में पत्रों की श्रृंखला में मैंने पहला पत्र लिया है जुनवानी दुर्ग छत्तीसगढ़ से और पत्र भेजने वाले हैं श्रीमती तारा विद्या साहू, रोहिणी डागेश्वरी साहू, छविता पूनम साहू और इसके साथ ही साथ छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा यादव, अनुराधा, अल्पना यादव, छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ यादव, रानू, खुशी, प्रवीण साहू और पी एल यादव। और आप लोगों ने गीत की फरमाइश की है फिल्म मैंने प्यार किया से। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

बहनों, अभी अभी आपने गीत सुना फिल्म मैंने प्यार किया से, जिसमें स्वर दिया था लता मंगेशकर जी ने और गीतकार थे देव कोहली और संगीत से सजाया था राम लक्ष्मण ने। इसके बाद बहनों, अपने समय में, आज के समय में अपने सपनों को सच करने के लिए प्रेजेंट में जीना और सकारात्मक कदम उठाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि चिंता एक ऐसी दीमक है जो हमारी आज की एनर्जी और कल की खुशियों को खा जाती है। इसलिए पास्ट की चिंता को छोड़ करके हमें अपना रिश्ता अपने सपनों से जोड़ना चाहिए और फ्यूचर में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए अपने सपनों को सच करने के लिए वर्तमान में जीना व सकारात्मक कदम उठाना बेहद ज़रूरी है। बहनों, किसी भी बड़े काम की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है, इसलिए अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। और इसके साथ ही साथ क्या होगा, कैसे होगा, कि जगह क्या कर सकती हूँ, आगे क्या करना है, इस पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। बहनों, अपने सपनों को पूरा करने के लिए ज़रूरी स्किल्स सीखें कि हम किस तरह से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और सबसे पहले आप यह तय करें कि आप वास्तव में क्या करना चाहती हैं। अपनी रुचियां, जैसे शिक्षा या कोई तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, या फिर कोई व्यवसाय करना चाहती हैं, या कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, इन सारी चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए और उसके बाद आप खुद चॉइस कीजिए कि आप क्या करना चाहती हैं। बहनों, अपना खुद का काम शुरू करने के लिए फाइनेंशियल स्ट्रांग होना भी बेहद ज़रूरी है। इसके लिए आप सरकार के द्वारा महिलाओं को आर्थिक मदद के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है, उससे भी आप लाभ उठा सकती हैं, जैसे मुद्रा लोन योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। इस तरह की योजनाओं का लाभ उठाकर आप आर्थिक रूप से मजबूत हो सकती हैं। और इसके साथ ही साथ अपने परिवार, अपने दोस्तों और जो आपकी भावनाओं और विचारों को समझती हैं, सपोर्ट करती हैं, वैसे लोगों के साथ में रहें जो आपको प्रोत्साहित करें। बहनों, हर बड़ा बदलाव एक छोटे से विचार से शुरू होता है, इसलिए अपनी चिंताओं को आत्मविश्वास में बदलें और आज ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे कदम उठाएं। बहनों, कल की चिंता में आज का समय बर्बाद न करें, क्योंकि जो बीत गया वह आपके हाथ में नहीं है। इसलिए जो पास्ट में जो हो गया उसके बारे में चिंता कर आज का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका आज आपके हाथ में है, उसमें फोकस करें। और साथ ही साथ ऐसे लोगों और ऐसे विचारों से दूर रहें जो आपको हतोत्साहित करते हैं। और किसी भी काम की शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ी असफलता मिले, लेकिन उससे डरने के बजाय उन्हें सीखने का एक नया अवसर मानकर चलें, तो देखिएगा एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो इस तरह से बहनों, पास्ट में जो हो गया उसके बारे में कोई भी चिंता नहीं करनी है, आने वाले समय में क्या होगा उसका भी कोई चिंता नहीं करना है, बल्कि आज अपने प्रेजेंट को देखना है और फ्यूचर के बारे में सोचना है, कुछ अच्छा करना है और अच्छा बन के दिखाना है। तो इस छोटी सी चर्चा के बाद बहनों, चलते हैं पत्रों की अगली श्रृंखला की ओर। और अगला पत्र हमने लिया है श्री झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ से, और पत्र भेजने वाले हैं लक्ष्मण वाधवानी, श्रीमती विमला वाधवानी, मास्टर हर्ष, खुशी और शुभम वाधवानी, कन्हैया लाल और श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, श्रीमती माही डोंडवानी, पूजा कविता छुटकी डोंडवानी। और आप लोगों ने गीत की फरमाइश की है फिल्म याराना से, तो आइए सुनते हैं फिल्म याराना से आपकी पसंद का ये गीत।

बहनों, अभी अभी आपने गीत सुना फिल्म याराना से, जिसमें स्वर दिया था किशोर कुमार जी ने, गीतकार थे अनजान और संगीत से सजाया था राजेश रोशन ने। बहनों, पत्रों की श्रृंखला में अब हमने अगला पत्र लिया है गांव गणेश धाम धरसूली से और खेरथा बाजार तहसील डोंडी लोहारा जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। और पत्र भेजने वाले हैं मोतीमबाई मानिकपुरी, धनवंतीनबाई, योगिताबाई मानिकपुरी और इसके साथ ही साथ विमला, हर्ष, खुशी, मास्टर, शुभम और इसमें मालती निषाद, पार्वती निषाद, अनमोल निषाद, मीनू, सुनीता, संतोष। और आप लोगों ने गीत की फरमाइश की है फिल्म दीवाना से, तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: बहनों, अभी अभी आपने गीत सुना फिल्म दीवाना से, जिसमें स्वर दिया था कुमार सानू और अलका याग्निक ने, गीतकार थे समीर और संगीत से सजाया था नदीम श्रवण ने। बहनों, समय हो गया है अब आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम के अगले किसी कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ संध्या।
1: शहरी महिलाओं का कार्यक्रम वनिता विहार अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे हिंदी में समाचार।

0: ये आकाशवाणी है, अब आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ नाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए, जहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने केरलम में मादक पदार्थों के खिलाफ समन्वित अभियान के अंतर्गत 24 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। चक्रव्यूह अभियान के अंतर्गत कोच्चि, मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम में मेथक्वालोन, मेथमफेटामाइन और हशीश का तेल सहित कई मादक पदार्थ जब्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल पर किया जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ से उंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: .7 MHz पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 6:05 हुए हैं, सुनिए कार्यक्रम विवरण। किसान वाणी लेकर आएंगे 7:20 पर, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा फसलों के वृद्धि और विकास में बाधक खरपतवार। नसीहत के अंतर्गत सुनेंगे न्यूनतम प्रीमियम अधिकतम सुरक्षा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। गैर फिल्मी गीत 8:20 पर सुनेंगे। रात 10 होगा विविध संगीत। 10:30 पर आपको सुनवाएंगे सूर्यामिनी। कल सुबह 6:05 पर चिंतन सुनेंगे वंदना। 6:10 पर होगा कृषि चर्चा का समय रहेगा 6:30 का। रामचरितमानस के संगीत में प्रस्तुति सुबह 6:40 पर होगी। देशगान सुनेंगे 6:50 पर। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे 7:10 पर। चित्रपट संगीत सुनेंगे 7:30 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर होगा 7:50 पर। बाल सभा हमारे केंद्र से सुनेंगे सुबह 8:30 पर। सुगम संगीत का समय रहेगा 10:10 का। 10:30 पर आपकी फरमाइश लेकर आएंगे। 11:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश की जनता के नाम संबोधन कार्यक्रम मन की बात। मन की बात कार्यक्रम का छत्तीसगढ़ी संस्करण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे 11:30 पर। कल शाम 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट सुनेंगे। भजन संध्या प्रस्तुत करेंगे 5:10 पर। जिले की चिट्ठी 6:05 पर। कार्यक्रम कानून की बात 6:30 पर। रात 8:00 मन की बात कार्यक्रम का छत्तीसगढ़ी संस्करण आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। चौपाल होगा 7:20 पर।

जिसमें चर्चा का विषय रहेगा कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगेती खेती से बढ़ाए आमदनी। नशियत में सुनेंगे प्रमाणित बीज उत्पादन अधिक आय का साधन। सूर्यामिनी 10:30 पर सुनेंगे फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे 6:20, 7:00, 8:30 और रात 10:00।

0: AIR at 90. ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: संदेश पहले आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है 107 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:10 होने वाले हैं, कुछ ही पल में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।

0: रायपाली केंद्र है। 6:10 हुए हैं, अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग वसुधा सेन के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव पर आज रतिहा थम जही प्रचार। परम दिन 1 जून के हो ही मतदान। छत्तीसगढ़ में चलत जनगणना के पहलिया चरण के आज आखिरी दिन हरय। और हिंदी पत्रकारिता के 200 बच्छर पूरा होए के उपलक्ष्य में रायपुर प्रेस क्लब डहर ले आज राजधानी रायपुर में पत्रकारिता गौरव मार्तंड उत्सव के आयोजन करेगी। अब समाचार विस्तार ले। प्रदेश में नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उपचुनाव के तहत 1 जून के मतदान होही। ये चुनाव मनबर प्रचार के आज आखिरी दिन हरय। आज रतिहा 12 बजे ले प्रचार थम जही। एकर बाद प्रत्याशी मन घर घर जाके संपर्क करही। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग डहार ले देगे जानकारी के अनुसार नगरी निकाय मनमा कुल 240 और त्रिस्तरीय पंचायत मनमा कुल 392 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत नाम वापसी के प्रक्रिया पूरा होए के बाद पंच के 640 पद पर निर्विरोध निर्वाचन हो गए रहिस। उन्हें सरपंच के 15 पद पर निर्विरोध निर्वाचन संपन्न होए है। शेष 34 पद पर मतदान होही। इसने जनपद सदस्य के 10 पद पर 1 जून के मतदान होही। नगरी निकाय चुनाव के तहत पार्षद के कुल 71 और अध्यक्ष पद के 5 स्थान पर मतदान होही। नगरी निकाय चुनाव पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के माध्यम ले और पंचायत चुनाव पर मत पेटी के

0: सरकारी रिकॉर्ड के हिस्सा बनत हे। आज आखिरी दिन शेष बाचे घर मन म जाके प्रगणक मन ह आंकड़ा अपडेट करीन। जनगणना के दुसरैया चरण अवैया बच्छर 1 फरवरी ले शुरू होही। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस हरे। बच्छर 1826 में आजे के दिन हिंदी भाषा के पहलैया समाचार पत्र उदंत मारतंड प्रकाशित हो रहीस। हिंदी पत्रकारिता के 200 बच्छर पूरा होए के उपलक्ष्य में रायपुर प्रेस क्लब डहरले आज राजधानी रायपुर में पत्रकारिता गौरव मारतंड उत्सव के आयोजन करेगीस। ये कार्यक्रम के शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ह करीन। समारोह ला संबोधित करत हुए मुख्यमंत्री ह कहिन कि मीडिया के सकारात्मक आलोचना केवल व्यक्ति ला ही नहीं बल्कि प्रशासन और सरकार लघलो आत्ममंथन और बेहतर कार्य के दिशा प्रदान करते। उमन कहिन कि पत्रकारिता ह राष्ट्र निर्माण और सामाजिक परिवर्तन में ऐतिहासिक भूमिका निभाए है। कार्यक्रम ला वित्त मंत्री ओपी चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार के जी सुरेश घलो संबोधित करीन। अतिथि मन के स्वागत रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी ह करीन। ये मौका में मुख्यमंत्री ह पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देवैया वरिष्ठ पत्रकार मन ला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ले सम्मानित करीन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ह कहिन है कि उखर पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून ले सक्रिय हो जही। आवेदन करे के इच्छुक विद्यार्थी मन के उत्तर पुस्तिका मन के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करे बर ए पोर्टल शुरू करे जात है। एखर ले मूल्यांकन के सर्वोच्च मानदंड स्थापित होही। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विद्यार्थी उत्कृष्ट योजना के तहत चालू शैक्षणिक सत्र में कक्षा 6वीं में प्रवेश पर 26 जुलाई के आयोजित होवैया लिखित परीक्षा ला स्थगित कर दी गई है। सिख धर्म के 5वां गुरु श्री अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के मौका में गुरुद्वारा मां शबद कीर्तन के आयोजन करे जाते। एकरे संग राहगीर मल्ला भीषण गर्मी में शरबत पिला के गुरु के बलिदान के स्मरण करे जाते। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरु श्री अर्जुन देव जी के शहादत दिवस में उनला भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करें। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा था छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बाढ़ बाती समाचार कोती। राज्य सरकार हा चालू वित्तीय बच्छर मा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश के सब्बो जिला मल्ला 2,677 करोड़ रुपया ले ज्यादा के केंद्रीय और राज्यांश राशि जारी करे है। ये राशि SNA स्पर्श मॉड्यूल के माध्यम ले जिला मल्ला आबंटित करे गए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में हर दिन 1600 ले ज्यादा पक्का आवास के निर्माण करे जाते। उमन बतैन की पाछू ढाई बच्छर में 1,60,000 ले ज्यादा आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं। राज्यपाल रमन डेका आज लोक भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिया गरियाबंद जिला के अधिकारी मन के बैठका लीन। बैठका में उमन स्वास्थ्य शिक्षा स्वच्छता जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन समेत अलग अलग विषय मन ऊपर चर्चा करत हुए अधिकारी मल्ला जन प्रतिनिधि मन के सहयोग ले विकास कार्य मल्ला प्रभावी ढंग ले संपादित करे ऊपर जोर दीन। राज्यपाल ह रेत के अवैध खनन ऊपर रोक लगाए और वैज्ञानिक और व्यवस्थित खनन व्यवस्था सुनिश्चित करे बर घलो कहिन। उमन कहिन कि किसान मल्ला प्राकृतिक खेती और हाइड्रोपोनिक्स खेती अपनाए बर प्रोत्साहित करे जाए। प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण ले सम्मानित तिजन बाई के तबियत बिगड़े के बाद उल्ला हाल ही में एम्स रायपुर में भर्ती कराए गए है। चिकित्सक मन बतैन कि उखर स्वास्थ्य में सुधार हुआ थे। डॉक्टर मन के टीम लगातार उखर स्थिति ऊपर नजर रखे हुए है। तिजन बाई के अस्वस्थ होए के सूचना मिले के ऊपर संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल हा दूरभाष में तिजन बाई के परिजन मल्ले बातचीत कर उखर हाल चाल जानी। ये दौरान उमन भरोसा दिलाइन कि राज्य शासन तिजन बाई के चिकित्सा और जरूरी सहायता पर पूरा संवेदनशीलता के संग खड़े हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और NHM के अधिकारी

0: अधिकारी अउ कर्मचारी मन ल 6 लाख रूपया के निःशुल्क लाइफ टाइम इंश्योरेंस कवर मिलही। स्वास्थ्य विभाग ह एखर बारे में बैंक ऑफ इंडिया के संग MOU करे के अनुमति दे हे। ये सुविधा उन NHM अधिकारी मन ल मिलही जिखर वेतन खाता बैंक ऑफ इंडिया में संचालित हे। सामान्य मृत्यु के स्थिति में ये बीमा कवर प्रदान करे जाही। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ह कहिन हे कि ये पहल ले NHM के हजारों कर्मचारी मल्ला सामाजिक सुरक्षा के अतिरिक्त लाभ मिलही और उखर परिवार मल्ला आर्थिक संबल घलो मिलही। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय आम महोत्सव के आज दूसरा दिन हरय। महोत्सव के उद्घाटन काली राज्यपाल रमेन डेका करीन। ये मौका में मन कहिन कि छत्तीसगढ़ में आम उत्पादन और मैंगो टूरिज्म के अपार संभावना है। उमन किसान मल्ले पारंपरिक खेती के संगे संग आधुनिक तकनीक मल्ला अपनाए और आम के वैल्यू एडिशन ऊपर ध्यान दे के आह्वान करीन। ये मौका में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई है कहिन कि किसान मन के आय ला बढ़ाए में आम के खेती ह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकत है। महोत्सव में देश भर के 250 ले ज्यादा किस्म के आम प्रदर्शित करेंगे है। ये महोत्सव काली इतवार तक चलही। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर डहाल ले प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी के प्रसारण काली संझा 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। ये कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के आकाशवाणी के सबो केंद्र एके संग्रह रिले करही। ये बखत के अंक मा सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के संबंध मा जानकारी दे जाही। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घो फेर। नगरी निकाय और पंचायत चुनाव पर आज रथिया थम जही प्रचार। परंदिन 1 जून के हो ही मतदान। छत्तीसगढ़ में चलत जनगणना के पहलिया चरण के आज आखिरी दिन हरय। और हिंदी पत्रकारिता के 200 बच्छर पूरा होए के उपलक्ष्य में रायपुर प्रेस क्लब डहरले आज राजधानी रायपुर में पत्रकारिता गौरव मार्तंड उत्सव के आयोजन करेगी। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 107 MHz पर। 6:20 हुए हैं। वक्त हो चला है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति के गाए 2 मतवाले फिल्म के इस गाने को, जिसे लिखा है संतोष आनंद ने, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए।

0: मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
4: संदेश पहले आप सुन रहे थे नसीब फिल्म के गाने को कुमार सानू की आवाज में। गीतकार थे समीर, संगीतकार थे नदीम श्रवण। कार्यक्रम फिल्म संगीत में अब सुनिए खुशबू तुम्हारे प्यार के दिलवाले कभी न हारे फिल्म के गाने में कुमार सानू अलका याग्निक को। धुन बनाई है नदीम श्रवण ने, शब्द रचना है महेंद्र देहलवी के।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: श्रोताओं, संदेश से पहले आप सुन रहे थे सूरज फिल्म के गाने को। उदित नारायण साधना सरगम की आवाजों में आनंद मिलन ने धुन बनाई थी, समीर ने गीत लिखा था। इसके साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 6:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
7: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
6: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
7: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
6: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
7: क्यों?
6: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
8: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
9: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
10: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
9: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
10: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
9: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
10: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
8: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
11: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
10: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
11: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
10: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
11: आकाशवाणी से।
8: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
12: ये ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए आज रात थम जाएगा प्रचार, परसों 1 जून को होगा मतदान। छत्तीसगढ़ में चल रही जनगणना के पहले चरण का आज अंतिम दिन है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आज राजधानी में पत्रकारिता गौरव मार्तंड उत्सव का आयोजन किया गया। और प्रदेश में कोरबा, अंबिकापुर, गौरेला, पेंड्रा सहित अनेक स्थानों में मौसम में आया बदलाव, तेज हवा के साथ हुई बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत 1 जून को मतदान होगा। इन चुनावों के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज रात 12 बजे से प्रचार थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर संपर्क करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नगरीय निकायों में कुल 240 और त्रिस्तरीय पंचायतों में कुल 392 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंच के 640 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया था। इस तरह से 1 जून को 107 पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। वहीं सरपंच के 15 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन सम्पन्न हुआ है। शेष 34 पदों पर मतदान होगा। इसी तरह जनपद सदस्य के 10 पदों के लिए 1 जून को मतदान होगा। नगरीय निकाय चुनाव के तहत पार्षद के कुल 71 और अध्यक्ष पद के 5 स्थानों के लिए मतदान होगा। नगरीय निकाय चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के माध्यम से और पंचायत चुनाव के लिए मतपेटी के माध्यम से मत डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। छत्तीसगढ़ में चल रही जनगणना के पहले चरण का आज अंतिम दिन है। 1 मई से शुरू हुई जनगणना के पहले चरण का 92% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। प्रदेश में जनगणना के लिए 48,742 ब्लॉक बनाए गए थे। हर ब्लॉक में औसतन 165 मकान शामिल हैं। इसी आधार पर प्रदेश में 80 लाख से अधिक मकानों का आंकड़ा सामने आया है। इन मकानों का पूरा विवरण पहली बार डिजिटल रूप में सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहा है। आज अंतिम दिन शेष बचे घरों तक जाकर प्रगण को ने आंकड़े अपडेट किए। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष 1 फरवरी से शुरू होगा। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आज राजधानी रायपुर में पत्रकारिता गौरव मार्तंड उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया की सकारात्मक आलोचना केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि प्रशासन और सरकार को भी आत्ममंथन तथा बेहतर कार्य की दिशा प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता ने राष्ट्र निर्माण और सामाजिक परिवर्तन में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है।
13: रायपुर प्रेस क्लब का एक बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है और पूरे छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता जगत में एक नया आयाम स्थापित करेगा ये उत्सव और हमारे पत्रकारों के और अनुभव बढ़ेंगे और पत्रकारों को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिनका हम लोगों को मार्गदर्शन मिलते रहता है।
12: कार्यक्रम को वित्त मंत्री ओपी चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर केजी सुरेश ने भी संबोधित किया। अतिथियों का स्वागत रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले वरिष्ठ पत्रकारों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश के सभी जिलों को 2,677 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय और राज्यांश राशि जारी की है। ये राशि एसएनए स्पर्श मॉड्यूल के माध्यम से जिलों को आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में हर दिन 1600 से अधिक पक्के आवासों का निर्माण किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि यदि किसानों को खाद की कमी है और इस संबंध में शिकायत मिलती है तो केंद्र सरकार इस कमी को दूर करने का हर संभव प्रयास करेगी। आज भिलाई प्रवास के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि टिकाऊ कृषि के लिए प्राकृतिक खेती एक बेहतर विकल्प है। केंद्र सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि जिन राज्यों ने अभी तक कृषि रोडमैप तैयार नहीं किया है वहां इसे प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाना चाहिए। इससे कृषि क्षेत्र के कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने की दिशा में प्रभावी कार्य किया जा सकेगा।
14: हमारा तो प्रयास रहेगा कि यहाँ कृषि रोड मैप बने और यहाँ जो किसानों को असुविधा अगर है तो वो शिकायत करे, मैंने उन लोगों को खबर कर, और हम लोग प्रयास करेंगे किसानों को खाद की कमी न हो, हाँ उसके उसकी समस्याओं को दूर भगाने का भारत सरकार भरपूर प्रयास करेगी।
12: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। सिख धर्म के 5वें श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के अवसर पर गुरुद्वारों में शबद कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही राहगीरों को भीषण गर्मी में शरबत पिलाकर गुरु के बलिदान का स्मरण किया जाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहादत दिवस पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है।
15: आज उनके शहादत दिवस के अवसर पर सत-सत नमन करते हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और सिख समाज बहुत प्रारंभ से ही, जिनका देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है, बड़े वीर होते हैं, साहसी होते हैं, अनेकों उदाहरण हैं।
12: प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजनबाई की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें हाल ही में एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों ने बताया कि इनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए है। तीजनबाई के अस्वस्थ होने की सूचना मिलने पर संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने दूरभाष पर तीजनबाई के परिजनों से बातचीत कर उनका हाल चाल जाना। इस दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य शासन तीजनबाई की चिकित्सा और आवश्यक सहायता के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ा है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अंबिकापुर, कोरबा, गौरेला, पिंडरा मरवाही और कोंडागांव सहित कुछ जिलों में आज तेज हवा और अंधड़ के साथ बारिश होने के समाचार मिले हैं। कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड में ओलावृष्टि भी हुई है। वहीं कई स्थानों पर पेड़ और खंभे भी गिर गए हैं, जिसके कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। वहीं कोंडागांव जिले में भी तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। चिपावंड गांव में 2 दर्जन से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा लखनपुरी, बड़े सिलाटी और बड़े कनेरा में भी कुछ मकानों को नुकसान पहुंचने की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही नमी के कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव हो रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमन डेका ने आज लोकभवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरियाबंद जिले के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के सहयोग से विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से संपादित करने पर जोर दिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अधिकारियों और कर्मचारियों को 6 लाख रुपए का निःशुल्क लाइफ टर्म इंश्योरेंस कवर मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में बैंक ऑफ इंडिया के साथ MOU करने की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विद्यार्थी उत्कृष्ट योजना के तहत चालू शैक्षणिक सत्र में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए 26 जुलाई को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। जशपुर के खारीबहार गांव में कृषि विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई कर अवैध उर्वरक भंडारण का खुलासा किया है। जांच के दौरान एक मकान से 342 बोरी ऑर्गेनिक उर्वरक बरामद किया गया है। जांजगीर चांपा जिले के चांपा और पिसौद में कृषि विभाग ने खाद दुकानों से 2600 बोरी से अधिक खाद जब्त कर इन दुकानों को सील कर दिया है। और रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इन दिनों राष्ट्रीय आम महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए आज रात थम जाएगा प्रचार, परसों 1 जून को होगा मतदान। छत्तीसगढ़ में चल रही जनगणना के पहले चरण का आज अंतिम दिन है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आज राजधानी में पत्रकारिता गौरव मारतंड उत्सव का आयोजन किया गया और प्रदेश में कोरबा, अंबिकापुर, गौरेला, पेंड्रा सहित अनेक स्थानों में मौसम में आया बदलाव, तेज हवा के साथ हुई बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 7 बजे हैं, अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। पहला पहला प्यार फिल्म के नगमे को सुनिए पूर्णिमा और उदित नारायण की युगल आवाजों में। संगीत से सजाया है आनंद मिलिंद ने, गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के।

0: आकाशवाणी F90।
1: नमस्ते, मेरा नाम रीता देवांगन, मैं रायगढ़ विनोबा नगर 24 वार्ड से हूँ। मैं एक गृहिणी हूँ। गृहिणी होते हुए भी मेरा एक छोटा सा फैंसी स्टोर है, जो कि मैं फैंसी स्टोर चलाती हूँ। और सुबह से मैं दुकान चालू करती हूँ और रेडियो को भी उसी समय से मैं चालू कर देती हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई। रेडियो से हम अपना मनोरंजन करते हैं और जो भी हमारे ग्राहक आते हैं उनका भी दिल झूम उठता है रेडियो से। और प्रचार का रेडियो सूचना और प्रचार के माध्यम से हमें बहुत अच्छा लगता है। रेडियो से अनेकों जानकारियां मिलती है, मधुर मधुर गीतों से मन झूम उठता है। रेडियो से हम घर द्वार, युवावाणी, किसानवाणी सुनते हैं, भजन सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है। हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें को सीखने को भी मिलती है। किसानवाड़ी में खेती से संबंधित जानकारी पाते हैं। रेडियो से बच्चों, बूढ़े, युवा, युवती सभी का मनोरंजन झूम उठता है। आज हम सूचना क्रांति के माध्यम से मोबाइल में रेडियो का कोई भी कार्यक्रम सुन सकते हैं। रोज सवेरे हम आकाशवाणी के माध्यम से भक्ति गीत सुनते हैं। रेडियो सुनते सुनते हम अपना घर का पूरा काम भी कर सकते हैं और हमें बहुत आनंद मिलता है। बहुत प्रकार के जानकारी भी हमें रेडियो के माध्यम से सुनने को मिलता है। हमारे घर के सभी सदस्य रेडियो सुनकर अपना मनोरंजन करते हैं। बच्चे भी रेडियो में सुनते सुनते अपना पढ़ाई का काम भी कर सकते हैं। आकाशवाणी को बहुत बहुत बधाई हो जो हम रेडियो के माध्यम से हमें इतना अच्छा प्रचार करते हैं। धन्यवाद।
2: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से बोल रहे हैं। 7:20 हुए हैं, आइए सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।

कार्यक्रम भावे किसानवाड़ी और मैं हूँ आप मन के संगी छोटे लाल संगवारी हो। कार्यक्रम में आप जम्मू सिंह के स्वागत के संगे संग छोटे लाल के राम राम। शनिचर के दिन संगवारी हो और गोड बात करे बार हमन आप मन के बीच में उपस्थित हो गए हैं। कार्यक्रम में बने छन चर्चा करबो, ज्ञान के गोड बात करबो, प्रगतिशील किसान मन के गोड बात ला आप मन ला घलो हमन आज सुनाबो। तो सबले आगू संगवारी हो, आज के बात में हमन चर्चा करबो फसलों में वृद्धि और विकास में बाधक खरपतवार। आज के नसीहत में न्यूनतम प्रीमियम अधिकतम सुरक्षा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आज के टिप में चर्चा के विषय है रहावे धान की रोपाई की SRI विधि अपनाएं और उत्पादन बढ़ाएं। आज के किसान में संगवारी हो ग्राम मिड़मिड़ा विकासखंड पुसौर के कृषक हावे सागर यादव। ग्रीष्मकालीन मूंगफली की खेती और ओकर अवशेष माने के डेटा नरई मल जो लाभ आवे ओकर बारे में जो मोर चर्चा हुई आवे वो लाभ मन कार्यक्रम में सुन सकिया। और भी मनीषकन गोल्ड बात संगवारी हो गीत गाना घलो कार्यक्रम में चली। तो चला समय लमात नहीं गोल्ड बात ला शुरू किया जाए। आज के बात में संगवारी हो जैसे कि गुट कर रहे हैं फसलों की वृद्धि और विकास में बाधक खरपतवार। अब भैया हो फसल मन मा खरपतवार माने की बन घास समस्या एक बड़खा समस्या हावे और एमन फसल के बढ़वार और विकास में बाधा पैदा करते हैं। ये बन घास खरपतवार के खासियत होते कि एमन कुदरती रूप ले स्थायी होते, एमन में दोबारा पनपे के ताकत होते और एमन में ठीक खराब हालात में भी माने प्रतिकूल एकदम विरोधी हालात रहे उमा भी एमन जिए के ताकत एमन में रहते। ये बन घास में जो फर फूल और बीज मन हावे एमन झट के और ज़्यादा संख्या में बनते और ये जतका भी खरपतवार मन हावे एमन के जो बीजा मन हावे कि बसर नहीं रहे खराब हालात रहे ओ बखत बेर में भी अबड़ बेर बखत तक स्वस्थ हालात में भुइया में स्वस्थ हालात में पड़े रहते हैं। और संगवारी ये बन घास मन लाखों की संख्या में बीजा पैदा करते हैं। अब यह देखा एक खरपतवार मन बीज के अलावा कहिए तो अपन और भी भाग ले बढ़वार करते हैं माने पान ले भी बढ़ जाही नरी डेटा ले भी बाढ़ सकते हैं। खरपतवार मन के ऐसे प्रकृति होते ऐसे दूबी घास आप मन सुने हो या यह तना ले बाढ़ जाते हिरन खुरी घास ये बन जड़ी ले और कांस कांदा ले एकर माध्यम ले हर बाढ़ जाते। ऐसे कुछ खरपतवार ला जो कर जड़ी मन बने गहरी में होते और मन और हमर फसल मन ला नुकसान करते हैं। और जतका भी खरपतवार मान हावे जो कांदा उमन में रहते हैं उमन बनेच बेर तक भोजन जमा कर लेते हैं। ऐसे ये बीजा मन के बनावट और रंग और आकार नाना प्रकार के फसल असन समान होते हैं। अब यह देखा प्रतिकूल हालात रहते जैसे कि कम नमी होते माने भुइया में ओल नहीं रहे बंजर भुइया हावे जमा कुछ नहीं जागे कुछ नहीं पनप पाए उसने भुइया में और कीड़ा कीट और रोग बीमारी के आक्रमण के बाद भी जितका भी खरपतवार मनहावे उमन माने कि जियत रहते उमन अपन बढ़वार करत रहते। खास करके सब्जी में देखिए संगवारी हो कोनो भी फसल हो उमन के मुकाबला में ये बन घास मन के बढ़वार ज़्यादा होते एमन के बीजा खराब हालात रहते उसने बतर में भी बने जाम जाते। यदि फसल में उगे वाला बन घास ला समय में यदि हमन रोकथाम नहीं करबो तो जतका भी हमर लागत हरहावे और बेकार हो जाते। एक बार खरपतवार मन ला समय के रहते सिरवाए बढ़ावे बन घास मन ला रोके के नाना प्रकार के तौर तरीका हावे जैसे शुद्ध बीजा के उपयोग कर बने ढंग के सड़ा खातू के उपयोग कर ऐसे बन घास के प्रभावित क्षेत्र में चरे वाला जानवर ला बगैर खरपतवार फसल के क्षेत्र में आए बर रोके के काम हावे। बन घास ले प्रभावित क्षेत्र के माटी या फिर बालू के उपयोग नहीं करे बर हावे और सिंचाई के नाली ला घलोक बन घास ले बचा के रखे बर हावे। और डोली खेत के पार मन मा भी मनेज बन घास ले हो जाते तो ओहू मन ला हमन ला बचा के रखे बर हावे। और देखा
बन घास मन जतका भी रहते हैं एमन प्रतियोगिता करे वाला फसल के संग थोड़ा डरा जाते हैं, तो ऐसे प्रतियोगी प्रतियोगिता कर से माने खरपतवार झट के बाढ़ से उसने फसल लगाए काम आवे। तेजी से बढ़वार करने वाला किसिम लगाए काम आवे। अब वन घास के बढ़वार ला रोके जा सके थे, कम बढ़वार करते ऐसे साग सब्जी के पौधा ला झन लगाए बर आवे। और संगवारी हो बीजा के मात्रा ला प्रति एकड़ ज़्यादा उपयोग करे बढ़ावे। अभी हो साफ सुघर बीजा बोए के काम आवे जिमा वन घास के बीजा झटके नहीं जाम पाए। और फसल चक्र अपनाए के काम आवे ताकि वन घास ला उगे मा समस्या हो। तो संगवारी हो आज के बात में अटका, चला सुना जाए एक सुघर गन के लोकगीत ला।

संगवारियों, अभी आपन सुनत रहा ध्रुवा राम मरकाम और दुखिया भाई की आवाज़ में ये लोकगीत ला। आज के कृषक प्रश्न मंच में संगवारियों प्रश्न ये हर हावे कि श्री पद्धति जो धान के खेती हावे ओमा SRI के पूरा मतलब आपमन हमला लिख के भेजिया, माने SRI के फुल फॉर्म ओकर बारे में प्रश्न हर हावे। SRI ला का बोला जाते ओला आपमन हमला लिख के भेजिया। चलो संदेश ला सुना जाए फिर गोट बात लागू बढ़ाऊ।

0: নেতা টেলিলকে অ্যাপ, ওয়েবসাইট www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हाँ तो संगवारी हो, संदेश विज्ञापन हो, सब चला जाए। ग्राम मिड़मिड़ा विकासखंड पुसौर के कृषक सागर यादव आज के जो हमर किसान हरावे, ग्रीष्मकालीन मूंगफली के खेती और ओकर अवशेषों ले होए वाला लाभ, ये विषय में जो मोर बातचीत हुई सब चलो सुना जाए। संगवारी हो, देखा मूंगफली एक ऐसने फसल हावे जेकर ले हमर किसान भैया मन ला बने लाभ रहते। मूंगफली के जतका भी जिनिस मन हावे ओमन तो हमर बर लाभकारी हावे। संगे संग देखा मूंगफली खाए बर दाना भी मिलते और तेल पिराधन तो मूंगफली खली भी मिलते, तेल मिलते और डेटा मन जो हावे ओकर चलते भी हमन ला लाभ मिलते। अब देखा संगवारी हो, मूंगफली के खेती में हमर जमीन के उपजाऊपना घलो बढ़ते और एक लाभकारी और सरल खेती हावे मूंगफली के खेती। अब मूंगफली के खेती करीन हावे हमर मिड़मिड़ा गांव के किसान हर, तो चला ओमन करा बात किया जाए कि भाई किसे किसे ओमन खेती ला कमाई हावे और कब ले काम करत हैं और एमन ला लाभ होत हावे कि नहीं होत हावे और साल भर में एमन कतका अपन घर खाए बर तेल वगैरह पा जाते हैं और तेल नहीं पिला थे तो मूंगफली ला बेच के भी एमन अपन आयामंदी बनात हुई और नगदी फसल है मूंगफली आप मन तो एला जाना था। तो सब ले आगो तो भैया राम राम।
2: राम राम।
1: तुम्हारा नाम ला बता?
2: सागर यादव।
1: गांव मिड़मिड़ा।
2: गांव मिड़मिड़ा।
1: हाँ तो मूंगफली की खेती आप मन करे है, बढ़िया लगा थे?
2: हाँ बढ़िया लगा ना।
1: तो ये लगा कौन माह में जगाया रहा?
2: फरवरी।
1: पूस खानी?
2: हाँ पूस पूस
1: अगहन पूस।
2: धान कटिंग कटिंग हुए की?
1: हाँ धान कटिंग हुए के वाला मन मूंगफली लगा था है ना। तो जैसे की शुरुआती तो वही जोताई उताई भुरभुरा
2: करके गांव में खाद वाद डाल के, गोबर वोबर खाद वाद डाल के, बीज ला डाल के
1: ठंडा महीना में बने जानते हो?
2: हाँ ठंडा महीना में बढ़िया
1: वो समय तो ठंडा हो ही।
2: हाँ।
1: अभी तो घाम करस है, अब तो पोठाए के समय आगे से है ना। तो कौन से मूंगफली लगा रहा है? लाल मूंगफली, लाल दाना की सादा दाना?
2: ये मूंगफली ला तो लाल दाना लगा ले।
1: हाँ तो सागर भैया जैसे कि बोलते कि लाल दाना में तेल ज्यादा निकलते और एक कीमत भी ज्यादा रहते, सफेद दाना खाए में अच्छा लगते, तो आपन का करे बल लगाए है, बेचे बल लगाए है, खाए बल लगाए है कि तेल वगैरह पिरा था ला?
2: ओवर खास करके तो बेचे बर वे करे हाँ।
1: हाँ।
2: और थोड़े मोड़े तेल के बर भी, खाए के बर भी करे हाँ।
1: अच्छा घर खाए बर,
2: घर खाए बर
1: निकाल ले सा है ना। तो बने तेल निकलते आप मन?
2: हाँ बढ़िया तेल निकलते,
1: साल भर पूरे जाते तेल हर?
2: हाँ तेल हर।
1: हाँ मूंगफली के तेल की कीमत तो आजकल जाना सा बने छावे करके और बने किसान भैया मन हावे जमन मूंगफली के तेल ला खाए बर छोड़ दिन हावे।
2: हाँ।
1: और आपन बढ़िया खास आपन के शरीर ठिंडा हर हावे जैसे दिखत हावे। और तो अगहन पूस में लगाए रहा?
2: हाँ अगहन पूस में लगा ले।
1: पीरे मक्का कोड़ाई वड़ाई करे बर लगते?
2: जून मई जून के लास्ट में वह खुदाई
1: हो ही। हाँ मई जून में हो जाये बोला?
2: हाँ और हो जाये,
1: चार पाँच महीना की फसल है।
2: हाँ
1: हाँ तो एमा और का बूता करे है शुरू ले?
2: इमें शुरू ले तो जोतई फोंदई करे हम।
1: हाँ।
2: खाद डाले हम। हाँ। गोबर खाद डाले हम।
1: हाँ।
2: तहाँ ओकर बाद में ओला कोड़ाई करे हम, जब वह पौधा निकली से तो
1: अच्छा अच्छा
2: कोड़ाई करे हम।
1: हाँ।
2: तहाँ कोड़ाई करे के बाद में ओकर जड़ के तीर में जितकी बन बन मन रहते जी।
1: हाँ, हाँ,
2: खरपतवार मल्ला सब निकाले हम।
1: हाँ मालदा वगैरह छिपे? हाँ अभी गर्मी में लगते मालदा में?
2: नहीं नहीं लगे, नहीं लगे
1: अभी, ज्यादा नहीं लगे ना
2: अभी गर्मी के फसल में।
1: हाँ।
2: मादा चीपे पर नहीं लगे।
1: हाँ।
2: बस इधर छोपाई करके पानी चपाए बरे,
1: बरसात में लगते बोला।
2: हाँ, बरसात की फसल
1: तो कह देवा कि भाई बन घास मन रहते तो बढ़िया। हाँ, फसल नहीं हुए।
2: हाँ।
1: ना प्रभावित हो जाते बनने दान
2: में। हाँ। कोड़े वड़े करे के बाद में यूरिया फ्यूरिया दे के।
1: हाँ हाँ
2: राखड़ वखड़ दे के
1: हिसाब से, राखड़
2: राखड़ हिसाब से दे के पानी वानी चपा के।
1: हाँ तो पानी के का साधन है आप मन करा?
2: पानी के साधन है बोर है।
1: अच्छा खुद के बोर है बोला?
2: हाँ खुद के बोर है।
1: हाँ तो बोर ले कमा था?
2: हाँ बोर ले कमा के।
1: हाँ
2: वो करा था।
1: तो कतका के डिसमिल में लगाया
2: यार? वही लगभग हो जाए वो हर हो
1: 10 डिसमिल। के तामी लगाया रहा अपन बीजा?
2: इला हमन लगाए हम। हाँ। 10-15 तामी लगाए हम।
1: हाँ हाँ, हाँ। तो बने चेरिया खींची से?
2: हाँ बने खींची से
1: है ना। हाँ तो सागर भैया जैसे कि आप मन तो बता सके भाई मूंगफली ला हमन तेल भी पेला था।
2: हाँ तेल पेला था
1: है ना। तो तेल पेला था तो फिर ओकर खली लगा कर था?
2: ओकर खली ला जिसे गाय गरुआ जो राखी न है।
1: हाँ
2: वो वाला दे देता।
1: अच्छा आप मन कर नहीं है गाय गरुआ?
2: गाय गरुआ तो नहीं। आओ जिसे तेल मशीन वाला जिसे खली लाल राखियो कहले
1: हाँ
2: बोला जोन रेट है वो रेट में वाला दे देते हन।
1: अच्छा अच्छा वो खरीद लेते
2: हाँ
1: हैं
2: वो खरीद लेते तेल मिले वाला भी।
1: तो अगर भी आमदनी हो जाता।
2: हाँ उनमें भी आमदनी हो जाते।
1: तेल मिल गई और संगे संग खली
2: हाँ
1: के पैसा
2: खली
1: भी
2: की
1: मिल
2: पैसा
1: गया।
2: भी मिल गई।
1: हाँ और फिर और देखा मनीष किसान मन का करते हैं मूंगफली के डेटा मन ला रखे रहते हैं
2: हाँ
1: है ना, बरसात में एक बढ़िया चारा बनते पशु मन के, गाय
2: हाँ
1: गरुआ पोसी नहावे तो वाला खवाते हैं पानी में
2: हाँ
1: डाल के बढ़िया। तो ऐसा कुछ उपाय अपन कर सका?
2: खैर उसे तो उपाय हर नहीं करे हन हमन, लेकिन वो उपाय हर हर बढ़िया है जो ने गाय गरुआ रखी थी।
1: हाँ तो वो डेटा ला अपन बेच देता कि फेंक दे, सोचे फेंक देता?
2: नहीं वाला वाला तो दे देथन
1: अच्छा, कोई पशुपालक
2: कौन
1: ला।
2: पशुपालन जोन कर रहे थे
1: हाँ
2: वाला जैसे मूँगफली ले ओकर तोड़ के
1: हाँ हाँ
2: दाल वाला दे देथन।
1: हाँ सोचे दे देता कि खरीदे में
2: हाँ
1: जाए।
2: सोझे भी ले जाते हैं। हाँ
1: हाँ खरीद के भी ले जाते
2: खरीद के भी ले जाते हैं
1: तो वाले भी फायदा हो जाते
2: ओहो वाला
1: बड़ा।
2: भी दुबे हो जाते हैं।
1: हाँ तो बढ़िया, अभी तो आप मन के लाल दाना के फसल है, हर हर
2: हाँ
1: खावे है ना,
2: हाँ हाँ
1: मई जून में निकल जाही।
2: हाँ जून में निकल
1: और
2: जाएंगे।
1: जैसे कि सागर भी समस्या आते बने ज्यादा भोंग मारे के दिमाग विमाग खा लेते या फिर रोग बीमारी आ जाते, तो आप मन के फसल में ऐसा कुछ
2: हाँ
1: समस्या
2: थोड़े वो
1: आते?
2: मूँगफली में थोड़े काला हुए पा जाते मैं वो सुबह जब शुरू लगाता ना बीज में
1: हाँ
2: तो पोटास वोटास जैमिंग इसे करके मैं दे रहा था
1: हाँ
2: जो भी वे हो रहे थे तो
1: हाँ
2: कुछ रूप में हो जाती।
1: बीजा के उपचार करे रहता दवाई डाल के वाला?
2: हाँ दवाई डाके में
1: हाँ
2: खेत
1: और
2: में
1: जैसे
2: फैले हुए।
1: बीमारी लगी तो कुछ दवाई वाई छिड़काव करता?
2: बीमारी तो खैर अभी नहीं लगे है
1: हाँ
2: छिड़काव वाला,
1: हाँ हाँ
2: वो छिड़काव वाला बीमारी तो नहीं लगी है।
1: हाँ वो
2: हाँ
1: एकरे बन नहीं लगे सागर भैया,
2: हाँ
1: अपन के जो खेत ला देखा तो ना अपन साफ सफाई बढ़िया आवे, और
2: हाँ
1: जहाँ साफ सफाई रहते हैं वहाँ कीट कीला रोग बीमारी झट के नहीं आए है ना। तो बढ़िया आप मन आके हम मन जानकारी दिए हैं, बढ़िया आप मन के मूँगफली बने निकले, बने लाभ हुए आप मन ला है ना, हमारे तरफ आप मन ला शुभकामना है, धन्यवाद, जय जोहर, राम राम।
2: राम राम।
1: हाँ तो संगवारी होती रहीन ग्राम मिड़मिड़ा विकासखंड पुसौर के कृषक सागर यादव, ग्रीष्मकालीन मूँगफली की खेती और ओकर अवशेष ले होवे वाले लाभ विषय में जो मोर बातचीत हुई होत रहीस ओला आप मन सुना। और हमल आशा हावे संगवारी हो हमर जो प्रगतिशील किसान मन के गोड बात आप मन ल सुना थन, तो मन के गोड बात ल सुन के आप मन ल बनेचकन लाभ होवत हुई। अब चलो संगवारी आज के नसीहत के बात करबो, न्यूनतम प्रीमियम अधिकतम सुरक्षा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। संगवारी हो फसल बीमा योजना किसान मन बर एक महत्वपूर्ण योजना हावे। ये योजना में प्राकृतिक आपदा जैसे कि कभू सूखा पड़ जाते, बाढ़ वगैरह आ जाते, ओला करा गिर जाते, कीट कीला मन के प्रकोप बढ़ जाते, रोग बीमारी मन के प्रकोप बढ़ जाते, एकर चलते जब फसल खराब होते तो उमा हमला बनेचकर हानि हो जाते और हमर जो उत्साह है हावे वह छर कम हो जाते। तो किसान मल्ला नुकसान नहीं होए, किसान मल्ला सहारा दे सेती न्यूनतम प्रीमियम अधिकतम सुरक्षा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एहर चालू हुई सावे। एमा कहा होते संगवारी हो जितका भी नुकसान हुआ थे ओकर सेती आर्थिक सहायता दिए जाते। और संगवारी हो देखा कुसियार एक वाणिज्यिक फसल हावे कहले बा, एकरे सेती योजना कई ठन राज्य में कुसियार जगाल थे वो किसान में लागू होते। यदि राज्य सरकार हर कुसियार ला एक अधिसूचित फसल घोषित करे रहते तो संगवारी हो कुसियार वाणिज्यिक फसल के श्रेणी में थे, किसान मन ला बीमा के राशि के लगभग 5% प्रीमियम देहेवर पड़ते, बाँचे प्रीमियम ला केंद्र और राज्य सरकार दोनों जन जोर मिलके देते। संगवारी हो ये योजना के मुख्य लाभ में कहिया तो जब कभू काल जैसे सूखा पड़ गई, बाढ़ आ गई, गर्रा सूखा के कारण या फिर कह लेवा करा गिरे ले भी जो भी नुकसान होते ओला कवर करे जाते, कीट कीला और रोग बीमारी ले फसल खराब होए में सहायता दिए जाते, और कभू काल प्राकृतिक आपदा के चलते बुआई न हो पाए के स्थिति में ऐसे कुछ परिस्थिति आ जाते कि भाई हमन जगाई बुआई नहीं कर पाते किसान हर, तो वहाँ भी लाभ दिए जाते। ऐसे फसल लुआई के 14 दिन तक प्राकृतिक रूप से जो भी नुकसान हावे ओमा भी कवरेज दिए जाते। और ये योजना बर संगवारी हो जितका भी हमारे किसान मन हावे जेमन ऊपर खेती के कर्जा हावे, और ऐसे किसान मन घलोक जेमन ऊपर खेती पाती के कर्जा नहीं हावे, ओ मन घलो ये आवेदन ये योजना पर आवेदन कर सकत है, योजना के लाभ ले सकत हावे। और भैया हो अधिया कमैया जो किसान मन हावे, और कोई कई जन हमारे किसान भैया मैं ऐसने हावे जीवन किराया लेके खेती करत हावे, तो ऐसने रूप ले जो खेती कमात हावे ओ मन घलो कई ठन राज्य में ये योजना पर पात्र हावे। बस किसान मन करा भूया रिकॉर्ड या फिर वाला खेती खाती खेती पाती संबंधित कागज पत्र जो हावे वो हर रहे काम हावे। जरूरी कागज पत्र में कहिया सा आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खसरा के जो कागज हावे वो हर, और जो भी फल बोए गए रहीस वो फसल के बारे में पूरा जानकारी, यदि मोबाइल हावे तो मोबाइल नंबर, पासपोर्ट फोटो। और योजना से आवेदन करे पर संगवारी हो आधिकारिक पोर्टल में जाके फार्मर कार्नर में रजिस्ट्रेशन करे बर हावे। फसल भूया के जो विवरण हावे ओला भरे बर हावे, प्रीमियम जमा करे बर हावे और रसीद ला सुरक्षित राखे बर हावे। ऐसे फसल खराब होए के स्थिति में नुकसान होए के 72 घंटा के भीतर सूचना ला लेहे बर पड़ते। और ये सूचना बैंक, बीमा कंपनी, कृषि अधिकारी या फिर पोर्टल में दिए जा सकत हावे। जांच के पाछू जो भी मुआवजा होते वो रकम सीधा सीधा बैंक के खाता में आ जाते हैं। तो संगवारी हो देखा एक मने सुघर अकल की योजना हावे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कम प्रीमियम लगते जैसे कि बात करें कि 5% लगी खाली, और हमार जो नफा नुकसान होते ओकर भी भरपाई योजना के माध्यम ले हो जाते। एकल ले मत खास करके चेत करे के काम हावे, यदि कुछ भी खेती कमाए जात हावे संगवारी हो तो ओला ध्यान देके अपन फसल के बीमा भी करवाए ले फायदा होही। तो संगवारी हो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अपन लाभ उठावा। अब चला सुना जाए एक सुघर अकन के लोकगीत ला।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हाँ तो संगवारी हो, आज के टिप में बात करबो धान की SRI विधि अपनाए और उत्पादन, धान रोपाई की SRI विधि अपनाए और उत्पादन बढ़ाएं। संगवारी हो, आज के बखत बेर में जो धान हर हावे, विश्व के सबले ज़्यादा उगाए जाने वाला फसल मन में एक हावे, और हमर देश भारत में धान उत्पादन के मामला में दिनों दिन अगवा जात हावे विश्व भर में। अब यह हो, आमतौर में धान के खेती पर ज़्यादा पानी के दरकार होते, पर कभू काल कमजोर मानसून के चलते धान उपजाए के बुता में मने समस्या के सामना करे पर पड़ते। ऐसे ही समस्या के समाधान के सेती बने हावे SRI विधि माने श्री विधि, और श्री विधि में SRI के जो फुल फॉर्म पूरा मतलब कहिया तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, यह श्री विधि के पूरा मतलब हर हावे। संगवारियों, श्री विधि ले धान के खेती करे जाते ओ विधि ला मेडागास्कर और धान सघनीकरण विधि घलो कहे जाते। ऐसने जो तौर तरीका जो श्री विधि ले धान बोए जगाए जाते तब कम पानी की जरूरत पड़ते और पैदावार ज़्यादा होते। और संगवारी हो, श्री विधि ले धान के खेती करे जात हावे तो सबले आगू हमला धान के बीजला उपचारित करे बर हावे, काबर की उपचारित बीज ले थरहा लगाए ले जतका भी पौधा मन हावे ओमन स्वस्थ और ठिन्ना पैदा होते कहले बा। और संगवारी हो, बीजा के उपचार करे के बूता मने ची अब बड़ी सरल हावे, एक लईका हरेला कर डाली समझ लो। एकर बर आधा बाल्टी पानी एमन नून ला घोल के घोल बनाए जाते, फिर सैघो अंडा या फिर आलू डाल के देखे जाते। यदि वो घोल में अंडा या आलू तौरे वर लागते तब बीजा उपचार के सेती घोल हर तैयार हावे। अब एमा हमन धान ला डाल देथन और जो धान पानी के सतह में उपला के आ जाते ओला हटाए के काम हावे, माने वो हर हमर काम के लायक धान नहीं होए। वहाँ से धान ला निकाल के ओला बने साफ सुघर पानी में धोए के बाद, फिर जितका भी पानी हर हावे ओला निथारे के बाद वो धान ला सनिया बोरा में भर के छैया में लगभग 24 घंटा पर राखे बर हावे। ऐसे ढंग ले अपन पूरा धान बीजाला उपचारित कर दिए जाते। एकर बाद उमाले अंकुरण माने कि जामे बर बीजा हर शुरू हो जाते और ये बीजा ले धान के नर्सरी तैयार करे जा सकत हावे। और संगवारी हो, श्री विधि ले धान उपजाए बर सबले आघू धान के थरहा तैयार करे जाते। एकर बर 2-3 माने बढ़िया भुरभुरा जुताई करे जाते और जुताई बने रहते तो हमला लाभ भी एमा हावे। और भुइयां ले 3-4 बार बढ़िया जुताई करके 3 या 4 इंच ऊंचा ऐसे क्यारी बनाए बर हावे और ओमा सड़ा गोबर खातू या फिर केचुआ खातू उपलब्ध होत हावे तो केचुआ खातू ला माटी में मिसराए बर हावे। माटी ला बने ढंग ले भुरभुरा बना के ओमा उपचारित करे बीजा ओला डाले बर हावे। जामे धान के बीजा माने जो हमन सनिया बोरा में डाले रहन वो बोजा जाम गिसावे सूली है राग गिसावे तो उसने बीजा ला बगरा के थरहा दिए जाते ऊपर ले सूखा गोबर खातु या फिर केचुआ खातु छिड़क देहे बढ़ावे और ओकर ऊपर माँ पैरा डाल के राख देहे बढ़ावे एकर बाद थरहा में सिंचाई करे काम बुता दो दिन बाद के हावे जब धान बीजा बने ढंग ले जाम जाते त थरहा ले जो पैरा मन हमन पैरा पुआल मन ल डाले हन ओला टार देहे काम आवे नहीं तो एम का होते संगवारी हो जो भी हमन बीजा जागे बर लगाए हन थरहा लिए हन पहला लन्नी टारथन तो ओमा का होते फफूंदी लागे के खतरा बाढ़ जाते और फफूंदी लागिस तो थरहा हर खराब हो सकत हावे अब यह हो श्री विधि ले धान कमाए के तौर तरीका में खेती पाती की तैयारी परंपरागत जो हमन खेती करथन उसने तौर तरीका ले ही करे जाते एमा फर्क बोलिया अतका ध्यान रखे के काम हावे कि भुइयां समसाम हो पौधा के रोपाई के 12 ले 24 घंटा आघू खेत डोली के तैयारी बर 1-3 सेंटीमीटर ज़्यादा पानी डोली खेत में नहीं राखे बर हावे श्री विधि में धान के लगभग 15 दिन के थरहाला डोली खेत में रोप दिए जाते और पौधा ले पौधा के माझा के जो दूरी हर हावे वोला 10x10 माने 10x10 इंच राखे जाते एकर बर चिन्हा लगा के डोली में आघू ले ही 10x10 इंच के दूरी में निशान बनाए बर हावे ऐसे तौर तरीका ले रोपेगी इस फसल में जो पीला मन हावे वो हर ज़्यादा निकलते जेकर कारण हमला ज़्यादा पैदावार घलोक मिलते और संगवारी रोपा लगाए के बेर में पौधा मल्ला ध्यान ले नर्सरी ले माटी संग निकाल के जगाए बर हावे कई जन का करते ओला सरसर पानी में धो देते लेकिन श्री विधि ले यदि आप मन खेती करत हावा तो माटी ला लटके रहे ये बात के ध्यान रखे काम हावे थरहा में माटी संग लटके बीजा घलोक झर जाते यदि ओला हमन धो देथन तो ऐसे बखत में दू पान के पौधा मात्र दूठी पान निकले रही वह निकले रहते थरा के रोपाई आधा ले एक घंटा के भीतर में करे काम हावे और संगारी ख्याल इसने रखे काम हावे कि रोपा ला एक अंगठी ले ज्यादा गहला झन जा पाए और एक ठौर में एक या दो पौधा लगाए बर हावे डोली खेत में पानी नहीं रखे ले ठीक रहते ज्यादा पानी डोली के आघू ही निकाले बर हावे यानी कि ज़्यादा पानी नहीं हो पाए ये बात के ध्यान रखे काम हावे और यदि जरूरत लागत हावे तो अगला दिन हल्का सिंचाई करे बर हावे ऐसे डोली खेत में पानी भर देहले जितका भी जो वन घास मन हावे खरपतवार मन जो हावे वो मन ज़्यादा जाग जाते हैं और खरपतवार कतका नुकसान करत है तो आज के बाद में हमन आप मन ला करे हैं तो ये बात के ध्यान रखे काम हावे कि थरहा भी देत हन तो वो करा मन घास खरपतवार मन के नामो निशान नहीं रहे साफ सुघर खेती रहे तो ओकर चलते हमन ला उत्पादन बढ़िया मिलते पौधा और ठिन्ना मिलते तो संगवारी को आगे चल के हमर पैदावार भी घलोक बने होते तो ये बात ला सुरता में रखे काम आवे कि खरपतवार मन ला टाले काम आवे भुइयां हसम साम रहे तो ठीक रहे और सिंचाई के तौर तरीका ला बने ध्यान देहे बढ़ावे और एक बात संगवारी हो श्री विधि ले यदि हम धान कमाए हन तो एमा का होते एमा फायदा ये होते कि कीड़ा कीट के प्रकोप एमा कम लागते और एक कारण हावे कि पौधा के माझा के दूरी ज़्यादा होते माने दोनों पौधा के दूरी में अंतर रहते जेकर चलते हमर जितका भी कीट कीला मन हावे रोग बीमारी मन हावे वो मन झटके हमर पौधा ला प्रभावित नहीं कर पाए तो श्री विधि ले संगवारी धान लगाए काम हावे अब चला सुना जाए एक सुग्गर रंगन के लोकगीत ला

हाँ तो संगवारी हो, बेहतर नाम और संगवारी मन की आवाज़ में आपन लोकगीत ला सुनत रहा। और संगवारी हो चला आप गोट लागू बढ़ाया जाए। और संगवारी हो देखा, आलू एक सब्जी च नहीं होइस, एक सागे च नहीं होइस, बल्कि करोड़ आदमी मन के मन के खाए के खाद्य सुरक्षा आवे कह लेवा, पोषण हर हावे कह लेवा, और आजीविका के आधार हावे। आज हावे संगवारी हो 30 मई, और 30 मई को हमन मनाथन आलू के अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये दिवस ला संयुक्त राष्ट्र द्वारा आलू के महत्व, खाद्य सुरक्षा, पोषण और किसान मन के आजीविका में एकर भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाए के सेती ये दिवस ला घोषित करेगी से। संगवारी आलू के महत्व में कहिया था, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल में यह हरे खारा आप मन जाना था। 100 ले ज़्यादा देश में आलू की खेती करे जाते। आलू में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर के बने यह अच्छा स्रोत हावे। खाद्य सुरक्षा और कुपोषण से लड़े में आलू के महत्वपूर्ण भूमिका रहते। छोटे किसान मन के आय बढ़ाए में भी घलो यह सहायक हावे। एक बस संगवारी हो, आलू अपनाए के काम हावे, पोषण बढ़ाए के काम हावे और किसान मन के सम्मान करे बढ़ावे। एक बात आऊ हावे संगवारी हो, जोन करा आलू हर उगते वहाँ आजीविका फलते फूलते बने चलते। अब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम से क्रियाकलापों के लिए ऋण चर्चा के विषय हर हावे। और संगवारी हो अल्पसंख्यक समाज में कहिए तो मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी मन शामिल हावे। और मुख्य ऋण योजना माने कि टर्म लोन योजना, एमा जैसे छोटे धंधा कोई करे बर चाहत हावे, छोटकन दुकान खोले बर चाहत हावे, खेती पाती के बूता करे बर चाहत हावे, पशुपालन के बूता करे बर चाहत हावे, कई जन हस्तशिल्प के क्षेत्र में अघवाए रहते हैं तो हस्तशिल्प के ऐसे सेवा के बूता काम बढ़ावे, तो एम अल्लाह कम कंतर में माना कह लेवा कम ब्याज में कर्जा मिलते। ऐसने माइक्रो फाइनेंस योजना, एमा स्वयं सहायता समूह जो हरावे और गरीब परिवार मन बर छोटे ऋण दिए जाते। ऐसे देश और विदेश में मने उच्च शिक्षा बर कर्जा, एमा भी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम से मिल जाते। अल्पसंख्यक महिला मन बर स्वरोजगार बर सहायता बर पारंपरिक कारीगर और जीवन करा हुनर हावे, कुछ कला के क्षेत्र में ओमन माहिर हावे कह लेवा, बने जानकार हावे, ओमन पर विरासत योजना के लिए कर्जा उपलब्ध कराया जाते। कर्जा लेहे बर संगवारी हो सामान्य पात्रता में कहिया तो आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय, मुसलमान हो या फिर सिख हो, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म, पारसी धर्म के हुए, ओमन पर हावे परिवार के आय आमदनी जो निर्धारित हावे ओकर भीतर में ये सब नियम हरावे कह देवा। आधार कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, परियोजना के विवरण ये आवश्यक कागजात मन हावे। आवेदन सामान्यतः राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी, जिला कार्यालय या फिर अधिकृत एनजीओ के माध्यम ले करे जाते। संगवारी हो आज के बखत बेरवा कह देवा, बिजली हमर जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सा हावे और थोड़कन लापरवाही यदि हमन करत हन तो बड़खा बड़खा दुर्घटना के कारण बन सकत हावे, जेमा जान माल के हमन नुकसान हो सकत हावे। एकरे बर संगवारी हो बिजली के उपयोग में सावधानी रखे के बुता सबले ज़्यादा जरूरी हावे। बिजली के उपयोग में सावधानी में कहिया तो कभू भी गीला हाथ ले कुल्हो भी स्विच या बटन या तार या फिर प्लग कह लेवा या फिर कह लो बिजली के यंत्र एमल नहीं छुए के काम हावे। तार टूट गई से कोनो करा या फिर कोनो करा खुला तार हावे या फिर खराब यंत्र हर हावे तो ये सब ला ध्यान में रखे काम हावे कि कुछ भी यंत्र मशीन या फिर तार वगैरह छुए के आगू हाथ हर सूखा रहे तो बढ़िया रहते या फिर दस्ताना वगैरह पहन के ओकर उपयोग कर सकत हन। अब बिजली के यंत्र मल्ला उपयोग के बाद बंद कर देहे बर हावे और एक एक ठी साकेट में
ज़्यादा उपकरण नहीं लगा ले, ठीक रहते, एमा भलाई हावे, नहीं तो कहा होते संगवारी हो शॉर्ट सर्किट के खतरा बाढ़ सकत हावे। ऐसने लड़का मन ला बिजली के स्विच और तार ले दूर दूरिया रखे बर हावे। गर्मी के महीना में कूलर ले चटक के लड़का हर के जान चलेगी, ऐसने करके आप मन बनेच समाचार सुने हुई है। तो लड़का मन लखा दे काम आवे कि भाई लोहा टीना के जो कूलर मन हावे वो मन ले दूरिया रखे बर हावे, और लोहा टीना के जो कूलर मन हावे ओमन ला या पंखा हरावे ओमन ला टेस्टर के माध्यम से हमेशा चेक करे काम हावे कि कहीं बिजली के सप्लाई एमा तो नहीं हुआ हावे। और देखा अभी तो गर्रा दुका आंधी तूफान के भी बखत बेर हावे, बिजली के खंबा और टूटे तार ले खास हमन ला दूर रहे बर हावे। और जैसे कोनो कर बिजली हर बिगड़ गिस हावे नठा गिस हावे तो ला साजे सजवाए के बूता ऐसने मनखे मन करा करवाए बर हावे जो हर प्रशिक्षित रहे बने जानकार रहे, बिजली के कहलवा माहिर मिस्त्री रहे, ऐसे मन से मन करा बिजली के बुता कामला करवाए बार हावे। अर्थिंग और सही फ्यूज के उपयोग करे काम हावे। और संगवारियों सावधानी ले ही हमला बिजली के जो भी बिजली के यंत्र के उपयोग कर सन तो उमल्ला हमला खास ध्यान दे बर हावे, नहीं तो कहा होते दुर्घटना घटे में समय ना लगे। तो ये सब बात सुरता में रखे काम हावे संगवारियों, दुर्घटना ले बचाव जरूरी हावे, बिजली के उपयोग सावधानी ले करे बर हावे और ऊर्जा के घलोक बचत करे बर हावे। एकरे बर सुरक्षित रहा, बिजली के सही उपयोग करा। माटी और पर्यावरण खतरनाक प्लास्टिक के उपयोग घटाएं, माटी और पर्यावरण पर खतरनाक प्लास्टिक के उपयोग घटाएं एमा चर्चा करबो। असंगवारी हो प्लास्टिक के उपयोग तो आप मन जाना था, जतर कतर जतका न कतका प्लास्टिक के उपयोग हुआ था वे माटी मा पानी मा और हवा मा भी यहर घुला था वे और दिनों दिन यहर हमर बर हानिकारक बनत जा था वे। प्लास्टिक आसानी ले नष्ट नहीं होते संगवारी हो, अब बरसों बछर तक पर्यावरण मा यहर माढ़े रहते। आप मन देखे हुए हमन कई थी पना प्लास्टिक जो रखे रहते हैं अपन भुइया में डोली खेतों पड़े रहते हैं जस के तस माढ़े रहते, और एकल ले कहा होते एमन माटी के उपजाऊपना ल घटाते। और पानी के निकासी के जो नियम हरावे कह ले, ज़्यादा प्लास्टिक पना वगैरह पड़े रहते तो ओहर प्रभावित होते। ऐसे प्लास्टिक ले पशु जानवर मन घलोक प्रभावित हो जाते, कभू काल देखिया तो गाय गरुआ मन चारा के शोर में प्लास्टिक लखा डालते हैं जो आगू चल के उगमन पर नुकसानकारक होते। पशु जानवर तो छोड़ा चिड़ई चुरगिन मन घलोक एकर एकले प्रभावित हावे और उमन लभी घलोक नुकसान हुआ थावे। प्लास्टिक की उपयोग कम करे के उपाय में कहिया तो एकल उपयोग माने सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे कि पॉलीथीन प्लास्टिक कप प्लेट और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा माने जो हमन कुछ जूस वगैरह पीसन जैसे कुसियार के समय हावे कुसियार के दुकान में हमन एक्स्ट्रा मांगसन पिए वर ले करके छोटे से पाइप रसे ए मन के उपयोग नहीं करे के बराबर हावे। और दूसरा बात कि कभू भी हमन जैसे बाजार जासन कुछ बिसाय पर तो कपड़ा के झोला या फिर सनिया जूट के झोला या फिर कह ले वा कागज के थैला एकर उपयोग करे जा सकत हावे। कुछ बिसाय पर हमन यदि अपन संग में कपड़ा के झोला लेके जासन तो हर हमर बर फायदेमंद हावे। ऐसे प्लास्टिक के कचरा ला अंते तंते नहीं फेंके के ले ठीक रहते, ओला निर्धारित ठौर में ही डाले काम हावे। प्लास्टिक के बोतल और डिब्बा मन के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण कह ले रिसाइकलिंग जला कहते हैं ये मन ला करे के काम हावे। पर्यावरण अनुकूल उत्पाद ला अपनाए काम हावे। और हम किसान मन ला डोली खेत में प्लास्टिक के अवशेष ला जलाए बर बहाचे के काम हावे
एकर ले हवा के प्रदूषण बढ़ते और संगवारी हो प्लास्टिक के उपयोग घटाए ले अब्बड़ हमला लाभ हावे।

हाँ तो संगवारी हो, देखा अब जाए के बेरा होत हावे। सुनील सोनी और ममता चंद्राकर के आवाज में आप मन लोकगीत सुनत रहा। तो अब देवा मोला विदा। जम्मू संगी संगवारी मोला छोटे लाल के राम राम, जय जोहार।

किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी अभी आप सुन रहे थे। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र को 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 8:20 हुए हैं। पेश है गैर फिल्मी गीत साधना सरगम और अजाम अली मुकर्रम की आवाज़ों में सुनी इस गाने को। दयाराम दर्द फिरोजाबादी ने इस गीत को लिखा है। धुन बनाई है अजाम अली मुकर्रम ने।

आबिर मुखर्जी की आवाज़ में आप सुन रहे थे इस गाने को। संगीत था आबिर मुखर्जी का ही, राजन लयालपुरी की रचना थी। इसके साथ ही गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:30 हुए हैं, आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। मंजिल फिल्म के गाने को सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में। योगेश ने गीत लिखा है, संगीत है राहुल देव बर्मन के।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं रोशनी चौधरी रायगढ़ से आप सभी श्रोताओं को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने की शुभकामनाएं देती हूँ। 90 साल सिर्फ

समय नहीं, अनगिनत एहसासों का सफर है। आप आवाज नहीं, एक अपनापन है जो हर घर में चुपचाप बस जाता है। बचपन की कहानियां हो या सुकून भरी शामी, आप हर लम्हे में साथ रहे हैं। इस तेज दुनिया में आपने हमें ठहरना सिखाया, सुनना और महसूस करना सिखाया। एक श्रोता के रूप में दिल से धन्यवाद हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए। आकाशवाणी यूं ही अपनी मिठास घोलती रहिए। धन्यवाद।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती।
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता।
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल। 22 को की बातें यादों के उजाले।
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
3: सखी सहेली।
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा।
5: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन।
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
6: संदेश पहले आप सुन रहे थे रूप तेरा मस्ताना फिल्म के गाने को लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई थी, असद भोपाल ने गीत लिखा था। अब सुनिए मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे गीत को। संगीत है राहुल देव बर्मन का, आवाज़ आशा भोसले किशोर कुमार और साथियों की। फिल्म सितमगढ़ से।

0: आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों के गाए गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पल में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या का अनुप्रसारण करेंगे। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: स्पोर्ट्स कैन की

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया, बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरोगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिव कुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना DMK से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहाँ विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि AI और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले कि केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
4: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि ये निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गई। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: घराना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल थे, रवि का संगीत था। 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। अनारकली फिल्म का गीत हेमंत कुमार की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल सी रामचंद्र का संगीत।

आनंद बख्शी का लिखा गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, फिल्म थी आपकी कसम। विविध भारती से यह है कार्यक्रम आपके लिए।

0: ज्वेल थी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

रंगोली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

विविध भारती के सभी श्रोताओं को दिलीप का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ पर। सच के

23 अगस्त 1968 को दिल्ली में जन्मे के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले लगभग 3,500 जिंगल्स के लिए आवाज दी। क्रिकेट विश्व कप 1999 के दौरान भारतीय टीम की हौसला अफजाई के लिए जोश ऑफ इंडिया गीत में भी उन्होंने गाया। उन्होंने संगीत में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। केके का कहना था कि गायक का चेहरा दिखने के बजाय उसका सुना जाना ज्यादा जरूरी है।

ये गीत काफी लोकप्रिय रहा। हालांकि बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिला फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प से। उनके गीतों से युवा अपने आप को रिलेट कर पाते थे क्योंकि उनके गीतों में वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी महसूस कर पाते थे और भावनात्मक रूप से भी जुड़ जाते थे, जैसे कि ये गाना उन्हीं के लिए गाया गया हो।

1999 में उन्होंने अपना एक एल्बम लॉन्च किया पल, जिसका गीत यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है काफी लोकप्रिय रहा और स्कूल कॉलेज के लगभग हर फेयरवेल फंक्शंस का हिस्सा रहता था। इस गाने के बगैर कोई भी फेयरवेल फंक्शन अधूरा ही माना जाता था।

केके के चर्चित गानों की बात करें, शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम का गाना आंखों में तेरी काफी लोकप्रिय हुए। काइट्स का जिंदगी दो पल की, जन्नत का गाना जरा सा, गैंगस्टर का गाना तू ही मेरी शब है,

उनको 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नामित किया गया और उन्हें बचना ए हसीनो फिल्म के गाने खुदा जाने के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का स्क्रीन अवार्ड मिला।

के बचपन में डॉक्टर बनना चाहते थे। कॉलेज में दोस्तों के साथ मिलकर परफॉर्म भी करते थे और नेचर लवर भी थे। केके के कुछ अपने उसूल भी थे जिनसे वो समझौता नहीं करते थे। एक बार एक गाने को रिकॉर्ड करते वक्त उन्हें लगा कि गीत के बोल ठीक नहीं है और उनकी इस आपत्ति का सम्मान करते हुए गाने के बोल बदल दिए गए। अच्छे गायक की उनकी अपनी परिभाषा थी। के मानते थे कि अच्छा सिंगर वही है जो किसी संगीतकार के गाने को अपना बना के गा सके।

0: संगीतकार ललित पंडित ने कृष्ण कुमार कुन्नाथ के लिए अपने हृदय के उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए।
1: के को पूरी म्यूजिक फ्रेटर्निटी बहुत प्यार करती है, बहुत ही अच्छे कलाकार होने के अलावा बहुत अच्छे दिल के इंसान थे, बहुत दोस्त थे मेरे साथ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक में लाइफ में कभी कभी और शोबिज मुकेश भट्ट जी की फिल्म में गाने गाए हैं उन्होंने सारे मेरे, जतिन ललित के भी गाने गाए हैं। उनकी आवाज में एक यूथ को अट्रैक्ट करने की एक क्षमता थी और गाने में जो सुर पकड़ने की ताकत थी उनमें बहुत थी। और सबसे बड़ी बात है जो सिंगर में लोग ढूंढते हैं और जो कुदरत की तरफ से आती है वो एक वॉइस क्वालिटी, उनकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत ही यूथफुल वॉइस क्वालिटी थी। और वॉइस क्वालिटी का ऐसा होता है कि एज से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता, वॉइस पुरानी नहीं होती आपकी, आपकी गायकी आपको मेंटेन करनी पड़ती है और वो केके में थी।

के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से कॉन्सर्ट्स का हिस्सा बने, जिसके लिए वो खास तौर से जाने जाते थे। युवा दिलों की धड़कन बने और अपने आखिरी पलों में भी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ वो युवाओं के साथ ही थे। 53 वर्ष की अवस्था में मंगलवार 31 मई 2022 को कोलकाता में कॉलेज के कॉन्सर्ट के बाद हम सबको हमेशा के लिए अलविदा कह गए।

0: श्रोताओं, आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था पार्श्व गायक के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ पर। आलेख और स्वर दिलीप का, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले की।
1: आज के फनकार।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, रात के 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए विविध संगीत का कार्यक्रम। अनुराधा पौडवाल की आवाज में सुनिए इस गाने को। फैज अनवर के शब्द हैं, धुन बनाई है निखिल विनय और ललित सेन ने।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था।
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और

0: 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे और उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं जैसे तिलक वगैरह जो हैं वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी, और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है, और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था। जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, पूरे देश में इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
1: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: संदेश से पहले आप सुन रहे थे हिमेश रेशमिया को। समीर ने गीत लिखा था, संगीत हिमेश रेशमिया का ही था। कार्यक्रम में आप सुनिए सोनू निगम के स्वर और संगीत निर्देशन में इस गाने को। शब्द है नुसरत बद्र के।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती।
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता।
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हसी का हवा महल। बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले।
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
3: सखी सहेली।
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा।
5: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन।
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
6: संदेश से पहले आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज में गाने को। इसके साथ ही विविध संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम सूर्यामिनी में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग देश अलाप और विलंबित रूपक ताल द्रुत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत कर रहे हैं अनिंदो चटर्जी।
7: फॉर सेंचुरीज संतूर हैज बीन प्लेड इन द वैली ऑफ कश्मीर In a typical style of music known as Sufiana Musiqi, it has been played as an accompanying instrument with the vocalist and sometimes as solo also. It was originally known as Shatatantri Veena, which means 100-stringed lute. Similar instruments in Hungary and Romania, Santur Rajnikanth.

पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग तेज अलाप विलंबित रूपक ताल द्रुत तीन ताल में अभी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 MHz पर। 11 बजने वाले हैं। कुछ पल में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।